0: 2626.
1: वेदर का हालचाल, आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा आज 6:02 पे।

0: Talks with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein. मेरा नाम केतन है और मैं अभी से लेके 3 बजे तक हूँ. बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गपशप करनी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है. तो आपको बस यही करना है कि आप अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एकदम ऑन पॉइंट ला दीजिए, यानी कि 104.2 एफएम के जरिए तो सुने, लेकिन अगर रोआ ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो क्या ही बात है, क्या क्वालिटी आती है, क्या चीज़ें आपको पता है. प्लस ऑफकोर्स आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. सो यस, ट्यून इन करिए वहाँ पे और हमें सुनिए, बिकॉज उसके जरिए आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. पर यस, बने रहिए, बहुत सारी और भी बातें बताऊंगा मैं थोड़ी देर में. होम सिक रेमेडीज की भी बातें होगी, तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 5599 पे टेक्स्ट मुझे भेज देना है ताकि हम होम सिक रेमेडीज की बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू माय शो अंटिल 3.
0: बचाओ क्या,

0: होमसिक रेमेडीज में आपके लिए मैसेज लेके आ चुका हूँ। एक मैसेज मैंने पिक किया है हरीश भाई का, वो कहते हैं क्योरा केतन, नोबडी वॉन्ट मी अबाउट हाउ फ्रीजिंग न्यूजीलैंड हाउसेज एक्चुअली आर इन विंटर। बैक होम आई नेवर हैड टू वेयर अ विंटर कोट इनसाइड माय ओन लिविंग रूम, बट देयर हेयर इन माय ऑकलैंड फ्लैट देयर इज नो सेंट्रल हीटिंग, कोल्ड वुडन फ्लोर एंड condensations dripping down the single glazed windows every morning. I ran an electric heater for just 2 weeks and my monthly power bill came out to a whopping $300. Now I am literally sitting on my couch wrapped in a duvet, wearing a beanie and two pairs of socks inside the house just to save electricity. It feels so depressing to freeze in your own home. How do we survive this Kiwi winter housing shock without freezing to death or going broke? Bhai saab, kya likha hai aapne? I can imagine what you are going through. Ye same situation hamare saath hoti thi when we were new. See, I know it is not very hard. Hum jo mujhe baad mein realize hua, wo mujhe bahut pehle kar dena chahiye tha. But thoda mushkil hoga, but you have to do it. I'm like, agar aapko lagta hai ki koi aur option nahi hai, to definitely you have to do it. First thing is, you need to find the place. Mujhe lagta hai ki sabse badi baat hai, aapko na place jo hai wo change karni chahiye, location, because nowadays the houses are pretty warm and all insulated hai, double glazed hai, so that means agar ek baar aap chalao to at least it will have a decent amount of temperature inside as well. To aap wo waisa ghar dhoondiye aur wahan pe aap, अगर इफ़ यू आर ऑन रेंट राइट नाउ तो आप ऐसे रह सकते हैं, बट अगर आपका खुद का घर है, हॉस्टल यू आर अंडर दिस सिचुएशन, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप चेक करवा सकते हैं दैट कैसे आप थोड़ी सी खिड़कियाँ जो हैं उसे करवाएं एंड यू नो किसी टाइप का वेंटिलेशन लगवा दें, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर आपने ये चीज़ अवॉइड की तो शायद आपकी हेल्थ को भी दिक्कत दे सकता है, जो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड बीइंग अवे फ्रॉम योर होम। सो ये चीज़ आप पता करिए और फिर मुझे बताइएगा कि होपफुली दिस माइट गोना वर्क। बट यहाँ पे अगर और कोई है जो मुझे बता सकता है, बताना चाहे हाउ ही कैन मेक इट बेटर, लेट मी नो, आई नो। और या फिर इनिशियली ये सारे खर्चे भी हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेगा, तो इनिशियली मे बी यू आस्क टू पीपल एंड जस्ट फाइंड आउट कि कोई सस्ता वाला हो हीटर ऐसा कुछ, तो यू जस्ट गेट इट राइट। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
6: Kahani of Indelible Homes.

0: At Bunnings, we've got gifts built for dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi OnePlus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
4: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: नॉनस्टॉप बॉलीवुड।
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
9: Lunchbox with Ketan.
10: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
11: Office shout out.
12: ऑफिस शाउटआउट में ये रहे मैसेजेस जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अभी भी आप यू कैन स्टिल सेंड मी। सो यस, पहला मैसेज है राहुल भाई का, वो कहते हैं बेसिकली ऑफिस शाउटआउट में हम क्या करते हैं, आपने क्या खाया है, क्या खा रहे हो और कहाँ से मंगवाया है, और अगर घर से भी है तो किसने बनाया है, आप ये मुझे बता सकते हैं। सो यस, इन्होंने पहले ही उन्होंने बताया है कि ऑफिस टुडे बॉट अ बीफ बर्गर एंड चिप्स फॉर लंच, और इनका फेवरेट कुजीन है कीवी फूड। दैट्स सो कूल। जैसे एक चीज़ जानी, यहाँ का प्रॉपर फूड क्या है? काफ़ी ऑब्वियसली इंटरनेशनली लाइक मल्टी कल्चर्ड हो चुका है, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ का क्या बॉइल्ड फूड इस टाइप का कुछ है, राइट? पहले था लेकिन मैं कम्प्लीटली भूल चुका हूँ, तो आप मुझे बताइए 5599 पे कि इनका फेवरेट खाना क्या है। सेकेंड मैसेज आया है निशा का, वो कहती है वर्क फ्रॉम होम टुडे माय वाइफ है। निशा ने भेजा है माय वाइफ लिख के, ओके, या मेरी आंखें खराब हो रही है। एनीवेज तो वर्क फ्रॉम होम टुडे माय वाइफ मेड डोसा एंड सांबर फॉर लंच। मे भी लगता है, मेरे को लग रहा है कि हस्बैंड का नाम लिखना, हस्बैंड अपना नाम लिख रहा होंगे, मेरे को लग रहा है उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया है, या फिर वाइस वर्सा, आई डोंट नो, लुक्स फनी बट या। सो इन्होंने लिखा है माय वाइफ मेड डोसा एंड सांबर फॉर लंच, माय फेवरेट कुजीन इज साउथ इंडियन। दैट्स सो कूल। उसके बाद एक और मैसेज आया है वर्किंग ऑन साइट बॉट कसावा एंड फिश करी फ्रॉम होम। That's so cool. मेरे को कसावा ट्राई करना एक्चुअली, आई हर्ड अ लॉट बट डेफिनेटली। मैं हमारे एक मेरा एक फीजी फ्रेंड है, मेरे बैंड में है बेनाम्स में, तो उनसे मैं पूछूंगा लाइक यार ब्रो कसावा तो खिलाओ कभी यार, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है।
7: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में बात कर लेते हैं आज की तारीख को, यानी कि 2 सितंबर 1972 को मुनिच ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड की रोइंग 8 टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। न्यूजीलैंड टीम ऑलरेडी 1970 वर्ल्ड चैंपियंस थी, इसीलिए उनसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर फाइनल से पहले उन्हें सेमीफाइनल में वेस्ट जर्मनी ने हरा दिया था। फाइनल में कीवीज ने अमेजिंग कमबैक किया, स्टार्टिंग से ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग लीड बनाई और रेस के एंड तक लीड मेंटेन रखी। न्यूजीलैंड ने यूनाइटेड स्टेट्स को ऑलमोस्ट 3 सेकंड से बीट करके गोल्ड मेडल जीता था। वैसे टीम में ट्रेवर कुकर, एथल अर्ल, जॉन हंटर, टोनी हर्ट, डिक जॉयस, गैरी रॉबर्टसन, वोबी वेलमैन, लेंसे विल्सन और कॉक्स साइमन डिकी शामिल थे। एंड यस, इस विक्ट्री को न्यूजीलैंड की ग्रेटेस्ट ओलंपिक टीम परफॉर्मेंसेस में से एक माना जाता है।

0: वेल ये काफी इंटरेस्टिंग है, कौन कौन एक्ट्रेस और एक्टर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। तो ये सबसे ऊपर बापटला का आज बर्थडे है, सॉरी बापटला नहीं, वो तो जगह का नाम है, पवन कल्याण का जन्मदिन है, जो कि वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। 1971 में ये पैदा होते हैं। काफी फिल्मों में आपने इन्होंने देखा होगा, इन्हें आपने काफी फिल्मों में देखा होगा। उसके बाद जूनियर NTR, वो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज, ऑफकोर्स RRR में आपने देखा होगा उन्हें। गौरव तिवारी काफी फेमस है, इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं, और एक मिस्टीरियस वजह से इनकी डेथ हुई थी। काफी लोग बोलते हैं कि इनके साथ भी यू नो समथिंग एल्स हैज हैपेंड, बट यस उनका भी आज जन्मदिन है। ईशांत शर्मा, ईशांत एक्स इंडियन प्लेयर और कभी दिल्ली कैपिटल कभी KKR की तरफ से भी खेलते हैं, दिल्ली के हैं ये, वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र झा, दीपशिका नागपाल, दिव्या उन्नी, उसके बाद अलका कौशल एंड तोची रैना, ये सब अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वाओ, दैट्स सो ग्रेट यार, मतलब इसी के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू तो काफी कुछ पता पड़ जाता है कि कौन कौन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: अपनी शॉट्स।
1: वेल, अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि न्यूजीलैंड में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफी टफ सिचुएशन फेस कर रही है और पिछले एक साल में करीबन 2,900 हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है उन्होंने ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर दी है, जो नियरली 40% बढ़ चुका है। जी हाँ, 422 हॉस्पिटैलिटी कंपनीज जो है वो लिक्विडेट हुई, यानी कि खत्म हो चुकी है। और उसके साथ ही देखें अगर तो हर साल के हिसाब से 42% ये भी बढ़ी है। रेस्टोरेंट की लिक्विडेशन जो है वो 43% ऊपर जा चुकी है। टेक अवे बिजनेसेस 143% ऊपर जा चुकी है। कैफेज की अगर बात करें तो 27% ऊपर जा चुकी है। ओवरऑल न्यूजीलैंड में 3,000 से ज्यादा कंपनीज लिक्विडेट हो चुकी है पिछले 12 महीनों में, 14% इंक्रीज के साथ। दैट इज नॉट सो ग्रेट यार, दैट इज नॉट सो ग्रेट। राइजिंग कॉस्ट और चैलेंजिंग बिजनेसेस की कंडीशन की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर काफी प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस सर्वाइवर्स को नहीं हेल्प कर पा रहे।
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना। कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, just a reminder, अभी इस next hour में between 1 to 2 pm आपको सुनाई देगा एक amazing सा boarding call का queue। वो जैसे ही आप सुनेंगे किसी भी वक्त आ सकता है, मैं आपको ये अपने नहीं बता सकता हूँ, किसी भी वक्त आएगा और जैसे ही वो प्ले होता है आपके पास ठीक एक आर होगा तो ओपन द रोवा ऐप और वहां पे वो जो बोर्डिंग नाउ का कोड है वो सबमिट करने का। जैसे आप सबमिट करेंगे कोड, आप एक्टिवेट कर देंगे अपना ड्रॉ में लकी चार्म के लिए। सो यस, इफ यू आर लकी तो आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस और साथ में $1,000 की स्पेंडिंग मनी भी। Well, yes, thanks to Solomon Airlines flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Terms and conditions do apply.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा आज 6:02 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और यस, इस आर में आपके यहाँ स्वागत करता हूँ। काफ़ी खुशनुमा भी है बिकॉज इस आर में आपको वो गोल्डन बोर्डिंग कॉल का क्यू सुनाई देगा जिसे आप सुनते ही सबमिट कर देंगे और उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जहाँ पे आपको मिलेगा 2 टिकट रिटर्न टिकट टू वनुआतु, जी हाँ, और साथ में $1,000 की फ्री खर्च करने के पैसे भी। Wow, that's so good, right? And yes, उसके बाद लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी और साथ में आपके लिए लेटेस्ट खबर के साथ साथ बॉलीवुड की भी खबर लेके आऊंगा, तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो को।
0: बचाओ क्या,

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
5: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, वीरी। कॉल 24/7 ऑन 09278860।
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
0: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
0: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
11: लंच बॉक्स विद केतन।
12: मुझे पसंद है लड़का।
11: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
13: चलिए फोन उठाइए और मुझे बताइए कोई ऐसे रेंट लाइन के लिए कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ हुई हो इस बीच और यू फेल्ट लाइक सो इरिटेटिंग यार कि भाई क्यों करते हैं ऐसा। एक वैसे मैसेज मेरे रेगुलर लिसनर का आ चुका था, बट वो पढ़ूं उससे पहले आपको भी मौका देता हूं, आप भी मुझे भेज दीजिए ताकि मैं पिक कर सकूं बेस्ट एंड देन आई कैन टेल ओवर हियर। बट मीनवाइल लेट मी जस्ट टेल यू दैट एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बात हुई है एक ऐसे वीडियो की, डॉक्यूमेंट्री की, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कीवी इंडियन की हिस्ट्री का क्या की शुरुआत कैसे हुई। एक डॉक्यूमेंट्री बनी है पंजाब टू ऑटेरोआ, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही अमेजिंग है, आप उसे सुनिए। एंड यस ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप उस पॉडकास्ट में ये भी सुन सकते हैं रिगार्डिंग कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आया उनके माइंड में और कितनी मेहनत लगी, कैसे इन्होंने डेटा जो है उसे कलेक्ट किया और कैसे उसकी शुरुआत की। सो यस, ये सारी चीजें आप सुनेंगे। एंड यस, वंस यू गेट टाइम, एनी टाइम लाइक इन द इवनिंग और एनीवन, सो वॉच ऑन यूट्यूब पंजाब टू ऑटेरोआ, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है। अगर इसकी लिंक आपको डायरेक्टली चाहिए पॉडकास्ट की तो आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक डायरेक्टली आपके फोन पे आ जाए, या फिर अगर आप रोवा या फिर स्पॉटिफाई पर सुनना चाहते हैं तो अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे ये सर्च कर सकते हैं। 100 ईयर्स ऑफ रेजिलेंस, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी। बट ये रहा मैसेज जो मैं पढ़ता हूं रिगार्डिंग लंच टाइम रेंट लाइन। Hi Ketan, this is Arjun here from Henderson. I'm ranting about people who stop in the middle of the supermarket aisle. I was trying to get through with my trolley today, but a couple were standing here having a full conversation and blocking the whole aisle. I waited for a bit, then had to say excuse me just to get past. If you want to chat, please move to the side. इसमें तो यार मतलब ये चीज़ तो होती है, ये मेरे को लगता है never ending है। स्पेशली अभी तो मेरे को लगता है मेरे घर पे भी हो रहा है, मुझे भी अपने घर वालों को बताना पड़ रहा है मॉम डैड प्लीज़ थोड़ा साइड में दो, जगह दो, मतलब ऑब्वियसली शेयर करो, यहाँ पे आगे आना जाना भी रहता होगा। मुझे पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग हियर एज वेल, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हम देखते हैं पुराने टाइम पे, इधर इट कुड बी दैट उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, सो दैट्स वाई दे डोंट नो हाउ टू यू नो मेक श्योर दैट इट्स अ प्रॉपर शेयरिंग एंड इट्स नॉट मेकिंग एनीवन ट्रबल हियर। बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स हम जैसी जनरेशन है कहीं ना कहीं हम भी करते हैं, बट उतना नहीं अगर कंपेयर करें। सो डू यू थिंक इज इट बिकॉज ऑफ उनके टाइम ये नहीं था और I would say the lack of education. Do you think so? अगर हाँ तो आप मुझे बताइए, और अगर ना तो दूसरा क्या ऑप्शन है? 5555 the number जहाँ पे आप रिस्पॉन्स मुझे दे सकते हैं.
11: लंच के मंच पे. Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

में 3 पेट्रोल्स किए और हर इंस्पेक्टेड पर्सन रूल्स वायलेट कर रहा है, 100% नॉन कंप्लायंस। वाव। ऑफिसर्स को अंडर सीज रॉक लॉबस्टर और पावा मिले काफी कुछ, और उसके साथ कुछ लॉबस्टर एग बियरिंग फीमेल्स थी, यानी कि ब्रीडिंग स्टॉक भी कैच किए गए। इलीगल क्रेफिश हुक्स और स्पीयरिंग जैसे मेथड्स भी मिले, और एक कैच बैग में करीबन 26 अंडरसीज बैक होर्स रॉक लॉबस्टर भी मिले हैं। कुछ ऑफेंडर्स को अप टू $750 फाइन मिल सकता है, जबकि 2 डाइवर्स को फुल डाइविंग गियर सीज करके प्रोसिक्यूशन कंसीडर किया जा रहा है। इलीगल और अंडरसीज फिशिंग की वजह से पानानाकी के मरीन रिसोर्सेज पर सीरियस प्रेशर पड़ रहा है, और एमपीआई ने वार्निंग भी दी है कि अगर नॉन कंप्लायंस ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो फ्यूचर में फिशरीज सस्टेनेबिलिटी रिस्क में आ सकती है।

0: एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम करना जरूरी पता होने के बाद भी उसे कल करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, बोलकर डिले करते रहते हैं। ये मैं एक्चुअली काफी रिलेट कर सकता हूँ इसमें। रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 20% एडल्ट जो है वो रेगुलर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इनका इम्पैक्ट जो है वो स्टडीज, इनकम, स्लीप और ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। वैसे ये क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब लेजीनेस नहीं। यूजुअली हम काम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के कंपैरिजन में इमीडिएट कंफर्ट को प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल, असाइनमेंट डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में करूंगा। मिस्टेक या क्रिटिसिज्म का फियर, काम स्टार्ट ही नहीं करते। परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, स्टार्ट डिले होती रहती है। फोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो पोस्टपोन हो जाते हैं। यार ऑनेस्टली मैं इतना रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज से। टायर्डनेस, बर्नआउट भी प्रोक्रास्टिनेशन को और वर्स कर सकता है। वैसे इसे स्टॉप कैसे करें? अपने ने तो जान लिया है कि क्या होता है, क्या हो सकता है, बट इसे रोके कैसे? सबसे पहले खुद से पूछो, मैं ये काम एग्जैक्टली क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? फिर रीजन के हिसाब से सोल्यूशन यूज करो। फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फोन ऑफ करके या बैग में रखकर काम स्टार्ट करो। फेलियर का अगर फियर है आपको तो सोचो वर्स्ट केस सिनेरियो एक्चुअली कितना लाइकली है। टास्क बहुत बड़ा लग रहा है तो उसको छोटे माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करो। एग्जॉस्टेड अगर आपको फील हो रहा है तो रेस्ट और एनर्जी को इग्नोर करके बस ट्राई हार्डर का करना सोल्यूशन नहीं है। सेल्फ डाउट है तो स्मॉल विंस क्रिएट करो, एक एक टास्क कंप्लीट करके कॉन्फिडेंस जो है उसे बिल्ड कर दो और अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट टास्क स्केड्यूल पे कर सकते हैं आप। बट बॉटम लाइन क्या है इसमें? प्रोक्रास्टिनेशन का ओवरकम जो है वो स्टार्ट करने के लिए और मेहनत करो, और इनफ नहीं है तो थोड़ी और करो। पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम टास्क को अवॉइड कर सकते हो, तुम टास्क को अवॉइड क्यों कर रहे हो। फिर उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जी हाँ, सिंपल फॉर्मूला अगर बताऊं तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होती तो सबसे पहले तो रीजन ढूंढो, टास्क छोटा करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, स्मॉल एक्शन लो और मोमेंटम को बिल्ड करो। वेल होप आपको ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी और काफी रिलेटेबल भी लगी, और हो सकता है यहाँ पे काफी लोग एग्री भी करेंगे। सो जो आइडियाज मैंने दिए हैं कि पहले तो आप रीजन ढूंढो, रीजन समझो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, टास्क छोटा करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, स्मॉल एक्शन लो, मोमेंटम को बिल्ड करो। इस फॉर्मूले को अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली कुछ तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैं सबसे पहले ट्राई करने वाला हूँ।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
5: You don't need your toilets cleaned, do you?
4: Find a cheaper mechanic in Invercargill. Pretend you know what they're talking about.
6: Pretty sure the carbonara's playing up.
4: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
7: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
8: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take their trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
10: इसके पीछे. Lunch के मंच पे.
0: चलिए बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ. यश की टॉक्सिक का हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस पर मंडे को बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुआ है. फिल्म ने मंडे को सिर्फ 3.5 करोड़ की कमाई की है, जो ओपनिंग के कंपैरिजन में अराउंड 94% ड्रॉप हो चुकी है. फिल्म ने 5 दिन में ओपनिंग वीकेंड में 124 करोड़ कलेक्ट किए थे. मंडे का शार्प ड्रॉप ऑडियंस इंटरेस्ट में मेजर स्लोडाउन दिखाता है. बॉलीवुड हंगामा के अकॉर्डिंग फिल्म मेजर डिजास्टर बनने की तरफ जा रही है. हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन अराउंड 150 करोड़ तक रहने का एस्टिमेट किया गया है. टॉक्सिक ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद मंडे को इतना बड़ा क्रैश देखा है कि यश के लिए हिंदी मार्केट में फिल्म का थिएट्रिकल रन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता दिख रहा है. होपफुली यार ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करे रामायण को, क्योंकि उसमें वो रावण का रोल निभा रहे. देखते हैं क्या, होपफुली इतना इम्पैक्ट ना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली यार देखो सिर्फ एक्टिंग पे ही सब कुछ नहीं होता. अगर एक्टिंग पे ही होता तो ऑब्वियसली इन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग करी है. स्टोरी भी बहुत मैटर करती है. सो यस, और भी बातें होगी. वैसे आपको ये बता देते हैं कलेक्शंस क्या क्या हैं. कलेक्शंस पे थोड़ी नजर डाल देते हैं. अभी हाल फिलहाल कौन सी फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है. अमेजिंग यार, अमेजिंग. टॉक्सिक ने अभी तक 120.79 करोड़ का कलेक्शन किया है इंडिया से अभी तक, और वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली हो चुका होगा 130-140 तक हो चुका होगा. उसके बाद हार्ड डिस्क फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल कमाई नहीं हुई उनकी. तो बंटवारा 1947 36.6 करोड़ का ही कलेक्शन किया है. आवारापन इज ऑन टुवर्ड्स 150 करोड़ विच लुक्स लाइक गुड यार, हिट होगी आई थिंक सो. या
10: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4

0: Jackie.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Roa app download kar lijiye because uske through aap bahut saari cheeze explore kar sakte hain. Roa ka number one music station. Bollywood's golden era, 60s and 70s के गाने आप सुन सकते हैं, साथ में 80 दशक के गाने भी वहां से सुन सकते हैं। फीजी भजन हो या फिर फीजी कीर्तन, ये भी आपको वहां मिल जाएंगे। चढ़ती कला पंजाबी हिट्स के एक से बढ़कर एक पंजाबी हिट गाने आपको वहां पे मिलेंगे। राहत फतेह अली खान के गाने भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। बट ये उसके साथ ही कुछ यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहे हैं बेसिकली। अभी कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है तो दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं 29 से 4th ऑफ सितंबर तक द केव में 5x57 कैबिनेट ड्राइव मनुकाव, यहां पे आप पहुंच जाइए। दूसरा 4 सितंबर तक रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू में भी मनाया जा रहा है 7:30 बजे के बाद। उसके बाद कथा व्यास नलेश नायडू भी लेके आ रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग न्यूजीलैंड संगम की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 28 अगस्त से शुरू हो चुका है, सितंबर 4 सितंबर तक चलने वाला है। डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लेमी ड्राइव मनुकाव में ये हो रहा है। साथ में आप कृष्ण जन्मोत्सव के लिए आप पहुंच जाएं जहां पे श्री राम मंदिर में होने वाला है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, आचार्य डॉक्टर श्री कैलाश चंद्र जी कथा पढ़ने वाले हैं। ये भी 3 सितंबर को होने वाला है, 4 सितंबर को स्पेशल पूजा होने वाली है, हवन भी होने वाला है। एंड यस उसके बाद आप पहुंच जाइए फॉर प्रेसिडेंट मिस्टर सुशील रेड्डी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कृष्ण जन्माष्टमी मनने वाला है, सेलिब्रेट होने वाला है वुमेन के ट्रस्ट बिल्डिंग में 2nd Sutton Crescent पापा टोयोटो, यहाँ पे अगर कुछ सवाल जवाब हो जैसा कि मैंने कहा था मिस्टर सुशील रेडी को कॉल करिए 0274904611 पे। साथ में सेम डेज में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं श्री हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, और एक और जगह सेलिब्रेट हो रहा है वो है पापाटोटे में माँ दुर्गा टेम्पल 4x3 ऑन स्टो एवेन्यू पापाटोटे में।

0: नमस्ते, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। एसआर में भी बहुत कुछ आपको बताना है, स्पोर्ट्स की खबरें खास करके इसमें बताऊंगा मैं। लेटेस्ट खबर तो होगी होगी, और साथ में और क्या क्या नई खबर है, जैसे कि हमें अब बहुत सारी चीजें बता रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग एक फ्लू जो है वो भी शुरू हो चुका है। फ्लू का वैक्सीनेशन जो है छः महीने से 5 साल के बच्चों के लिए, उसके लिए भी सरकार ने अवेलेबिलिटी रख दी है। आप जीपी, अपने लोकल जीपी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों को लगवा सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। पर ये उसके अलावा और भी बातें हैं जो हम यहाँ पे बताएंगे। आप बस बने रहिए, सुनते रहिए मेरा लंच बॉक्स शो आज के दिन का अंटिल थ्री।
1: बचाओ क्या?

0: ये रही लेटेस्ट खबर आप सभी के बीच। एक न्यूजीलैंड पुलिस ऑफिसर ने रोड साइड ब्रेथ टेस्ट का रिकॉर्ड फैब्रिकेट किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया। इंसिडेंट जनवरी 2024 में मॉरेंसविले के अल्कोहल चेक पॉइंट पर हुआ था, जब ऑफिसर ने एक ड्राइवर का इनिशियल ब्रेथ टेस्ट किया था और उसे एक्सेस अल्कोहल के लिए इंफ्रिंजमेंट किया, लेकिन रिक्वायर्ड एविडेंशियल ब्रेथ टेस्ट एक्चुअली किए ही नहीं थे। बाद में ऑफिसर ने रिकॉर्ड में झूठा टेस्ट और अल्कोहल रीडिंग एंटर कर दी। पुलिस वॉचडॉग IPCA ने कहा कि कंडक्ट ऑन द फेस ऑफ इट क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से चार्जेस नहीं लगाए गए। ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस से रिजाइन कर गया और पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इनिशियल मैटर को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इशू के तौर पर हैंडल करने की गलती की थी। वेल, ऑफिसर के ब्रेथ टेस्ट एविडेंस फैब्रिकेट किए, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल सके।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
4: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
7: Yes, that's all, thanks. But whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
6: Okay, sorry.
7: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
6: Oh, man.
8: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह, अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम
2: स्किप या रीप्ले।
3: फादर्स डे सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत ही जल्द, और उसके लिए हम कंपटीशन लेके आए हैं, एक नहीं दो कंपटीशन। पहला कंपटीशन तो ये है कि हम अनाउंसर्स आपको कभी भी मौका दे सकते हैं, कुछ सवाल जवाब करेंगे, आपको जवाब देने हैं कॉल करके, और अगर आपने जवाब सही दिया या फिर फुलफिल हुए तो डेफिनेटली आप ड्रॉ में शामिल होंगे, बिकॉज उसके थ्रू आप $500 कैश जीतने के हकदार बन सकते हैं उसके थ्रू। So yes, it is going to be amazing. आज 2 तारीख है, परसों इसका डिस्क्लोजर होने वाला, यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा है। जितना कॉल करेंगे, जितना ट्राई करेंगे, उतना चांसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, बट यस, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग कॉम्पिटिशन। और बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया है, आप अपने फादर का जो डैड है उनके भी फादर होंगे तो आप भी इस चीज में पार्ट ले सकते हैं। सो व्हाट यू डू इज यू आप अपने फादर की फोटो लें और उसे AI में जाके थोड़ा सुपर एकदम मस्त सुपर हीरो बना दीजिए, और ऑनलाइन जाके हमारे फेसबुक पे पेज पे जाके कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। फीचर फोल्डर में आपको दिख जाएगा, फीचर्ड पोस्ट दिख जाएगा आपको फादर्स डे का, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज उसके थ्रू आप जीत सकते हैं $300 कैश। वाओ, दैट्स अमेजिंग राइट। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे AI से बनाने में, तो आप एक्चुअली सुपर हीरो वैसे ही बना सकते हैं। इफ यू लव फैशन और इफ यू लव आर्ट एंड क्राफ्ट, ऐसा कुछ करके भी यू कैन डेफिनेटली डू। टर्म्स एंड कंडीशन टू अप्लाई, और इसका भी डिस्क्लोजर होने वाला है 4th of September को।
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हो जाएगा फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रीमियो 4 से शुरू हो रहा है, फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल 4 से शुरू हो रहा है, फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी 5 से शुरू हो रहा है, एंड देन सोलेम कप गोल्फ वुमेन वो 7 से शुरू होने वाला। तो काफी कुछ इवेंट है आने वाले दिनों में, आप बस यहाँ पे एंजॉय करते रहिए, हमें सुनते रहिए, ताकि यहाँ से हम आपको अपडेट दे सकें डिटेल बाय डिटेल।

0: with Kaitan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उससे.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.

0: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
3: Non-stop Bollywood.
4: Hum.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
3: इसके पीछे.
4: हम.
3: TikTok.
6: टिकटॉक के सेगमेंट में स्वागत है. एक चीज मैं कल नहीं बता पाया, ऑब्वियसली सैंडी थी साथ में तो कुछ और ही टॉपिक निकल गया था, बट वो बेसिकली टिकटॉक में ये है, टिकटॉक में, नॉट टिकटॉक बट टिकटॉक में ये है कि हमें एक वेबसाइट बनानी थी और वो वेबसाइट जो है काफी हटके थी, लाइक इट वॉज समथिंग डिफरेंट देन नॉर्मल ब्रेन स्ट्रॉमिंग के हिसाब से. आप इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो हमने की थी वो इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए हमें 4 से 5 साल लग चुके थे ऑलरेडी टू मेक इट यू नो प्रॉपर. और उसमें काफ़ी हमारा पैसा भी गया था, यू नो वी हायर्ड फ्यू डिफरेंट क्लाइंट्स, सॉरी जो वेबसाइट्स वेब डेवलपर होते हैं वो, उन्हें हमें हमने हायर किया था, बट ऑब्वियसली शायद उनके लिए भी नया था, वो कर नहीं पा रहे थे, सो इट वॉज जस्ट गोइंग और काफ़ी गैप्स भी आ रहे थे. बट एज यू नो दैट मैं क्लॉड यूज़ करना शुरू कर दिया. मैंने क्लॉड को बोला कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी, प्लीज़ बना दो. यू वॉन्ट बिलीव, उसने 1 घंटे में पूरी वेबसाइट बना के मुझे दे दी, 1 घंटे में. और कॉस्टिंग क्या थी? लिटरली नथिंग. जो मैं सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ बस वही कॉस्टिंग. सो माई पॉइंट ओवर इज, काफ़ी परेशानी वाली बात है फॉर समवन हु इज इनटू दिस बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग. तो एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी तो है ही है दैट एक नहीं दो नहीं तीन लोगों की जॉब्स ये अकेले एआई ने खाली है. पहली तो वेब डेवलपर, देन ग्राफिक डिजाइनर एंड देन कंटेंट डिजाइनर. ये सारी जो चीजें हैं ये तीन लोग हुआ करते थे प्रोफेशनली. इन हाउस तो ऑब्वियसली कोई एक बंदा भी कर सकता है, बट टेक्निकली अगर देखें तो तीन बंदों का काम है, तीन अलग अलग चीजों का डिपार्टमेंट का काम है, वो उसने अकेले ने ही संभाल लिया बस एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट देके. वेल स्कैरी के साथ साथ ऑफकोर्स स्कैरी तो है ही है, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट. ऑनेस्टली आप इसे भाग नहीं सकते, ये फ्यूचर है, ये अब प्रेजेंस तो हो ही चुका है, फ्यूचर भी यही होने वाला है. सो मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके बिफोर यू लूज आउट विद द टाइम, मैं आपको अभी से वॉर्न कर रहा हूँ दैट टाइम जो इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इतनी चीज़ें बढ़ रही है दैट यू विल बी सो सरप्राइज इन फ्यूचर कि भाई हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है. एंड एज अ बिजनेस पर्सन एनी वन विल वॉन्ट टू गेट इन टू दिस बिकॉज ये इतना ज़्यादा लाइक लिटरली 90% क्रॉस कटिंग करके देगा आपको. सो जस्ट इमेजिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो लोग क्यों AI को ना यूज करें. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये है दैट अगेन फिर से आप स्टूडेंट बने, फिर से वही अपने बच्चों के साथ सीखें एंड मार्केट में क्या चला वो जाने और AI से जितना हो सके रूबरू हो, जितना सीखें. एंड डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज कि मैं नहीं सीख सकता. AI इतना स्मार्ट तो है ही है लेकिन साथ साथ में इतना ईजी टू लर्न भी है. फॉर एग्जाम्पल ये जो कोडिंग वाला है, मुझे नहीं आती कोडिंग, बट आई जस्ट आस्क AI टू जस्ट मेक समथिंग लाइक दिस एंड ही डिड इट. ही जस्ट आस्क्ड अ फ्यू थिंग्स एंड आई डिड इट. आई मीन ही डिड इट. सो सामने आपके लाइक इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू थिंक. और स्कैरी तभी होगा जब आप कोई बंदा उसका गलत यूज कर रहा है. बट अगेन वो कहते हैं ना कि अगर वायरस आता है तो आपके लिए आपके पास एंटीवायरस भी होना चाहिए. अगर एंटीवायरस नहीं है तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा. तो वही चीज़ है, AI मार्केट में आ रहा है तो यू डोंट कंसिडर इट दैट आप आउटडेटेड हो चुके हैं या फिर आप इस वर्ल्ड से नहीं है, ऐसा ना सोचें. यू ऑल्सो बिकम ट्राई टू बिकम द फैमिली और अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें. इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल द बिजनेसेस अराउंड. बट यस, अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं और बहुत तेज़ी से ये AI भी बढ़ते जा रहा है. सो कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं 555 पे.
3: दिल से दिल तक,
4: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आपका साथ। आप बस बने रहिए, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द फॉर द कॉफी ब्रेक, एंड कॉफी ब्रेक के बाद उनका साथ देंगे ड्राइव शो में रुज़बे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3।

0: तीन बज के दो मिनट हुए हैं एंड देखो कॉफी ब्रेक तो अब मुझे लग रहा है सपना ही बन के रह गया है.
1: मेरा या हर लिसनर्स का
0: सैंडी के सपनों में होता है ये सिर्फ.
1: या सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस. कॉफी ब्रेक ये सब के लिए शुरू चुका है. कॉफी सो ड्राइव शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना, तो इट स्टार्ट्स विद कॉफी ब्रेक.
0: इट स्टार्ट्स विद कॉफी ब्रेक. या
1: या
0: सो यूजुअली मैं मतलब देखो क्या होता है, जब भी आप कोई स्टैंड अप शो में जाते हो तो पहले क्या होता है, पहले ओपनिंग एक्ट होता है. ओपनिंग एक्ट होने के बाद फिर मेन एक्ट आता है ना.
1: व्हाटएवर. कई बार ओपनिंग एक्ट मेन एक्ट को खा भी जाता है.
0: दैट्स आल्सो राइट. इसलिए मैं आ गया हूं ना ओपनिंग एक्ट करने.
1: यस, मैंने देखा इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड. दैट गर्ल इज रियली गुड.
0: शैरन वर्मा
1: वो पहले एज अ कंटेस्टेंट आई थी, तुमने मुझे बताया, और इस बार वो एज अ जज आई है.
0: सीजन 1 में वो कंटेस्टेंट थी.
1: ओके, मैंने उसका वो नहीं देखा हुआ.
0: अरे सीजन 1 में आल्सो शी वाज अमेजिंग. शी वाज सो गुड सीजन 1 में भी.
1: नो डाउट अभी वो जज की कुर्सी पे है.
0: शी वाज वन ऑफ देम जिसको समय रैना ने शो ओपन करने का अपॉर्चुनिटी दिया था. के लाइक ही रियली एंजॉयड हर शो. और शी वाज नॉट द विनर आल्सो एट दैट पॉइंट, बट उसने इतना अच्छा किया था काम कि she got a chance to open a show for Samay and then from there then उसकी popularity बढ़ गई. अभी वो Australia के tour कर रही है. Unfortunately New Zealand नहीं आ पा रही वो. No, it's not visa issues, it's ticket issues.
1: Audience issue.
0: Yeah.
1: So yeah, but she is really good. मेरे को बहुत अच्छी लगी वो.
0: वो उसका बहुत बढ़िया set होता है. Like मैंने
1: even अर्चना पूरन सिंह मेरे को बहुत अच्छी लगी. मतलब अर्चना पूरन सिंह को हमने एक different रूप में देखा है कपिल शर्मा के show में.
0: Yeah.
1: वहाँ पे वो हंसती ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते, because that's her job. लेकिन यहाँ पे she was savage, she was so good.
0: Yeah,
1: उसके reply बड़े अच्छे थे.
0: औरी की ले ली उसने.
1: औरी के औरी तो मेरे को लगता है कि सिर्फ इसीलिए आया था ताकि उसका मजाक बनाया जाए. He was just as a character there वहाँ पे.
0: And he was playing that character.
1: He was playing that character obviously because उसको पता है कि ये मैं character जो play करता हूँ तो it goes viral. So वो उसी वे से ही करता है वहाँ पे, act करता है वो.
0: तो yeah, that was India's Got Latent का review by Sandy. आपने अगर देखे हैं रीसेंट एपिसोड्स आप बताइए आपको कैसे लगे.
1: और बाय द वे अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा है जिसमें करण औजला आया है वो भी बताइए कैसा लगा.
0: वो देखा आपने?
1: वो अभी नहीं देखा है.
0: क्या यार, पहले आप वो देख रहे हो, लेटेंट देख रहे हो, फिर कपिल शर्मा. इट्स नॉट डन यार सैंडी.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Showerdome.co.nz.
5: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
6: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
7: डॉक्टर ने क्या बोला
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अशोर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
1: When India comes to town, Awadhya Roa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne ticket sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
11: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
12: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
13: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
14: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
15: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया बनाना है
14: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 4th September
16: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC

0: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए ड्राइव शो शुरू हो गया आज थोड़े से जल्दी. काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं सुपर सिटी में क्या हो रहा है इसके अराउंड भी, जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे.
1: और OCR के बारे में भी अपडेट्स आ रहे हैं. रिजर्व बैंक ने इसके बारे में जो है बोला है, देयर इज ऑफिशियल कैश रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.75%.
0: अच्छा, तो बढ़ गया ना अभी.
1: या दे हैव रेज्ड इट बाय 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स हम कह सकते हैं. ये बड़ा है बिकॉज पहले 2.50 था, अभी 2.75 हो चुका है. ये सेकंड कंसेक्यूटिव रेट हाइक है.
0: ये तो अभी तो शुरुआत हुई है, जुलाई से ऐसा कह रहे हैं ना लोग.
1: या
0: कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है.
1: और रेज इसलिए हुआ है बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ बिग कंसर्न. सो एनुअल इन्फ्लेशन रीच्ड 4.1% इन जून 2026 क्वार्टर, above Reserve Bank target range of 1.3%, and higher fuel prices rahe hain, which is partly linked to the conflict as well. Yeah.
0: Fuel prices bhi niche nahi aa rahe, rates bhi upar ja rahe hain, interest rates bhi upar ja rahe
1: hain. Household spending remains weak because of low income growth, job insecurity and flat house prices. Ye sab ho raha hai.
0: So yeah. अपनी तो लग गई है मामू, ऐसा मतलब इन मुन्ना भाई टर्म्स.
1: अगर देखा जाए ना रुजबे कि ये एक ऑर्डिनरी कीवीज के लिए इसका क्या मतलब है, मोर्गेज होल्डर्स के लिए बैंक कुड इंक्रीज मोर्गेज रेट एंड स्पेशली फॉर पीपल कमिंग ऑफ फिक्स टर्म्स. सो दैट मींस कि हायर रीपेमेंट्स हो सकती है. पीपल विद सेविंग्स, हायर इंटरेस्ट रेट कैन मीन बेटर रिटर्न ऑन सेविंग्स एंड टर्म डिपॉजिट. बिजनेसेस के लिए बोरो करना बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. सो हाउस प्राइसेस के लिए हाई बोरो कॉस्ट जो है कैन पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन डिमांड इन द हाउसिंग मार्केट, ऐसा बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स का. कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है तो इनका एम रहता है टू अल्टीमेटली टू ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक टूवर्ड इट्स 2% मिड पॉइंट. बट हाई रेट जो है ये ऑफकोर्स हर्ट करेंगे हाउस होल्ड्स को.
0: राइट, सो और भी इसके बारे में बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी के लिए इट्स टाइम फॉर बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड. थोड़े टाइम में एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए जिसके ऊपर आप यहाँ पे वार्तालाप करना चाहो तो कर सकते हो. 0800-004-866 इज द नंबर. यू कैन गिव अस अ कॉल एंड वी कैन हैव अ बैंटर अबाउट इट. तो थोड़ी देर में आपके लिए टॉपिक भी लेकर आएंगे यहाँ पे.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Coffee break आपके लिए जारी है अभी और आज मतलब काफी सारी बातें करने का मन कर रहा है आपके साथ. एक तो टॉपिक है सैंडी विच इज अराउंड सुपर. तो एक नया ऑप्शन की बात हो रही है, फ्लेक्सिबल न्यूजीलैंड सुपर ऑप्शंस. और वो इसलिए बात हो रही है उसके बारे में क्योंकि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे जो हमारा सुपर एन्यूएशन है, मतलब 65 के बाद आपको सुपर एन्यूएशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो ना, उसका खर्चा है वो 26.5 बिलियन ईच ईयर, ईयरली खर्चा है उसका. ये 2048 तक 72.8 बिलियन तक जा सकता है.
1: ओह वाओ.
0: सो नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लुक एट डिफरेंट ऑप्शंस ऑन हाउ दे कुड reduce that strain, क्योंकि वो unsustainable नहीं है वो.
1: So super annual जो है ये हर किसी को मिलता है या फिर the people who are not working?
0: नहीं नहीं, super annualization तो 65 के बाद होता है.
1: 65 के बाद ही मैं पूछ रही हूँ.
0: क्या हर किसी को मिलता है जो नहीं काम कर रहे उनको, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मेरे को लग रहा है I think you are eligible for it as soon as you turn 65.
1: Okay.
0: I don't know actually, to be honest. But yeah, if you know, please let us know. Okay, is it just valid for you if you're working? Sorry, not working. Or
1: yeah. That's what I'm trying to understand because that might affect this na. Agar wo usko low leke aana chahte hain.
0: Yehi wo offer karna chah rahe hain ki wo bol rahe hain ki agar aap 67 tak kaam karoge to aapko better return milega.
1: Yeah, so it's a working does not automatically stop NZ Super. You can earn salary while receiving it.
0: That's right. Yeah.
1: Yeah.
0: तो अभी वो ये exactly. तो अभी ये 65 आप जैसे होते हो आपको superannuation मिलना चालू हो जाता है. भले आप काम भी कर रहे हो तो भी आपको मिल रहा है.
1: Okay.
0: तो I think उसके around काफी सारे changes की बात हो रही है. But we'd like to ask अगर आपको मौका मिले कि आप 70 तक मत लो superannuation, लेकिन फिर उसके बाद आपको ज़्यादा मिलेगा. So would you opt in for that option? Or would you be like, नहीं मेरे को 65? Like, have you thought आप कौन से एज तक काम करना चाहोगे? Or have you thought कि नहीं भाई मेरा retirement age, I'm thinking. Because
1: have
0: India
1: you ever thought about retirement?
0: सबको मिलता है, आ गया मैसेज, सबको मिलता है. तो

0: यार एक हमें लिसनर थे हमारे 70-75 एज, वो बोलते थे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ,
1: या I'm हर किसी के ऊपर होता है ये. आप भी कॉल कीजिए और बताइएगा कि क्या आपने अपने रिटायरमेंट के बारे में कभी प्लानिंग की है यहाँ पर न्यूजीलैंड में, कि व्हेन यू रिटायर यू वांट टू डू दिस या दिस. कईयों का होता है कि रिटायर होके यार दुनिया घूमनी है.
0: हाँ लेकिन नहीं घूम पाते फिर.
1: मतलब एग्जैक्टली. सो क्या है आपका कोई रिटायरमेंट प्लान है या नहीं है उसके बारे में शेयर कर सकते हैं यहाँ पे आज.
0: राइट हाय.
2: नमस्ते सर. नमस्ते मैडम.
1: नमस्कार.
0: नमस्ते सर, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम नो सी.
2: बिल्कुल ठीक है भाई जी. ऐसा हुआ ये कि मैंने रिटायरमेंट किया एट द एज ऑफ 67.
0: ओके.
2: और मैं काम उसके बाद भी करना चाहता था, बट देन
1: नहीं कर पाए.
2: नहीं किया नहीं मैंने.
1: ओके.
2: सकता था लेकिन छोड़ दिया.
1: ओके.
2: It's all right. I mean, 65 की एज फॉर सुपर बेनिफिट शुड कंटिन्यू. अच्छा. और nobody is going to let go of it कि मुझे 70 से मिलेगा, क्योंकि you don't know in 5 years what will be the value of the dollar. Even if they start paying you a little more with the inflation जो जहाँ पर है अभी और ऐसे ही रहा, तो इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो जो आज आपको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा.
0: और वो रिस्क भी हो जाएगा ना लोगों के लिए कि भाई 70 तक क्या पता कल होना हो, मतलब ऐसा भी.
2: हाँ मतलब मर जाए आदमी.
1: या
2: 70, अब हमारे जैसे ढीठ लोग हैं भाई 70 से ऊपर जिंदा होते हैं, बहुत सारे लोग तो निकल लेते हैं जो इज्जतदार होते हैं.
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं,
1: ऐसा नहीं कहते हैं.
0: ऐसा नहीं है. नहीं बढ़िया. तो सर मेरे को आपको आपको पूछना है, एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, फॉलो अप क्वेश्चन है. तो 67 तक आप जब काम कर रहे थे, तो व्हाट वाज योर वर्क इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, लाइक मतलब व्हाट वर यू डूइंग?
2: देखिए मैं करियर बैंकर था. मैंने कई कॉन्टिनेंट्स में बैंकों में काम किया, लेकिन आखिर में मतलब 2-3 साल मैंने किया है एज कंप्लायंस ऑफिसर इन अ कंपनी. कंप्लायंस मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर जो भी बोलिए, 119 थी, उसमें काम किया.
0: क्या बात है.
1: ओके ओके, साउंड्स गुड.
2: अच्छा एक एक सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा.
1: जी जी जरूर
0: पूछो ना. हम जवाब नहीं देंगे उसका, लेकिन आप पूछो.
2: नहीं कोई बात नहीं, जवाब आप पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे. एक गाना आप लोग बजाते हैं कि ये गाना आजकल के मशहूर गानों में से एक है, वो गाना कुछ है तेरी बेस है थारू मेरी हाइस के लिए. मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया, हाइस क्या होता है?
0: अरे ये आप हमारे इसमें सोच रहे हो, सुन रहे हो ना, ये तेरी हाइस के लिए, ये हमारा स्वीपर बज रहा है कि ये हम सचिन को पूछते हैं, हमारे जो प्रोडक्शन इंजीनियर है
1: वो इसका जवाब दे पाएंगे,
0: वो उन्होंने ये सेट किया है. लेकिन मैं
2: फिल्म का गाना नहीं.
0: नहीं ये कोई मूवी का ही होगा, तेरी बेस है फॉर मेरे हाइस के लिए ना, ऐसा कुछ.
1: हाँ मूवी से ही उठाया होता है उसने तो, वैसे तो किसी मूवी में हो गई है.
0: मुझे लग रहा है ये ना साउंड अराउंड कोई टेक्निकल इसमें है, क्योंकि देर आर हाइज एंड देर आर लोज इन म्यूजिक ना. कोई म्यूजिक अगर कोई
2: जिसको हाइज के लिए,
1: हाई मींस की हाइज, हां
0: म्यूजिक के हाइज के लिए बेस बहुत फाड़ू है, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ
1: बेस इज रियली गुड.
0: I could not trace it on Google.
1: इतने ध्यान से सुनने के लिए,
0: हमारी भी आवाज सुन लीजिए ध्यान से. थैंक यू.
1: थैंक यू.
0: हाय आपका भी स्वागत है.
3: हेलो विश्वे.
0: हाय
3: चेतन बात कर रहा हूँ मैं.
0: हाँ चेतन बोलिए.
1: यस चेतन बताइए.
3: मैं वेटिंग करना है.
0: क्या बोल रहे हो?
3: कि उससे पहले ही चालू हो जाओ घूमने के लिए, कहीं भी जाना है कहीं जाना है.
1: Exactly. इसलिए तो हम बाली का ट्रिप लेके आए हैं.
0: तो आप पहले ही बोल रहे हो, पहले ही शुरू कर रहे हो.
3: मैं अभी लास्ट वीक को ही बाली लेके जाके आया.
1: अरे
0: कैसा लगा बाली आपको
1: बताइए?
3: बहुत अच्छा लगा. फैमिली के साथ गया था, अकेला नहीं गया था.
1: वेरी नाइस.
0: तो इसलिए अच्छा लगा ना आपको?
3: फैमिली के साथ गया था मैं. बहुत अच्छा लगा, बहुत हॉट था वहाँ. क्योंकि जब रिटायर की एज हो जाएगी ना, तब क्या होता है पता है, आपका पैर नहीं चलेगा, तो कहीं वॉक करना है तो वॉक नहीं कर सकते. ओके. कहीं खाना है तो आपको शुगर होगी, तो खाना खा

0: आ नहीं सकते आप कहीं जगह,
1: yeah.
0: उस सब मिस करोगे आप, उस रिटायर की वेट ही नहीं करना है, जाओ कभी अभी से पैसा बचा के कहीं भी घूमने चले जाओ।
2: लेकिन फिर वो टाइम पे फिर सोचते हैं ना कि बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है, वो तो सारे
0: बच्चे खुद ही बोलते हैं, बच्चे लोग ही बोलते हैं, मेरी बच्ची दो बेटियां हैं मेरे पास,
2: हाँ हाँ
0: मेरे पास दो बेटियां, बेटियां ही बोलती है देर आप घूमो, हमारी चिंता मत करो,
1: दैट्स सो कूल,
0: क्योंकि वो 65 के बाद आपका पैर नहीं चलेगा, क्या करोगे आप मेरे को बताओ।
2: सही बोल रहे हो यार,
0: कुछ कर नहीं सकोगे कहीं जाके, शुगर होगी कि कुछ भी हो सकता है आपको।
2: सही तो बोल रहे हो आप, हमारे घर वाले नहीं मानते ना, लेकिन वो बात
0: घर वाले मानना पड़ेगा घर वाले को भी,
1: या या या।
2: सही बोल रहे हो आप,
0: किसको बचेगा, किसको बचा के बीच में भी बैंक में ब्याज तो देती नहीं है, कितना टका देगी आपको ब्याज मेरे को बताओ, पैसा रख के क्या करोगे।
2: अभी तो और भी कम हो जाएगा,
0: उसके बाद भी आपको बताऊं कोविड जैसा कुछ आ जाए तो क्या हो सकता है मेरे को बताओ, निकल गए तो
1: पॉइंट है, उससे पहले 2020 से पहले ये सारी बातें हम नहीं सोचते थे,
0: या वही ना, कुछ कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है,
1: या या सच अ गुड पॉइंट,
0: उस इसी तरह का घूमते रहो आप, एंजॉय करो अपनी लाइफ, पीछे क्या चले गए क्या करेंगे मेरे को बताओ,
2: खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे,
0: वही ना,
2: सही बोल रहे हो,
0: वही होता है।
2: तो आप कब रिटायर हो रहे हो?
0: अब मेरे 15 साल बाकी है, मैंने घूमना चालू कर दिया मैंने।
1: अरे वेरी गुड, वेरी गुड,
2: चलो बढ़िया,
1: थैंक यू सो मच।
0: 15 साल बाकी है, 15 साल में क्या करूंगा मेरे को पता नहीं है,
2: नहीं तब तक
1: सही जा रहे हो।
0: अभी तक जो मैं अभी तक मैंने मेरी बेटियों के साथ मैंने घूम लिया, ऑस्ट्रेलिया जाके आ गया, फिजी जाके आ गया, बाली जाके आ गया, इंडिया जाके 2 बार जाके आ गया, सबका घूमना है, बस वही करना है मेरे को।
2: बढ़िया बढ़िया,
1: नाइस,
2: थैंक यू चेतन फॉर योर कॉल, या थैंक यू,
1: थैंक्स चेतन,
2: और भी बातें करेंगे आपके साथ, अभी के लिए कुछ मैसेजेस।
3: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं,
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
6: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स, हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग, स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स,
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और कुछ पहेलियाँ भी आज पहेली का मन कर रहा है. सैंडी पहले आपका टर्न है. किसके पहेली पे ज्यादा आंसर आते हैं.
1: दो सवाल पूछने वाले.
0: किसका पहेली पहले क्रैक हो रहा है, कौन क्रैक कर रहा है भी आप यहाँ पे
1: दोनों आंसर आप साथ में भेज सकते हैं. आपको दो मैसेजेस भेजने की जरूरत नहीं है.
0: हाँ, एक साथ ही भेज सकते हो.
1: ड्राइव कीवर्ड के साथ रुजबे का जो सवाल है उसका जवाब और जो मेरा सवाल है उसका जवाब. क्या सवाल है तुम्हारा रुजबे?
0: मेरा पहले है क्या? ठीक है मेरा थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है. आई हैव नो फीट टू डांस येट आई मूव अक्रॉस द फ्लो. आई हैव नो वॉइस टू स्पीक येट आई विस्पर थ्रू द डोर. I can swallow up a forest or be killed by a simple drink. And if you try to catch me, I am faster than you think.
1: मेरे को लगता है एक ही सवाल रखते हैं. Looking at the length of the question.
0: चलो ठीक है, ये
1: एक ही अभी के लिए एक ही है.
0: क्या लगता है आपको इसका आंसर पता है आपको?
1: फिर से बोलना पड़ेगा तुम्हें.
0: I have no feet to dance.
1: कोई पैर नहीं है डांस करने के लिए.
0: Yet I move across the floor.
1: फिर भी
0: मैं बहुत जल्दी फैलता हूँ. ठीक है
1: वो तो.
0: I have,
1: तो तुम्हारे तो फीट है.
0: I have no voice to speak, yet I whisper through the door. फिर भी मैं दरवाजे के भीतर से
1: विस्पर कर सकते हो.
0: हाँ मतलब हाँ ऐसा आवाज आएगा आपको मेरा. मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई देगी. I can swallow up a forest. मैं एक forest को निगल सकता हूँ. या फिर एक छोटे से सिंपल से ड्रिंक से मर भी सकता हूँ.
1: एक ड्रिंक से तो मर भी सकते हो.
0: और अगर आप मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे उससे ज्यादा तेज हूं मैं.
1: मेरे जहन में आंसर है.
0: अंतरप्रीत ने सही आंसर
1: दिया. लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगी. ओह नाइस
0: अंतरप्रीत, वेल डन यार, वेरी नाइस. लाइक क्विक आंसर आपका आ गया. और ये तो रोवा पे सुन रहे हैं हमें.
1: या
0: तो क्या बात है.
1: वेरी नाइस अंतरप्रीत.
0: एक और आंसर आया यहाँ पे, वॉइस. वेल वॉइस कुड आल्सो बी देयर. आई डोंट नो,
1: फीट नहीं है लेकिन फैल सकती है वॉइस. दरवाजे के भीतर से निकल सकती है. ड्रिंक से हाँ स्वेलो करोगे तो वॉइस थोड़ी देर रुक जाएगी ना.
0: फॉरेस्ट को कैसे स्वेलो करोगे वॉइस से? वॉइस से फॉरेस्ट को कैसे स्वेलो करोगे?
1: एको.
0: बट स्वेलो थोड़ी हो रहा है.
1: स्वेलो नहीं होगी वो. हाँ या मतलब उसमें भी फैल सकती है.
0: मोनिशा का भी आंसर आ गया यहाँ पे. यस मोनिशा, यू आर
1: लता का
0: right?
1: भी आंसर
0: ऑलमोस्ट
1: देयर है. या वो अंतरप्रीत फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे. क्या बात है.
0: अरे क्या बात है, क्या बात है.
1: एंड सिर्फ आपको मैसेज करके ये जवाब देना है. लक्ष्मी का भी आंसर आ चुका है.
0: मैसेज करके आप बताइए. गुड वन, ड्राइव कीवर्ड के साथ.
1: एक और आंसर आया है, वो भी सही है.
0: अमित नाम है इनका. पहली बार मैंने नाम देखा इनका. हवा हवा बोल रही है. धुआ, स्मोक. वेल वेरी क्लोज टू स्मोक आई वुड से.
1: वेरी क्लोज टू स्मोक या धुआं के बहुत करीब है ये.
0: हवा भी हो सकता है कि नहीं? हवा भी हो सकता है वैसे. नहीं हवा का वो नहीं हो रहा ना. सिंपल ड्रिंक कांट बी किल्ड. साइक्लोन को बंद कर सकता है. एक ही है यार,
1: एक ही चीज है जो सिंपल ड्रिंक से.
0: रजनी आपका भी आंसर आ गया यहाँ पे. थैंक यू.
1: खत्म हो जाएगी.
0: और भी नाम
1: मैसेज करते रहिए. 5599 इज अ नंबर.
0: और नाम लिख कर भेजिए. यहाँ पे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, नाम बहुत कम आ रहे हैं, तो नाम लिख कर भेजिए. वी वांट टू गिव यू अ शाउट आउट टुडे. वी वांट टू शाउट आउट योर नेम. अभी जिस आर्टिस्ट का गाना मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ सैंडी, ये आर्टिस्ट एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर रहे हैं. इनका नाम है ऋत्विज. उससे पहले यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं. थैंक यू सो मच सलेश, आपका भी मैसेज आया यहाँ पे. पम्मी आपने भी सही भेजा है यहाँ पे. जैज ने भेजा है सनशाइन. इंटरेस्टिंग.
1: सनशाइन हो सकता है, पूरे फॉरेस्ट को स्वेलो भी कर लेती है सनशाइन, स्वेलो एज इन की फैल जाती है, लेकिन बट
0: ड्रिंक कैसे उसको ये कर सकती है?
1: हाँ, ड्रिंक एज इन बारिश।
0: अच्छा, बारिश ऐसा बोल रहे हो आप,
1: okay. बारिश में सनशाइन चले जाती है कई बार, बारिश या फिर हाँ
0: इट्स ओके सैंडी, यू आर ट्राइंग टू
1: नॉट जस्टिफाइड बट या
0: Amberlin, thank you so much. आपका भी आंसर आया यहाँ पे, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. सो या लॉट ऑफ आंसर्स, आई थिंक एक काम करते, गाना सुनते, गाने के बाद आपको आंसर बता देंगे.

0: वेल, सवाल आपको पूछा था, आई हैव नो फीट टू डांस येट आई मूव अक्रॉस द फ्लोर, आई हैव नो वॉइस टू स्पीक येट आई विस्पर थ्रू द डोर, आई कैन स्वॉलो अप अ फॉरेस्ट और बी किल्ड बाय अ सिंपल ड्रिंक, एंड इफ यू ट्राई टू कैच मी आई एम फास्टर देन यू थिंक, व्हाट एम आई? एंड यस, सब लोगों ने यहाँ पे आंसर भेजा है द राइट आंसर. अमनीत, यस यू गॉट इट राइट, इट्स आग, इट्स फायर. Fire, आग is the right answer.
1: Yes, fire is the right answer. काफी लोगों ने actually में सही pick किया. थोड़ा घुमा के ये पूछा था रुजबे ने, लेकिन सही सवाल था. ऐसे और भी सवाल, और भी conversations, और भी बातें आपके लिए 4 बजे के बाद रहने वाली है drive show में. And Father's Day के competition में participate करने का मौका मिलेगा. और आज Wednesday है. आज कौन सी game है?
0: आज होता है situationship.
1: एक scenario आपके सामने रखेंगे. आप इस सिनेरियो में होते तो आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ऐसा सवाल आपके लिए होता है.
0: अभी बाली और बैंकॉक जाने का प्लान हो रहा है हमारा, तो वहां पे हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या फन होने वाला है, इसके बारे में सुनेंगे आप अभी.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
8: Harvey Furnishings Home Show Specials.
9: Cloudy and breezy down to a low of 11 for Auckland. Getting out of the CBD is starting to get a bit trickier now. To Constellation Drive, around 30 minutes into Silverdale, 45 minutes through the northern. Slow patches from Akwaranga Drive to Sunset Road. To Manukau, it's around 35 minutes into Drury, 1 hour from the city. Along the southern, heavy past Green Lane and slowing again to Panama and Manukau. To the airport, 26 minutes.
8: Exclusive Auckland Home Show offers, great savings and stylish inspiration this month at Harvey Furnishings.
10: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online.
11: Bunnings Warehouse.
12: Knock, knock. It's me, Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
13: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
14: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
13: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
14: पर डेवलपमेंट के पैसे
13: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
3: Time check.
15: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. There's little surprise as the OCR jumps another 25 basis points to 2.75%. Finance Minister Nicola Willis says it was very widely predicted.
17: The Reserve Bank's accelerator was flat to the floor, providing stimulus to the economy when it most needed it. That could not continue forever, and no one expected it to.
16: A Crown report on the Moa Point disaster has set out 6 recommendations for councils to avoid further systemic failures. One states that asset governance should move beyond the passive receipt of information toward active oversight. Mayor Andrew Little admits key information fell through the cracks.
18: The biggest surprise I got was that the Moa Point plant, as we have it now, is still incomplete from its original conception. Somewhere along the way, somebody's to-do list didn't tick off, oh, we've got a stage 2 we ought to get done.
16: A new report from the UN claims the Earth will likely pass the 1.5 degree limit on global warming within years. The threshold is seen as critical to avoid the worst impacts of climate change, such as wildfires and flooding. A man will go on trial for killing US conservative activist Charlie Kirk nearly a year on from his shooting. Prosecutors have said they intend to seek the death penalty if Tyler Robinson is convicted. To sport, Warriors front rower Tanner Stowers-Smith has signed another contract extension until the end of the 2030 season. And injured playmaker Luke Metcalf, speaking on NRL 360, is looking at a return by the third week of the NRL finals. Rugby league with Machinery House and a league of their own. And to the US Tennis Open first round, it's midnight in New York. Men's top seed Alexander Zverev is down 2-1 against Italian Lorenzo Sonego.
15: Sports news brought to you by Sony.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल, फील्स लाइक 14 डिग्रीज एंड आइसोलेटेड शावर्स हो सकते हैं. वेस्टलीज का साथ रहेगा. 6:02 पे होगा सनसेट. आज ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 12 डिग्रीज.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusbain.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4 बज गए हैं और पारी अभी तो शुरू हुई है. 4 बज गए और पारी अभी बाकी है, लेकिन अभी पारी हमारी शुरू हुई है.
4: अभी शुरू हुई है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस. ड्राइव शो आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड काफी लोगों ने लास्ट आवर में क्वेश्चन के आंसर दिए रुजबे के. आग लगा दी भाई.
1: अभी आज सैंडी, अभी आपका सवाल पूछने का टाइम है.
4: अभी सवाल पूछना है क्या? मेरे को तो लगता है कि अभी थोड़ा कॉम्पिटिशन के बारे में बता देते हैं,
1: थोड़ी मस्ती करते हैं.
4: थोड़ी देर में कुछ और टॉपिक भी लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पे आप यहाँ पे कॉल कर पाएंगे. फादर्स डे का कॉम्पिटिशन जो है ये भी शुरू हो जाएगा आपके लिए.
1: इट इज मिड वीक नाउ.
4: यस,
1: ठीक है. और सेकंड सितंबर भी है. फादर्स डे इस वीकेंड पे है,
4: दिस वीकेंड संडे.
1: व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेडनेसडे का दिन है आज. हम डे 4 बजे है, मस्त आफ्टरनून, काम से निकले हो. कोई अगर रेंट है आपके पास, कोई भड़ास है अगर
4: मिड वीक में, तो मेरे को लगता है कि 90% लोगों के पास रेंट आ ही जाता है.
1: रेंट या भड़ास हो ही जाती है,
4: 3 दिन में जमा हो ही जाता है.
1: हमारे अनफॉर्चुनेटली रेंट्स हम ऑन एयर नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास बहुत है. मतलब सैंडी के पास तो बहुत ही है.
4: अच्छा,
1: रेंट करने को. लेकिन वो ऑन एयर नहीं कर सकती हो, लेकिन आप कर सकती हो ना, क्योंकि आप
4: अनोनिमस नहीं रह सकते ना गाइस. आप समझ रहे हो दिक्कत, लेकिन वो प्रिविलेज आपके पास है.
1: So make use of that privilege, क्योंकि आपके एड में हम भी हमारी भड़ास निकाल सकते हैं ना.
4: Yes, you never know.
1: 0800 004866.
4: When was the last time you rented Rusbe on air?
1: मैं हाँ ना, अभी कम कर दिया ना मैंने.
4: वही मैं सोच रही हूँ कि
1: बहुत रोता था.
4: रोज आके एक नया बोलते थे, आज ना मुझे इसके बारे में बात करनी है, आज ना ये हुआ है. अभी थोड़ा कम हो गया Rusbe.
1: कम हो गया, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ ना,
4: लग रहा है ऐसे.
1: अब मैं घर पे रेंट करता हूँ, अब मेरी बीवी को बस सुनना पड़ता है. हाय, आपका स्वागत है.
5: नाम मत ले लेना मेरा.
4: नहीं, नाम नहीं आपका लेंगे तो बताइए.
1: आपको क्या लगता है, आपका लोग आवाज नहीं पहचानते? आपको पता है हम बाहर जब लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ड्राइव शो विद सैंडी रुजबे एंड यू. मैं बोलता हूँ हाँ, हमारे बस अभी एक ही चीज बाकी है, हमारे सैलरी का कट अभी हमको इनको देना पड़ेगा.
5: ये तो है. नहीं, ये लगा उर्वशी रोटेला की तरह मुझे गोल्डन पास देना पड़ेगा.
1: ये क्या जोक है?
4: गोल्डन पास क्या
1: ये
4: था?
1: क्या है ये, प्लीज एक्सप्लेन करो.
5: उसके पास दुबई का गोल्डन वीजा है ना. कहती तो है वो
4: काफियों के पास है.
1: वो कहती तो होगी, लेकिन उसको सुनता कौन है?
5: पर वो हर चीज में कहती
4: है, I am the first one, I am the first one. ओ, ऐसा है. अच्छा, तो फिलहाल तो ये
5: बताओ. मेरे नाम का मंदिर है.
1: अच्छा, बस उसके बारे में मत बात करो यार अभी. और
4: आप ये बताओ, आज आपका रेंट क्या है?
5: मेरा रेंट ये है कि ना, जैसे काम की जगहों पे ना कभी कभी जो चीजें गलत है तो आप वो नहीं करते हो ना, बट सीनियर चाहते हैं कि आप वो करो, है ना? तो अगर आप नहीं करते हो, देन यू गो इन अ बैड बुक कि इसने मेरी बात मना करी कैसे. तो मैंने एक बार ऐसे कुछ मना कर दिया था जो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए फॉर अ चाइल्ड सेफ्टी.
1: तो क्या हो गया ये वापस से सैंडी? मेरा मिस हो गया थोड़ा.
4: तुम रुजबे इसको कंसंट्रेशन किया, he was mentally not there.
1: मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा था उर्वशी रोटेला कौन है, इसलिए मैं आपकी गलती है. मेरी
4: उर्वशी रोटेला सर्च कर रहा था इमेजेस.
1: नहीं नहीं,
4: अब मेरे को बोलना तो अच्छे से बोलूंगी ना.
1: अच्छा
4: हाँ, तो बताओ परविंदर.
1: हॉट पिक्स
5: दीवारों से.
1: यार इसने नाम
5: दीवारों से वो निकालने थे, स्टेपलर निकालने थे दीवारों से चिपके हुए.
1: हाँ हाँ,
5: तो मुझे लगा इट्स नॉट सेफ कि मैं किसी बच्चे को बोलूं ये बात, दीवारों से स्टेपलर निकालूं.
1: अच्छा
5: आँख में स्लिप कर गया फिर
1: तो क्या हो गया उससे
5: अगर बाय चांस किसी की आंख में वो पिन फ्लिक कर गया
1: हाँ, तो रिस्की है वो 100%
5: बाय चांस ऊपर से ऊपर चढ़ के मतलब इट्स नॉट ऑन द ग्राउंड लेवल ऊपर चढ़ के ऐसे फ्लिक निकाल लेते उसको ना तो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर चढ़ेंगे बच्चे सेकेंडली वो शैतान बच्चे होते हैं ना यू कांट ट्रस्ट मतलब कुछ हो जाए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने क्यों चढ़ाया
1: पॉइंट है
5: ना तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं करूंगी आपको अगर मेरी क्लास से करवाना है यू गो एंड टेल नहीं पर्सन वॉज लाइक आई एम टेलिंग यू यू गो एंड टेल मैं कहना आई एम नॉट सेइंग कि कल को कुछ भी हो जाए बच्चे तो यही बोलेंगे ना इसने मुझे बोला था करने को
1: तो हुआ क्या फिर बाद में अभी उसका
5: मैंने नहीं किया तो आई फील इट्स लाइक ईगो ट्रिप मैंने मुझे ये मेरा परसेप्शन है ना कि आई थिंक मैंने ईगो मसाज नहीं किया अच्छी तरह से तो आई फील आई एम ऑन रडार तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है
1: हाँ ये एक रिस्क हो जाता है ये 100% ये एक रिस्क हो जाता है क्योंकि जब भी अगर आपने कोई चीज को अपोज कर दिया है मतलब फिर अभी वो सब रुके रहेंगे आपने कोई गलती की जैसे ही आपने अगर कोई गलती की तो भाई
4: गए काम से
1: बट मैं ऑनेस्टली बोलू आपको ऐसे रहना ज्यादा बेटर है रादर देन करना
5: इफ यू नो यू डोंट नो मेरा लाइफ में कितना स्ट्रगल हो गया हर चीज पे
1: वो तो है यार
4: पंगा ये है ना जो बोलता है वो कभी चुप नहीं करेगा उसको हर जगह मतलब उसको कोई भी चीज गलत लगेगी तो उस पर्सन को बोलना है
1: हाँ मेरे को देख के ऐसा मत बोलो ये
4: नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई टोटली गेट यू कि कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
5: मैं ट्राई करती हूं
4: या
5: कि मैं मतलब अगर कुछ गलत है तो मैं करूं ना पर मैं बोलूं भी ना कि नहीं मैं मतलब अगर करूंगी नहीं पर मैं बोलूंगी नहीं बिकॉज ऑलरेडी इतने फटे में टांग डली है मेरी और क्या
4: पर वही नहीं हो पाता है ना
5: कि मेरा प्रसेप्शन है क्योंकि जैसे मुझे बहुत लोग जानते हैं आई नो और बहुत से मेरे कलीग भी हैं जिनको पता है कि मैं रोज कॉल करती हूँ
1: हैप्पी बर्थडे
4: But that's okay. You're just sharing the feeling, na. I mean, मेरे को नहीं लगता है कि ये feeling किसी के mind में नहीं आती होगी. Most of the people say are in the same boat. Some people talk about it, some people don't.
5: और मेरा ये personal thought भी है कि क्योंकि I'm too vocal, तो it can also hinder my growth.
1: Yeah, वो तो वो है.
4: That's a very good point actually.
1: It will hinder your growth. In an organization where they believe in
4: being
1: hierarchy,
4: vocal is not,
1: where they believe hierarchy is a thing. But if you go into an organization where they are focused on growth and success, वहाँ पे आपका hinder नहीं होगा.
5: ऐसा भी मुझे लगता है कि selective people के मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, but selective लोग कुछ नहीं बोल सकते कि आप मत बोलो.
1: हाँ ये मैंने देखा है एंड आर यू टॉकिंग अबाउट मिसोजिनी कि औरतों को नहीं बोलना अलाउड होता है और मर्द बोलते हैं मेरे को ये ऑनेस्टली लगता है कि ये लेकिन ये चीज मैंने यहाँ पे भी देखी है बहुत मतलब इन जनरल न्यूजीलैंड में देखी है
4: न्यूजीलैंड में ये है चीज एंड अक्सर इसके बारे में बात होती है इट्स ओके
1: फेवरिज्म
5: की बात कर रही है फेवरिज्म कैन से व्हाट इज ना But non-favorites cannot even say a single word.
1: Yeah.
5: My thought is, अगर कोई सुन रहा है मुझे और they are thinking कि मैं bitching कर रही हूँ, तो it's just my thought.
4: Bitching नहीं होते, just rant होता है.
1: This just shows that you have become such a permanent part of the show कि आपको भी अपनी बात बोलने के बाद 5 मिनट clarification देना पड़ रहा है, justification देना पड़ रहा है.
4: ऐसे बोला.
1: मेरे को I just got a feel के how does Ruzbe talk on air.
5: एक और incident है ये दूसरे workplace का है मेरे.
1: ये थोड़ी देर में बाद में.
5: मैं छुट्टी पे हूँ. ये वाला क्लासिक एग्जांपल है. मैं छुट्टी पे हूँ काम से. मेरा काम नहीं था उस दिन, मैं छुट्टी पे थी. मेरे छुट्टी वाले दिन काम पे कुछ हो गया, ठीक है, और एक्शन मेरे ऊपर कि तुमने किया. आई वाज लाइक आई वाज नॉट इवन एट वर्क, हाउ कैन यू ब्लेम मी.
1: यही तो प्रॉब्लम था.
5: क्योंकि जो उस दिन ड्यूटी पे थे ना वो सारे फेवरेट्स थे, तो वो किसी पे ब्लेम नहीं से डाल सकते. मैं काम पे ही नहीं हूँ, लाइक कैन यू थिंक हाउ कैन यू पुट इट ऑन मी. तो बोले कि तुमको काम पे जाने, मैं शेफ थी तब, तो वो काम तुमको छुट्टी पे जाने से पहले जो भी मतलब
1: प्रीप था वो प्रेप करना था, राइट?
5: तो मैं नहीं फेंकनी थी, प्रेप तो मैं पूरा करके जाती थी कि मेरे को कोई उंगली ना उठा दे. मैंने कहा भी अगर कोई चीज एक्सपायर ही नहीं है तो मैं क्यों फेंकूंगी, क्योंकि फिर जब वो क्या कहते हैं उसको इन्वेंटरी जब फिर काउंट होती है तो मेरा नाम आएगा कि मैंने फेंक दिया है ना. तो अब हमें तो सब कुछ सोचना पड़ेगा ना, तो वो चीज अभी भी चल सकती थी.
1: मेरे को ऐसा लग रहा है
5: किसी और ने,
1: मेरे को ऐसा लग रहा है कि सून आप मेरे वर्क प्लेस पे फेवरेट हो जाओगे और मैं अनफेवरेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा एयर टाइम आप ले रहे हो. नहीं नहीं मजा कर रहा हूँ
5: मैं, मेरी आदत है, यू नो, जहाँ भी जाती हूँ इंटरवेंशन बन जाती हूँ ना चाहते हुए भी.
1: Nice, you have given the answer. You have given the answer to your own problem.
5: मैंने फिर काम छोड़ दिया था. हाँ ये मुझे पता है, मैं ना चाहते हुए भी ना, मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि जहाँ से भी कहीं जोर से हंसी की आवाज आती है ना, वी नो परविंदर इज देयर.
1: ये बोल दिया खुद का नाम खुद.
4: अभी मैं ब्लेम नहीं ले सकती.
1: चलो
5: मैंने वो काम छोड़ दिया था पुराने वाला जहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था ना.
1: चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने बात की बहुत अच्छा लगा. एंड डोंट वरी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. आप बस ड्राइव शो सुनिए मोटिवेशन के लिए. अभी गुरु रंधावा आपके लिए.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
1: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phuket, where dreams begin.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Phuket, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Phuket, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
5: Super Se Upar, ये show जारी है आपके लिए अभी Drive Show में.
6: Yes, and अभी आपको बताना चाहते हैं very important information. You know, जब भी वीकेंड आने लगता है तो sometimes you plan to go somewhere and रुजबे तुम भी प्लान कर रहे हो ना कि कहीं दूर जाने के लिए रोड ट्रिप तुम्हारा बेसिकली रहने वाला है.
5: जी.
6: या सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि बड़ी स्ट्रगल होती है यार कि रोड ट्रिप पे जाना है, ये गाना चलाए कि वो गाना चलाए, ये करे या वो करे. वी हैव सॉर्टेड समथिंग आउट फॉर यू. ट्रेंड मेकर्स में अक्सर आपने यहाँ पर डिफरेंट थीम्स सुने हैं, एंड वन ऑफ द थीम जो हम ट्रेंड मेकर्स में कर चुके हैं वो है रोड ट्रिप. सो वट वी हैव डन इज़ वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट फॉर यू जिसमें रोड ट्रिप के गाने उसके बारे में हमने बात की है वो हमने ट्रेंड मेकर्स में किया था. एंड ये एपिसोड अभी आप सुन सकते हैं रोवा पे. इफ़ यू टेक्स्ट टी एम दैट इज ट्रेंड मेकर्स टी एम on 5599.
5: So you'll get the link for the music station. जिसमें अलग-अलग हमने ये किए. देखो अब आप बोलोगे कि अरे यार
6: फिलहाल तो आपको लिंक मिलने वाला है ये रोड ट्रिप वाले का.
5: हाँ अभी रोड ट्रिप मतलब यू नो काफी बार ऐसा होता है ना कि अरे हम तो Spotify पे सुन लेंगे या हम कहीं और सुन लेंगे या जो भी है. लेकिन एडवांटेज क्या है आपको ये ट्रेंड मेकर्स सुनने का इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज सॉन्ग्स तो आप सुन लोगे ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको हम लोग मौका देंगे कॉन्वर्सेशंस करने का विथ योर फ्रेंड्स. सो वील टॉक अबाउट अ सॉन्ग, वील टॉक अबाउट अ मेमोरी, वील टॉक अबाउट यू नो सम बैकग्राउंड अबाउट द सॉन्ग, एंड वाइल द सॉन्ग्स प्लेइंग यू एंजॉय द सॉन्ग एंड यू ऑल्सो शेयर योर मेमोरी ऑफ दैट सॉन्ग
6: 100%. सो इट्स अ वेरी नाइस ऐसा वाला एक शो हमने आपके लिए तैयार किया है, तो ज़रूर इसको सुनिएगा. रोड ट्रिप का ये प्रॉपर शो है. सो अगर आप 5599 पर टी एम लिख के भेजते हो ट्रेंड मेकर्स का रोवा का लिंक आपको मिल जाएगा. अदरवाइज रोवा तो ऐप आपके पास है ही, रोवा ऐप पे हम पे जाएंगे तो ट्रेंड मेकर्स भी आपको वहीं पे दिखाई देगा, तो उसके अंदर रोड ट्रिप का आपको सेगमेंट मिलेगा. आप hum.rova.nz पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप ट्रेंड मेकर्स सर्च कीजिए, आपको रोड ट्रिप का सेगमेंट मिलेगा. और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, बट या दिस इज़ समथिंग यू कैन इन्जॉय अपने रोड ट्रिप में. सो अगर आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक चाहिए TM लिख के भेजिए, यू विल गेट द लिंक. एंड ऐसे कौन से गाने आप ट्रेंड मेकर्स में सुनना चाहते हैं, ऐसे कौन से थीम्स आप और भी चाहते हैं कि आपके लिए हम कवर करें, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 इज द नंबर.
5: जी तो ज़रूर यहाँ पे आप आपके सजेशंस भेजिए. आज ट्रेंड मेकर्स में हम क्या लेकर आने वाले सैंडी?
6: अब बताएंगे
5: बताएंगे थोड़ी देर में, सरप्राइज है.
4: Bollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
8: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: We all listening to Happening Bollywood's biggest hits. Drive show जारी है आपके लिए. वैसे कल हमने यहाँ पे World Letter Writing Day celebrate किया. देखो सैंडी, अभी मैं नहीं अटका ये बार. World Letter Writing Day में हम लोगों ने letters लिखे, hand written letters. हम लोगों ने ये दिए.
1: या ये हमने हैंड डिलीवर किए, हमने हैंड डिलीवर किए जिसको भी डिलीवर करना था.
0: और फिर उसकी रील भी बनाई हमने. प्लीज जाके चेक आउट कीजिए.
1: गो एंड चेक द रील, क्योंकि हमने कल यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि हम ये करने वाले हैं. नाउ आप में से किसने किया है? हमने तो कल ये कर दिया, हाथ से एक लेटर लिखा.
0: कल हमने चिल्ला चिल्ला के
1: किया, प्रॉपर
0: चिल्ला चिल्ला के आपको सबको बहुत ही मोटिवेट करने की कोशिश की कि अगर लेटर नहीं हो सके तो एटलीस्ट जाके बात तो कर लेना किसी के साथ.
1: और लेटर के ऊपर हमने पूरा सेगमेंट कर दिया 6 से 7 के बीच में.
0: वही तो,
1: गाने बजा दिए, कबूतर जा जा, वो सब चीजें. तो आप में से कोई है जिसने जाके लेटर लिखा?
0: अगर एक ने भी लेटर लिखा तो प्लीज यहाँ पे हमें मैसेज करके बताइए या तो कॉल करके बताइए.
1: या
0: 0800-004-866.
1: और हमारी जर्नी कैसे रही, फ्रॉम राइटिंग अ लेटर, डिसाइडिंग राइटिंग अ लेटर, टू डिलीवरिंग अ लेटर, हमने वीडियो बनाई है. वीडियो जाके चेक कर सकते हैं ruzbe_thebaba पे जाके, हम FM पे जाके, या सैंडी सेको, ये हमारे इंस्टा हैंडल्स है. सो वहाँ पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. ruzbe, तुम्हारे कितने, तुम्हें 4000 करने थे ना, कितने हुए तुम्हारे?
0: यार अभी भी नहीं हुए सैंडी यार.
1: कितने
0: हैं? ऐसा टाइम बहुत ही खराब चल रहा है यार, ऐसे लग रहा है.
1: कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे अभी? तो रील देखते रहोगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे तुम्हारे फॉलोअर्स? जैसे फोन ओपन करते हैं इसकी रील बजती है.
0: ओह, आई नीड ओनली 4 मोर.
1: क्या बात कर
0: more
1: रहे हो?
0: लेफ्ट फॉर 4000. चार तो अभी होने चाहिए यार.
1: ये चार लोग तो जाके ruzbe को फॉलो कर ही सकते हैं. तो लगे हाथ वहाँ पे आपको सैंडी सेखो भी मिलेगी, वो भी फॉलो कर लेना.
0: सिर्फ चार.
1: सो ruzbe_RUZBEH_thebaba. या
0: जेन जी.
1: या नहीं, क्योंकि मेरा नेफ्यू जो घर पे ना, उसके सामने एक दिन जेड कहा तो उसने बोला जी.
0: अच्छा.
1: ओके ब्रो, जी.
0: अच्छा ऐसा होता है.
1: हाँ वो
0: जी हो गया, अभी जेड नहीं है.
1: जी हाँ, यहाँ पे बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं, लेकिन जी इज मोर कॉमन.
0: अच्छा.
1: जेड भी गलत नहीं है बाय द वे, जस्ट अगर कोई जेड कहता है तो जेड गलत नहीं है.
0: एक आ गया, एक और आ गया,
1: एक और आ गया,
0: चाहिए बस अभी.
1: ओके
0: कौन आया एक मैं बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि उनको भी शॉर्ट आउट देते है ना. अंतरमंजी, अंतरमन जी ने अभी फॉलो किया. ए यार हमारे वो है क्या, अंतरप्रीत
1: है क्या? देखो आपको सैंडी से को भी मिलेगी, उसको भी कर ले.

0: ना बढ़िया. द प्रायोरिटी राइट नाउ इज रुस्बे.
1: अभी
0: उसके हमें 4,000 करने हैं, तो 3 और बाकी है तुम्हारे.
1: मेरे 3 और बाकी है.
0: 3 और बाकी फॉलोअर्स प्लीज रुस्बे अंडरस्कोर द बाबा इंस्टा पे जाके सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए. और हमारी कल जो इतनी हमने अच्छी वीडियो बनाई है ना,
1: उस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए एक बार यार.
0: तो वो जरा जाके चेक तो करो गाइस.
1: या दैट इज इंपॉर्टेंट.
0: इतनी मेहनत की हमने एक वीडियो बनाने में, क्या कटवट डाले है बीच में,
1: क्या अंजू सैंडी ने बहुत मेहनत की, लेकिन सीरियसली सैंडी की मेहनत है ये पूरी.
0: जाके चेक करो उस पे एंड शो सम लव. एंड हम भी यहाँ पे लव शो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको जीतने का मौका मिलने वाला है.
1: $500 फादर्स को जीतने का मौका मिल रहा है यहाँ पे फादर्स डे कॉम्पिटिशन में. थोड़ी देर में आपको मौका देंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, बट फादर्स गेट रेडी. आपका टेस्ट लेंगे हम यहाँ पे, आपको ग्रिल करेंगे थोड़ा, एंड आपका नाम ड्रॉ में शामिल करेंगे फॉर $500.
0: एंड हम बोर्डिंग कॉल भी आपके लिए 5 बजे के बाद ओपन अप हो जाएगा किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे. यू कैन विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. एंटर कैसे करना है, स्पेशल बोर्डिंग कॉल आपके लिए यहाँ पे प्ले होगा 5 बजे के बाद. जैसे ही आप सुनेंगे उसके बाद आपको रोवा ऐप पे जाना है, रोवा वेबसाइट पे जाना है. वहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल का जो कंपटीशन पेज है वहाँ पे बोर्ड नाउ लिखना है, 5 बजे के आगे सबमिट करना है. इतना सा करने से ही आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. अगर आपको कंपटीशन पेज लिंक चाहिए तो BC लिख के भेजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको मिल जाएगा कंपटीशन पेज लिंक. वैसे हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. विजिट flysolomons.com. टर्म्स एंड कंडीशंस भी है इसकी जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे. बड़े तुम्हारे 3 फॉलोअर्स
1: अभी, एक और दो और आए. सुनीर थैंक यू सो मच, आपने भी यहाँ पे किया. साद शाहजद मलिक आपने भी यहाँ पे फॉलो किया, होपफुली आपने भी सुन के किया है. और ये नवीन गुप्ता ने फिर से फॉलो किया क्या?
0: नहीं, उन्होंने बीच में अनफॉलो कर दिया.
1: अच्छा, अनफॉलो कर दिया उन्होंने मेरे को पहले. अच्छा, मजा नहीं आया उनको करने, अब फिर से फॉलो कर रहे. ए, हो गए 4,001 हो गया यार. वेरी नाइस,
0: गुड वन.
1: क्या बात है. आई जस्ट फॉलोड यू. जिबलो ने भी फॉलो किया. जिबलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. अभी देखो रुकना नहीं है 4,000 पे.
0: अभी जो सुन रहे हैं वो भी प्लीज जाके करो. तो अभी आपको कई बार क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है, वो कंटेंट आपको वहां पे जाके वीडियो में मिलता है.
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई, वेयर स्लीपी हेड कंफर्ट मीट्स एक्सेप्शनल वैल्यू. बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू.
3: The breakfast show with VJ and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
3: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Live Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे बॉलीवुड में क्या हो रहा है इसकी खबर भी हम लेकर आते हैं. मैंने अभी जस्ट सुना, मतलब एड्स में सुना कि मिर्जापुर द मूवी आ रही है यार 4 सितंबर को, मतलब इसी फ्राइडे
3: को रिलीज हो रही है. यस
2: या दैट्स सो कूल यार, इतना जल्दी आ भी गया ये टाइम.
3: या उसका ट्रेलर हम यहाँ पे प्ले नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज़ उसमें नहीं है ऐसी लैंग्वेज है ऐसी कि जो हम रेडियो पे प्ले नहीं कर सकते
2: जी.
3: बट ईशा देओल ने कंफर्म किया है साइनिंग मालामाल वीकली 2.
2: मालामाल वीकली 2 आ रही है.
3: मालामाल वीकली 2 आने वाली है. मुझे पहली मूवी तो सुपर्ब लगी. मुझे लगता है कि उसमें जो कॉमेडी, जो करेक्टर्स जो थे सुपर्ब थे. आई कैन वॉच दैट मूवी एनी टाइम. सो उसमें अक्षय खन्ना भी था ना? नहीं, अरबाज खान था.
2: अरबाज खान,
3: या
2: अरबाज खान था ना, जिसको छींके आ रही थी उसको वहां पे वो हो रहा था, हे फीवर हो गया था उसको.
3: यस बहुत अच्छी मूवी थी यार. सो मालामाल वीकली 2 जो है इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर्स इन नवंबर 2026, यानी कि नवंबर 2026 में, इसी साल में इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है. इट विल हैव कम्प्लीटली न्यू स्टोरी लाइन. हाउएवर जो कोर फ्लेवर है ओरिजिनल मूवी का, सो जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल इन अ स्मॉल टाउन, उसको वो रखने वाले हैं, उस फ्लेवर को वो रखने वाले हैं.
2: मैंने सुना है कि इस मूवी को अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. मतलब सीरीज नहीं देखी है तो भी आपको ये मूवी समझ में आएगी. लेकिन
3: कौन सी?
2: मिर्जापुर सीरीज.
3: ओके
2: अगर आपने नहीं देखी है. आप मिर्जापुर की बात कर रहे थे ना?
3: मैं मालामाल वीकली 2 की
2: बात कर रही थी. सॉरी, मैं मिर्जापुर में अटका था. क्या हुआ मालामाल वीकली 2 का?
3: Totally skip the conversation. मैंने बोला कहाँ हो तुम रुस्बे?
2: क्या पता यार. Yeah. I think it's just too much multitasking. Don't blame me.
3: I said ईशा देओल ने साइन की है मूवी मालामाल वीकली 2. अभी
2: ईशा देओल के बारे में कौन ही सुनना चाह रहा है?
3: देखा, पहले इसने ओके बोला,
2: मैं सुन लिया वो. मतलब ठीक है, मतलब उसके बाद और भी ईशा देओल के बारे में बोल रही है यार. मतलब
3: उसके बारे में नहीं बोल रही थी. अच्छा? मैं मूवी के बारे में बोल रही थी कि नवंबर में इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है.
2: अच्छा,
3: मूवी में नई स्टोरी लाइन रहेगी, लेकिन जो थीम है इस मूवी का
2: पुराना गरीब वाला दिखाएंगे.
3: सो ओरिजिनल जैसे ऑर्डिनरी पीपल इन अ स्मॉल टाउन, जहाँ पे वो सब चीजें हैं, तो ग्रीड, वो यू नो स्मॉल टाउन पॉवर्टी, ग्रीड, सडन वेल्थ, ये सब थीम वो रखने वाले हैं. जो ओरिजिनल मूवी में था,
2: ओरिजिनल मूवी में तो विलेज दिखाया था वो लोग ने,
3: वही स्मॉल टाउन. या
2: सो या
3: बट तुम अब तुम बताओ, तुम मिर्जापुर के बारे में क्या बात कर रहे थे?
2: मिर्जापुर के बारे में मेरे को लगा आप बात कर रहे हो. मिर्जापुर जो अभी आने वाली है, ऐसा कह रहे हैं कि ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है मिर्जापुर की तो भी आप मूवी देख सकते हो, आपको पूरी समझ में आएगी. लेकिन अगर आप सीरीज देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको मूवी देखना और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेक्स्ट सीरीज में वो कनेक्ट होने वाली है.
3: ओह वाओ,
2: दैट्स व्हाट दे आर सेइंग.
3: सो जरूरी नहीं है सीरीज देखना इन ऑर्डर टू वॉच अ मूवी.
2: या बट मूवी देखना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू वॉचिंग द सीरीज.
3: दैट्स अ गुड कनेक्ट यार.
2: मस्ट स्ट्रेटजी लगा.
3: बिकॉज़ क्या है ना, अभी मूवी देखने के बाद दे विल बी लाइक हां सीरीज देखते हैं जिन्होंने नहीं देखी है.
2: ये मूवी ऐसी है ना जो मैं ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू वॉच इट इन द थिएटर.
3: या
2: because it's got action and you know and I hope we don't have to pause in between.
3: Abhi abhi jo hua na thodi der pehle when you skipped whole conversation,
2: wohi hua aapke sath bhi.
3: Nahi, someone texted me,
2: ha,
3: welcome to my life.
2: Oh no.

0: accurate traffic.
1: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
2: Cloudy and breezy down to a low of 11 for Auckland. Traffic reaching its maximum as we head towards the busy stages. To Constellation Drive, just over 25 minutes. And to Silverdale, 45 minutes through the northern busy patches from Onewa Road to Northcote Road. To Massey, it's around 25 minutes via the northwestern. And to Manukau, 45 minutes. Drury, just over an hour via the southern.
1: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
3: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
3: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
6: Get the Skinny!
7: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
8: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The Reserve Bank expects household spending will gradually strengthen as it hikes the OCR. It's today risen to 2.75%. Governor Anna Bremen says fixed mortgages are already factored in.
10: Wholesale interest rates have increased in anticipation of the rate hike today. So in terms of the most common tenors, like 1 to 3 years, we don't expect much of an effect.
9: The impending closure of the Methanex plant in Taranaki is expected to be a significant blow to the region's economy. The methanol producer is mothballing its New Zealand operations, citing dwindling gas supplies. New Plymouth Mayor Max Broff says a lot of good jobs are set to go.
11: They're one of the major employers in the district. They're specialist jobs and they're very high-paying roles, and it's just another kick in the guts for our economy, actually.
9: Water is continuing to be trucked into the Awatiri area in Marlborough as crews work to pinpoint and fix a major leak. The issue is impacting communities, including Seddon. There are concerns the leak may be in a pipe under a riverbed, which could be a challenging fix. And pop star Bruno Mars has announced a second show in New Zealand. He's performing at Auckland's Eden Park on March the 13th and now also the 14th. To sport the US Tennis Open, it's just as well New York is the city that never sleeps. It's 1 in the morning there, and in the US Tennis Open, men's top seed Alexander Zverev is down 2-1 against Italian Lorenzo Sonego. It's deep in the fourth set. To rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, back to the future for Wallabies playmaker James O'Connor. He's back where it all started nearly 2 decades ago when he was 17, having signed a 1-year deal with the Western Force.
3: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी, फील्स लाइक 14 डिग्रीज एंड ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोना बी एज लो एज 12 डिग्रीज. 6:02 पे होगा सनसेट, आइसोलेटेड शावर्स एंड वेस्टर्लीज का साथ होगा आज शाम.
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
6: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
13: पांच बज चुके हैं. Power Drive at 5 आपके लिए. हम शुरू करते हैं पांच से छह के बीच. And आज है 2nd of September. Hi Sandy.
14: A very very good evening to you. Hi Rusbe and Zia. 2nd September है. You know, already temperatures थोड़े warm feel शुरू हो चुकी
13: है. Warm, yes, yes.
14: ऐसा मुझे not just कि spring है तो ऐसा feel हो रहा है, but actually मैं temperature थोड़ा सेटल हो चुका है.
13: वार्म लग रहा है, काफी
14: वार्म लग रहा है.
13: थोड़े टाइम के लिए लगेगा वार्म, मुझे लग रहा है. एंड देन अगेन इट विल देयर बी लाइक अ कोल्ड वाला एक फेज आएगा.
14: और वो भी होता है ना कि जाती हुई ठंड जो है वो कई बार बीमार करके जाती है लोगों को.
13: बीमार तो बात ही मत करो यार, बीमारी इतनी ज्यादा हो रही है क्या ही बताए. लेकिन सैंडी आज हम Because it's Wednesday.
14: It is Wednesday. आज हम आपके लिए situationship लेके आ रहे हैं.
8: Situationship.
13: और आज का situationship बहुत ही relatable है काफी लोगों के लिए.
14: मैंने last hour में ही experience किया है वो.
13: हाँ.
14: So वो scenario आपके सामने रखूँगी. अभी रखना है कि थोड़ी देर में?
13: अभी क्या अभी?
14: Okay. So ये जो situationship में है, इसमें आपको क्या करना है? आपको बताना है कि आप एक ऐसी situation में हो जहाँ पे आपने फुल ऑन पूरी कहानी बता दी. मतलब यू हैव शेयर्ड लाइक पूरे इमोशंस आपने शेयर कर दिए. ठीक है,
13: इतना ज्यादा मत बढ़ाओ भी.
14: नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिनेरियो बताने दो ना. इट्स नॉट सिमिलर टू लास्ट आवर सिनेरियो. आई एम जस्ट उसको थोड़ा सिनेरियो अलग बना रही हूं.
13: मुझे पता है आप जो सिनेरियो बोलेंगे उसमें सबसे ज्यादा हमको विमेन की कॉल आने वाले हैं.
14: तो लेट्स सी, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी कि इसके ऊपर विमेन कॉल करती है या मेन कॉल करते हैं.
13: चलो ठीक है.
14: तो आपने पूरी कहानी बता दी, अपने इमोशंस उसमें बता दिए, आपने अपने जज्बात उसमें बता दिए, सब कर दिया, जस्ट टू रियलाइज दैट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू is on is zoned out.
13: वो कुछ और ही खोया हुआ है.
14: So the person is somewhere else and is asking क्या क्या बोला था. And second take में you cannot share the same जज्बात, same emotions. You can't do that again and again.
13: Yeah, yeah.
14: आप इस सिचुएशन में है तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा बताएंगे या फिर क्या करेंगे?
13: Just give us a call and tell us that you've been in this situation.
14: और कभी आपके साथ ये हुआ है? This is a situation today. 0800-00-HUM. I'm sure काफी लोगों के साथ ये हुआ होगा.
13: 0800-00-4866. मेरे साथ मैं अग्री कर रहा हूँ, रिसेंटली काफी बार हो रहा है ये कि कुछ बात हो रही है एंड आई जोन आउट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. एंड मुझे लगता है कि मैं भी जानता हूँ एक और इंसान को जिसके साथ ये बहुत होता है. इट्स अ man thing or a boy thing. Men thing. I feel
14: male thing.
13: Yeah, I think so.
14: Okay, let's see. Callers आएंगे तो वो decide कर पाएंगे.
13: Yeah, yeah. Let's see कौन call करके बोल रहा है. I would like to get some males also calling over here and saying कि हमारे साथ भी ऐसा होता है. क्योंकि I don't believe कि हमेशा हम ही होते जो zone out हो जाते. Women also zone out a lot of times.
14: या लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा टेक है कि मेल्स का मैंने ज्यादा देखा है, विमेन फिर भी आपकी पार्शली कोई ना कोई बात तो बीच में सुनी लेगी.
13: मेरे को लग रहा है विमेन आर बेटर एट मल्टीटास्किंग. दे कैन बी प्रेजेंट इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. मेन के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है
14: टू
13: बी प्रेजेंट एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम.
14: या मतलब मल्टीटास्क करना.
13: 0800-00-4866 आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? हैव यू अंडरस्टूड द सिचुएशन और डू यू वांट अस टू रिपीट इट? सिचुएशन बहुत सिंपल है. सिचुएशन ये है कि आपसे कोई बातें कर रहा है, लंबी चौड़ी बात कर ली उन्होंने, सब बोल दिया एंड आपने बीच में ही उनको खो दिया है.
14: या मतलब कि जोन आउट हो गए. आपने किया है ऐसे तो आप भी कॉल करके बताइए यहाँ पे कि आपने बहुत बार किया है ऐसे और बाद में आपको पता भी नहीं चला है.
13: फिर आपने कवर कैसे किया ना वो चीज. ये भी अगर आप शेयर करना चाहो तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो यार. हेल्प,
14: गिव सम टिप्स टू द कम्युनिटी.
13: एनीवे गाना सुनते हैं, उसके वो गाने का टाइम है आपके पास यहाँ पे कॉल करके आपकी बातें शेयर करने का. 0800-00-4866.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपको यहाँ पे हमने बोला था अपॉर्चुनिटी था आपके पास यहाँ पे कॉल करने का 0800-004-866 if you have ever been in this situation जहाँ पे आपसे किसी ने बातें की है दिल खोल के बातें की है लेकिन आप उनको सुन ही नहीं पाए हो
1: zoned out हो गए
0: आप कहीं और ही हो और फिर आपने उसके बाद उनको कैसे हैंडल किया क्या किया मैं तो देखो मैं बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हूँ तो मैं तो बोल देता हूँ कि सॉरी यार नहीं था ध्यान मेरा और आज मेरे साथ ये दो बार हो गया ऑलरेडी बट आप कैसे हैंडल करते हो अगर आप इफ यू हैव बीन द रिसीवर और द गिवर यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर और यू कैन आल्सो मैसेज अस ओवर 5599 पे
1: एंड लेट्स सी कि ये ज्यादा मेल करते हैं या फिर फीमेल करते हैं वैसे बैंक्स आर अर्ज टू लिफ्ट टर्म डिपॉजिट रेट्स ये आर्टिकल अभी मैं देख रही हूँ
0: हाँ लिफ्ट कैसे करेंगे अभी OCR बढ़ गया है तो अभी कम हो जाएंगे ना
1: दिस आर्टिकल इज अबाउट कॉल्स फॉर न्यूजीलैंड बैंक्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स दे ऑफर ऑन टर्म डिपॉजिट बिकॉज OCR एंड अदर मार्केट रेट्स हैव बीन चेंजिंग सो इफ यू हैव मनी सिटिंग इन टर्म डिपॉजिट जो रेट आपको रिसीव हो रहा है मैटर्स बिकॉज इट डिटर्मिन्स कि कितना इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उसमें
0: दैट्स राइट
1: तो इसके ऊपर जो है हो रहा है
0: लेट्स सी क्या होता है उसके ऊपर लेकिन देखो थोड़ी देर में आपको फादर्स डे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का मौका मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल नॉट फाइनल बट योर फ्यू चांसेस जो आपके बाकी है वो आपके चांसेस रहेंगे अभी क्योंकि आज 2nd September और कल फाइनल चांस रहेगा ड्राइव शो में उसके बाद 4th को तो ड्रॉ होने वाला है ना
1: 4th को ड्रॉ होने वाला है सो आपको आज और कल ही चांस मिल रहा है थोड़ी देर में यहाँ पे हम कॉल्स इनवाइट करने वाले हैं फादर्स डे के कंपटीशन के लिए 0800 00 हम पर बट यू ऑल्सो हैव सोशल मीडिया कंपटीशन जहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज पे डैड्स AI अपग्रेड ये फोटो हमने डाली है एक AI जनरेटेड फोटो ही हमने डाली है डैड की सुपर हीरो की उसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपने डैड की फोटो डालनी है AI जनरेटेड एज इन अपने डैड को आपको सुपर हीरो शो करना है When you will go to the page, तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है वो बाकी फोटोज देख के कमेंट सेक्शन में डालिएगा गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो एंड द कॉम्पिटिशन पोस्ट और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे $300 कैश आप अपने डैड के लिए जीत सकते हैं विनर का नाम अनाउंस होने वाला है फ्राइडे को यहीं पे ड्राइव शो में
0: और इस बार फ्राइडे को आपके लिए सरप्राइज है
1: या स्टे ट्यून्ड

0: trip I make.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
4: Yamaha, the best in boating.
5: Cloudy and breezy down to a low of 11 for Auckland. Traffic reaching its maximum as we head towards the busy stages to Constellation Drive, just over 25 minutes, and to Silverdale, 45 minutes through the northern busy patches from Onewa Road to Northcote Road. To Massey, it's around 25 minutes via the northwestern, and to Manukau, 45 minutes, Drury just over an hour via the southern.
4: Trusted Yamaha performance reliability. Promotions available now on Yamaha 150 to 200 horsepower outboards.
6: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie.
7: Nah, all good.
6: Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra, and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan, and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा.
1: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
12: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. Drive Show aapke liye jari hai abhi. And now is the time ki Father's Day competition. Second last time on the Drive Show.
13: Yes, aaj aur kal aapko mauka mil raha hai is competition mein participate karne ke liye. Friday ko draw hone wala hai, big draw hone wala hai. Kisi dad ko milenge $500 cash. So now is the time to call 0800-00-HUM, 0800-00-HUM. अगर आप डैड हैं तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए इस नंबर पे, एंड आपसे कुछ सवाल हम पूछेंगे और आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा, जहाँ पे $500 कैश दिस फादर्स डे आपके नाम हो सकते हैं. अपनी मन पसंद की कोई चीज़ आप एक्चुअली में इस कैश से खरीद सकते हैं सिर्फ अपने लिए.
12: जी, तो $500 अगर आपको जीतने हैं, फादर्स आउट देयर, दिस इज़ योर चांस. आज हम ऐसे एक फादर के साथ बात करना चाहेंगे जिन्होंने पहले कभी यहाँ पे कॉल नहीं किया है. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी योर रियल विन, वेयर यू जस्ट गिव अस अ कॉल ओवर हियर 0800
13: ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इट कैन वेरी ना.
12: या
13: रुज़बे थोड़ा देख के इजी,
12: एकदम इजी दूंगा मैं आज. 0800-004-866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल. And the idea is not about giving the answer. The idea is about having fun together.
13: Yeah.
12: So, call kijiye yahan pe, fatafat. We have very few minutes left. Tab tak aap yahan pe call laga sakte ho. And Sandy, aaj trend makers mein kya lekar aane wale ho? Tab tak
13: aaj Rakesh Roshan ko hum celebrate karne wale hain. Coming weekend, Rakesh Roshan apna birthday celebrate karne wale hain. And Rakesh Roshan, humne wo dekhi hai na documentary.
12: Aray, bahut badhiya thi wo.
13: Bahut badhiya hai. To वो डॉक्यूमेंट्री तो आपके लिए प्ले नहीं कर सकते, लेकिन राकेश रोशन के गाने आज आप यहाँ पे सुनने वाले हैं.
12: तो राकेश रोशन की जो जो मूवीज हुई है, और मोस्टली सारे हिटी मूवीज रही है,
13: हिटी मूवीज है उनकी, मतलब उन्होंने एक्ट भी काफी किया है. उनकी एक्टिंग करियर की मूवीज के गाने तो नहीं प्ले कर पाएंगे, वो कुछ क्लासिक गाने हैं. बट यस, उन्होंने जो मूवीज बनाई हैं उन मूवीज के गाने हम जरूर प्ले करने वाले हैं आज यहाँ पे. सो आपका कोई फेवरेट गाना है तो लिख के भेजिए 5599 पर. कोई फेवरेट मूवी है राकेश रोशन की वो भी आप लिख के भेजिए.
12: या वेल आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल डिफिकल्टी, हमें यहाँ पे फोन ही नहीं रिसीव हो रहे सैंडी, टेक्निकल एरर आई थिंक. सो नो
13: प्रॉब्लम, ज़ोन्ड आउट है वो भी,
12: ज़ोन्ड आउट है हमारे फोन लाइंस. सो एनीवे इट्स फाइन, आज का आपका चांस गया यहाँ पे फादर्स डे कॉम्पिटिशन का. बट या वील हैव फ्यू मोर चांसेस टुमोरो जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो चलो अभी हम सुनते हैं बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
11: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
0: गुंडी घर जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम.
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: अरिजीत सिंह की आवाज, अमाल मलिक का म्यूजिक्स, आवारापन 2 का ये टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: नाउ आते हैं आज के पॉडकास्ट पे
0: जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए। तो आज का जो पॉडकास्ट, जो ये पॉडकास्ट है, दिस इज अबाउट, हमने बात की है अभी के साथ जो एक कंटेंट क्रिएटर है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, हैमिल्टन बेस्ड बट न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी, ये न्यूजीलैंड बेस्ड काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी वीडियोस बनाते हैं। टिकटॉक पे ये बहुत पॉपुलर है, इनको, इनके टिकटॉक पे फनी वीडियोस बहुत वायरल हो गए थे
1: या इनकी वाइफ के साथ, एंड फिर वहाँ से उनको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे कम्युनिटी को कितनी ज़रूरत है, तो ही स्टार्टेड गाइडिंग एवरीवन यहाँ पे कम्युनिटी को।
0: आफ्टर ही बिकेम फादर देन ही रियलाइज कि यार यू नो माय कंटेंट कैन एक्चुअली हेल्प सम पीपल, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट दैट एक्चुअली हेल्प्स पीपल। तो बहुत ही बढ़िया इनसे बातें हुई हमारी, वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप

0: लिया था मैं उस टाइम रोटोरुआ में रहता था, तो मैंने सोचा यार ये फ़ोन से वीडियो नहीं, हम कैमरे से बनाएंगे। तो मैंने निकॉन का Z30 एक मॉडल था वो मैंने लिया। तो मैं एक दिन घर से काम कर रहा था रोटोरुआ में, तो मैंने सोचा यार इसको ना यूज़ करके देखते हैं कि आवाज़ कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो मेरे पास कॉन्टेंट कोई था नहीं, वो मेरी पहली वीडियो थी टिकटॉक पर। तो मैंने ऑन किया, तो मेरी वाइफ जो है फिजी से, तो मैंने कहा चलो यार मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं कहीं इन्हीं के लिए बना इन्हीं की बातें बता देता हूँ। तो फीजी की लैंग्वेज जो होती है, जब मैं उनसे मिला था, मेरे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल में हम दोनों मिले थे, तो उनकी जो बातें, उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, मुझे इतनी हंसी आती थी उस पर। जैसे कपड़ा झुरवा दो, कपड़ा सुखा दो बोलते हैं, सुखा दो, झुरवा दो,
1: जुलूम है।
0: हाँ, हाँ। मोटर, जैसे हमारे यहाँ पानी की मोटर को मोटर बोलते हैं, गाड़ी को मोटर बोलते हैं।
1: द मोस्ट फनीएस्ट इज
0: पहली वीडियो मैंने बनाई और वो वीडियो 5 मिनट की होगी। तो अब मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे उस टाइम जाती नहीं थी 5 मिनट की वीडियो, बहुत लंबी वीडियो नहीं डाल सकते थे आप, शायद 90 सेकंड की डाल सकते
1: थे
0: आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने वो कहा टिकटॉक पे डाल देता, मैं टिकटॉक पे डाल दी और मैं डाल के भूल गया। उस टाइम मेरे टिकटॉक पे शायद 50 फॉलोअर्स होंगे।
2: ओके,
0: वो मैंने डाली और मैं अगले दिन चेक कर रहा हूँ, वो वीडियो वो शायद 50 के पार कर गई, उसके अगले दिन 100 के पार कर गई, उसके बाद 200 के पार गई। वो मेरी पहली वीडियो थी। उस पे मैं कमेंट जाके देख रहा हूँ, भाई साहब वीजी वालों ने जो गालियां दे रहे हैं मुझे, उनको लग रहा है कि
2: मुझे लगा खुश हुए।
0: नहीं, आधे लोग खुश हुए, 50% खुश हुए, 50% गुस्सा हो गए, क्योंकि थोड़ा सा उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। उनको लगा कि यार ये इंडियन है, ठीक है। अब उस टाइम तक मैंने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, ना उनको पता था कि मेरी वाइफ जो है वो फीजी है।
2: तो उनको कुछ लोगों को इंसल्टिंग फील हुआ ऐसा?
0: हाँ, उनको लगा ये इंडियन है, ये हमारी लैंग्वेज के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, जबकि मैंने उसमें बोला है कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोलती है, पर उनको लगा कि नहीं, व्यूज लेने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने कंटेंट एक और बनाया फिजी की लैंग्वेज में, पहले मैं कंटेंट बनाता था, वो रेडियो अपना पे आ गया था शायद, तो अच्छा, वहाँ से फिर फेसबुक पे उन्होंने डाला, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो लोग जानना थोड़ा शुरू हुए।
1: तो ये था इनका स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन हमने ड्यूरिंग द एपिसोड वी हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स
2: अबाउट माइग्रेंट्स आल्सो, एंड ही शेयर्ड हिज फॉन्डनेस फॉर फिजी इंडियन कम्युनिटी भी इसमें जाके आगे जाके, कि कैसे सबसे ज्यादा बाद में वो उन्हीं के साथ कैसे कनेक्ट हो गए, यू नो हाउ इट स्टार्टेड। सो दैट्स व्हाई दिस बिट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट स्टार्टेड एंड कैसे वो बाद में आगे गया।
1: एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी
2: प्यार कैसे कमाया उन्होंने,
1: जो हम भी काफी उसमें रिलेट कर रहे हैं। सो या आई थिंक द कंटेंट दैट इज इन द पॉडकास्ट, अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनोगे तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑफेंसिव फॉर एनीवन। अगर आपको बिट ये ऑफेंसिव लगा है तो दिस इज जस्ट अ प्रीटेक्स्ट जो सेट हो रहा है। बट एनी वे, इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट द फुल एपिसोड, ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड वील सेंड यू द लिंक फॉर द एपिसोड।
2: तो फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा
1: जी, और आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। एंड अभी को आप ने तो देखा ही होगा, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और हर जगह छाए हुए हैं, उनको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो अलॉन्ग विद अस एज वेल।
3: थोड़ा सा हॉल बना दे।
4: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: सिंपली गए मुलाकात हो गई आपसे। हम थ्रोबैक
1: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-4624 फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: पावर ड्राइव एट 5 जारी है आपके लिए ओनली ऑन 104.2 एफएम एंड रोवा ऐप।
3: या और आज ट्रेंड मेकर्स में आप के सुनने वाले, के से मूवीज के गाने सुनने वाले हैं।
2: ओ, क्योंकि राकेश रोशन की मूवीज सारी के से शुरू हुई
3: है। के से है मोस्ट ऑफ द मूवीज
2: एक्चुअली। यू आर राइट एक्चुअली। कोयला, कोई मिल गया, कुछ नहीं क्या, क्रिश।
3: एक्चुअली मैं एज अ डायरेक्टर उनकी सारी मूवीज एक्सेप्ट वन,
2: काइट्स भी उनकी है ना,
3: काइट्स भी उनकी, एक्सेप्ट वन मूवी जिसके जहां पे उनको लगा कि नाम चेंज कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद की सारी मूवीज उनकी नहीं।
2: कौन सी मूवी है? एस है,
3: एस है वो,
2: एस है ना।
3: हाँ। या तो आपको बताएंगे ये भी ट्रेंड मेकर्स में, सो व्हाई मोस्ट ऑफ द मूवीज ही डायरेक्टेड स्टार्ट्स फ्रॉम के,
2: राइट। इनके बारे में आज बहुत सारी बातें होने वाली है। तो आज ट्रेंड मेकर्स में राकेश रोशन हिट्स ओनली फॉर यू ऑन हम।

0: Chris Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Refreshingly juicy, yummy lemonade apples.
3: Cloudy and breezy tonight, down to a low of 11 for Auckland. Traffic out of the city is starting to improve slowly. To Silverdale, it's just over 40 minutes and about half an hour to Constellation Drive via the Northern, slowing after the Harbour Bridge into Northcote, but clearing after Waido Road. To Massey, it's around 23 minutes through the Northwestern. To Monaco, 35 minutes and 50 minutes to Drury along the Southern.
2: Hello Yellow, yummy lemonade apples. The yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
4: Boat plus ute equals butte. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
5: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favourite Mazda. Mazda.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. The Finance Minister doesn't expect today's OCR hike will have an immediate impact on homeowners. It's risen to 2.75%. Nicola Willis says the increase was widely expected.
10: Since this move was fully priced in, there should be little or no change to fixed-term mortgage rates.
9: A criminal investigation by police into complaints against top cop Richard Chambers has been completed. RNZ understands the commissioner has been cleared of wrongdoing. In a statement, police say the IPCA watchdog will publicly release its findings in due course, so they can't comment further for now. Police searching for a person of interest in Tauranga have closed Maungatapu Road. Some staff are armed as a precaution, but there's not believed to be any risk to the public. Traffic is being diverted on Rosebank Road in Auckland's Avondale after a crash involving a car and cyclist. It is believed there are serious injuries. Fire and Emergency is urging people to prepare now for El Niño's arrival this summer. The weather pattern is likely to increase the risk of fires. Wildfires manager Tim Mitchell says keeping on top of grass growth while it's green and lush is key.
11: As later on in the season, as that dries out, that can become a ignition source for fires. It also helps spread fires.
9: To sport. In New York, it's 2 in the morning and it's a thrilling end to a rain-hit day at the US Tennis Open. It's deep in the deciding fifth set between men's top seed Alexander Zverev and Italian Lorenzo Sonego. Zverev is up a break. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, Warriors coach Andrew Webster has been talking up the chances of getting back injured front rower Jackson Ford and wing Dallin Watene-Zelezniak for the first round of NRL playoffs next weekend.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: Kamba Vaikilele Vaikile Lambasa ke swargiya Lalu Mahajan ki putri, Mangri ke swargiya Abhay Chand ki patni, Auckland ke Atish Rohit Swaran aur Brisbane, Australia ke Shobhna ki maa, मैंगरी के अमित कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एशग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं. लंबासा के स्वर्गीय लालू महाजन की पुत्री, मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी, ऑकलैंड के आतिश रोहित स्वरण और ब्रिस्बेन के शोभना की माँ, मैंगरी के अमृत कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है, रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड के भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे वाइकुमेटे शमशान भूमि में किया जाएगा। रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड के भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे यानी कल दोपहर 1 बजे वाइकुमेटे शमशान भूमि में किया जाएगा। सूचित किया जाता है, नीरज और ताशा की मां 8 माइल्स नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी के शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 7 लॉलम प्लेस फावोना मैंगरी जा सकते हैं या ताशा को 021-0073-8400 पर कॉल कर सकते हैं। नीरज और ताशा की मां 8 माइल्स नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 7 लॉलम प्लेस फावोना मैंगरी जा सकते हैं या ताशा को 021-0073-8400 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Ladies and gentlemen.

0: Oman Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Let's go! 3, 2, 1!
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है. गुड इवनिंग, वेलकम टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़्बे. अगर अभी भी आपने ज्वाइन इन किया है, हाय सैंडी.
5: हाय रिज़्बे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. यस, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राकेश रोशन को ट्रेंड मेकर्स में, बिकॉज ओवर द वीकेंड आने वाला है राकेश रोशन का हैप्पी बर्थडे.
4: तो राकेश रोशन के बारे में हम अगर बातें करें, काफी टफ बिगिनिंग्स रही है इनकी. उनके पिता की सडनली डेथ हो गई थी जब वो यंग थे, एंड वो काम करते थे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर. उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया और फिर उन्होंने डेब्यू किया पहली मूवी में, घर घर की कहानी, इन 1970.
5: या बट यू नो ही अपीयर्ड इन मोर देन 80 फिल्म्स. काफी सपोर्टिंग रोल्स में भी इन्होंने काम किया है.
4: वाओ, क्रेजी.
5: सो इनकी जर्नी अगर देखा जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर, सपोर्टिंग रोल्स, लीड रोल्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी है.
4: या एंड हमने ये डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, लेकिन याद दिला दे कि राकेश रोशन एक्चुअली इज अ नेपो किड. उनके फादर काफी फेमस थे. ही वाज द सन ऑफ लेजेंडरी रोशन लाल नागराथ. वो एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे बॉलीवुड के गोल्डन ईरा के. एंड उनके भाई, फिर उन्होंने सेम पाथ फॉलो किया उनके पिता का, जो था म्यूजिक डायरेक्शन.
5: या सो अपना एज अ डायरेक्टर करियर इन्होंने खुद गर्ल्स मूवी से बेसिकली शुरू किया था 1987 में. बट हमेशा के वर्ड को के से ही मूवीज इन्होंने बनाई. सो के वर्ड इनके साथ एसोसिएट रहा है. सुपरस्टिशियस इज द ओनली रीज़न इसके पीछे, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है. इसको डिस्कस किया गया है डिफरेंटली ओवर द इयर्स.
4: बट मेरे को एक ही एक वो एक टाइम था ना जहाँ पे राकेश रोशन भी होते थे के वाले मूवीज लेकर आते थे. करण जौहर भी के वाले मूवीज लेकर आते थे एक टाइम पे.
5: या
4: कुछ होता है, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ के मूवीज.
5: आई थिंक के वाज अ फैक्टर.
4: एकता कपूर वाज आल्सो द वन हु वाज सिर्फ के वाले सीरियल्स करती थी एक टाइम पे.
5: मेरे को लगता है ये राशि राशि की बात होगी.
4: या आई थिंक सो, कुछ तो था कनेक्शन. मेरे को लग रहा है तीनों के एक ही राशि वाले थे.
5: अभी करण जौहर का बर्थडे होके गया ना, हमने सेलिब्रेट किया था. इट वाज लास्ट मंथ.
4: 25 मई को होता.
5: ओ नहीं, अच्छा काफी टाइम हो गया उसका. तो फिर तो सेम नहीं है, बट दूसरी राशि सेम होगी. एक और राशि होती है ना.
4: मेरे को लग रहा है इन तीनों का एक ही रहेगा, वो ज्योतिष वाला.
5: ओके, हो सकता है.
4: तो तीनों को बोला कि भाई के तुम यूज करो.
5: तुम के यूज करो. पता नहीं के की क्या कहानी है.
4: बंडल प्लान किया उसने, कॉपी पेस्ट किया हर किसी के साथ, लेकिन सबके लिए काम किया यार वो टाइम पे.
5: या सो एनीवे, एक मूवी के जरिए उन्होंने के का जो फास्ट है जरूर तोड़ा था. अगर आपको वो मूवी का नाम पता है तो बता सकते हैं. मैं आपको हिंट देती हूँ.
4: 5599 पे आप ड्राइव कीवर्ड के साथ मैसेज कीजिए.
5: वो मूवी जो है ना, उसमें अमीषा पटेल थी. दैट्स अ हिंट.
4: मुझे पता चल गया ये कौन सी मूवी है.
5: सो 5599 इज अ नंबर जहां पे आपको मैसेज करना है.
4: राकेश रोशन की मूवी थी वो.
5: राकेश रोशन की है वो,
4: जो जिसमें अमीषा पटेल सिर्फ रो रही है
5: मोस्ट ऑफ द मूवीज में. वैसे अनफॉर्चूनेटली वो रो रही है.
4: वो मूवी उसकी आखिरी मूवी थी, मेरे को ऐसा लग रहा है. मतलब एज एन एक्ट्रेस, मेन लीड एक्ट्रेस.
5: या
4: उसके बाद उन्होंने वो ऐसे फिल इन रोल किए. वेल, आप बताइए यहाँ पे कौन सी मूवी की हम बात कर रहे हैं. उसमें आई थिंक
5: जो एक्टर है वो काफी अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको ज्यादा मूवीज नहीं मिली.
4: ओ अच्छा.
5: yeah.
4: ओ, तो मैं गलत बोल रहा हूँ फिर, क्योंकि मैं जिस
5: नहीं, नहीं, नहीं, सही है सही है, सॉरी.
4: हाँ,
5: वो मैं गलत एक्टर के बारे में सोच रही हूँ. इसमें जो एक्टर है वो तो सुपर एक्टर है.
4: हाँ, सुपर हिट एक्टर है ना ये.
5: सुपर हिट, सुपर डुपर हिट एक्टर है.
4: जोड़ी भी बहुत सुपर हिट जोड़ी थी.
5: या
4: लेकिन इस मूवी में
5: ये जोड़ी काम नहीं की. क्या यार,
4: यही मेमोरी है मेरे को इस मूवी की.
5: क्या बात कर रहे हो.
4: और मतलब मुझे गाने वाने सब याद है इस मूवी के, बहुत बढ़िया गाने थे. इसका गाना एक बजाना चाहिए हमने.
5: दे वांटेड टू रिक्रिएट अ मैजिक जो इस जोड़ी ने एक मूवी में किया था.
4: बट नहीं हुआ.
5: बट वो नहीं हो पाया,
4: उल्टा हुआ उसका.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online.
5: Bunnings Warehouse.
6: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
9: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
10: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
9: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September।
11: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
14: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: आप सुन रहे Trend Makers, जहाँ पे आज राकेश रोशन के हिट सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, Only on Hum.
16: और काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, आप मुझे अच्छे लगने लगे, यही मूवी का नाम है।
15: यस, दैट इज द राइट मूवी, एंड काफी लोगों ने वो हिंट भी पकड़ा मुझे लग रहा है ना।
16: yes,
15: क्योंकि रोई है वो मूवी में ना पूरे टाइम।
16: लेकिन इनकी ना एक और मूवी के बारे में सवाल पूछना चाहूंगी रुस्बे, क्योंकि हाँ। मुझे पर्सनली ये मूवी बड़ी अच्छी लगी थी इनकी।
15: अच्छा, बताओ बताओ कौन सी मूवी।
16: सो ये जो मूवी है इसमें बच्चे हैं, बच्चों की कहानी है ये मूवी में, पर्टिकुलर एक बच्ची की कहानी है।
15: Okay.
16: Just like Bajrangi Bhaijaan in 90s, but not exactly same story. But लेकिन एक लड़की की कहानी है, बच्ची की कहानी है, and इसमें हमारे किंग खान है।
15: किंग खान है इसमें।
16: Yeah, superb movie थी, मेरे को इतनी अच्छी movie ये लगी थी ना। So ये movie का नाम क्या है अगर किसी को पता है तो लिख के भेजो, 5599 is a number. एंड इसकी स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग, टू एक्टर्स है इस मूवी में, दो एक्टर्स है, वन इज शाहरुख खान।
15: ओके, वाओ।
16: और एक बच्ची की कहानी है, पूरी मूवी इस बच्ची के ऊपर बेस्ड है।
15: ओह वाओ।
16: यस, एंड लेट्स सी कितने लोगों को इस मूवी का नाम पता है।
15: या लेट्स सी, 5599 पे आप मैसेज कीजिए।
16: टू एक्टर्स है, एक एक्टर है शाहरुख खान, मतलब दो भाई है, भाइयों में से एक भाई है शाहरुख खान। दूसरा भाई मैं
15: आप
16: बोल
15: ऐसे बोल
16: तो।
15: के कंफ्यूज कर रहे हो क्योंकि अभी हमारे मन में दो मूवीज आ गई ना, दो भाई है जिनका रीबर्थ होता है, वो भी राकेश रोशन की मूवी है ना,
16: बच्ची की कहानी थोड़ना है
15: वही तो एग्जैक्टली तो अभी हम हाँ वही तो
16: मतलब दो भाई है उसमें से एक भाई है शाहरुख खान, जो दूसरा भाई है वो खान नहीं है।
15: अच्छा वो खान नहीं है,
16: वो खान नहीं है लेकिन क्या मतलब मस्त एक्टर है वो, रियल लाइफ में भी क्या ही लैंग्वेज में बात करते हैं, मजा ही आ जाता है सुन के।
15: क्या बात है, तो आप इसका आंसर भेजिए लेकिन तब तक आपको मैं बता दूं कि राकेश रोशन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी पायनियर ऑफ इंडियन साईफाई एंड सुपर हीरोज, बिकॉज उन्होंने मूवी एक बनाई सबसे पहली जो थी उनकी कोई मिल गया, एंड देन उसके बाद वो पूरी फ्रेंचाइज बन गई क्रिश फ्रेंचाइज, सुपर हीरो फ्रेंचाइज। एंड आई होप कि यहाँ इंडिया में भी ना ऐसे सुपर हीरोज और भी सुपर हीरोज के यू नो वो बने, क्या बोलते हैं वो यूनिवर्स बने, एक सुपर हीरो यूनिवर्स,
16: इट विल बी वेरी कूल। वैसे ये आपने डॉक्यूमेंट्री में तो जरूर देखा होगा रोशन्स में कि कहो ना प्यार है रिलीज होने से पहले इनको इनकी लेफ्ट आर्म में बुलेट लगी थी, इनको शॉट किया गया था,
15: रिलीज होने के बाद हुआ था वो सैंडी,
16: इट वाज आफ्टर
15: या मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर हिज सन्स डेब्यू
16: शॉर्टली आफ्टर द रिलीज,
15: क्योंकि बॉक्स ऑफिस में बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ दिए,
16: अरे ओवरनाइट सुपरस्टार हुए थे ऋतिक रोशन,
15: तो उसके बाद उन्हें वो आया था कॉल आया था कि भाई पैसे दे, तो उसने नहीं मना किया था तो गोली वोली पड़ी
16: थी, अटैक हुआ था उसके बाद।
15: कहोना प्यारे का भी गाना सुना आपने अभी, काफी बढ़िया गाना है कहोना प्यारे का भी, मूवी भी बहुत कमाल थी, एंड आज भी मुझे लग रहा है कहोना प्यारे का गाना सुनने के बाद वो स्टेप हो ही जाता है कहोना।
16: तुम्हें पता है इस मूवी के लिए पहले शाहरुख खान को कंसिडर किया गया था,
15: ओह वाओ राइट,
16: बिफोर कंसिडरिंग द लॉन्च ऑफ ऋतिक रोशन, शाहरुख खान वॉज कंसिडर्ड फॉर दिस रोल।
15: सी आई थिंक दैट टाइम शाहरुख खान के साथ भी हिट ही हुई रहती मूवी,
16: हाँ हाँ हिट ही हुई रहती, लेकिन ऋतिक रोशन को स्टार बनना था,
15: हाँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द मूवी हैड अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, कंटेंट बहुत बढ़िया था मूवी का, एंड दैट्स वेयर द एक्टर्स ऑल्सो गॉट अ चांस टू शाइन। बट एनी वे कोई मिल गया, इसके बारे में हमने थोड़ी बात की आपके साथ, इट वॉज हाउ एलियंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया and then from there superheroes
16: जादू को पसंद किया,
15: बहुत पसंद किया, तो उसी का ये गाना आपके लिए।

0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
2: Cloudy and breezy, down to a low of 11 for Auckland. Traffic out of the city is mostly clear now. 20 minutes to Constellation Drive and 30 minutes to Silverdale via the Northern. Some busy patches past Northcote to Akoranga Drive. 20 minutes to Massey via the Northwestern and to Manukau, just over 20 minutes. And to Drury, 35 minutes via the Southern. A few busy patches past Sylvia Park.
1: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
3: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
1: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
5: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
1: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
5: Yeh hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
1: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
7: Get the Skinny!
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like... And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
8: Imagine winning $25 million this Wednesday. Play in store or online.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
11: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. Trendmakers mein aap aaj sun rahe hain Rakesh Roshan movie ke gaane. Unhone actor banke bhi bahut kaam kiya, lekin hum uske directorials ke gaane play kar rahe hain yahan pe.
12: Aur jis movie ke bare mein main baat kar rahi thi ki bachchi ke upar based thi movie, King Khan thi usme. It was King Kong. जैकी श्रॉफ एंड शाहरुख खान ने काफी साथ में काम किया है. सो या दैट वाज द मूवी. एंड क्या मतलब मस्त मूवी है ना वो, कि वो बच्ची जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं करते, मतलब अपने घर पे रखते हैं थोड़ी देर जैकी श्रॉफ. एंड देन जैकी श्रॉफ का भाई होता है शाहरुख खान, जो उसको बुलाता नहीं है, दूर रहता है. तो हाउ वो सबको सबके साथ कनेक्ट करती है,
11: ये मेरे को एक्चुअली याद नहीं है मूवी. मैंने
12: मेरे को बहुत अच्छी लगी थी मूवी. सो इट्स अ रियली नाइस मूवी गाइस. और जैकी श्रॉफ जो कि खड़ूस बंदा होता है, कैसे उसको वो पोलाइट बना देती है लड़की. इट्स वेरी नाइस मूवी आई विल से, जो कि राकेश रोशन ने बनाई है. तुम्हें पता है, तुमने, मैंने एक सीन देखा है कहो ना प्यार है का, कि जो अमीषा पटेल बीच का कोई सीन है, बीच पे है वो, एंड उस सीन को अगर फोकस करो तो वो करीना कपूर आ रही है वहां से.
11: ओह, ज़ूम इन करो तो.
12: ज़ूम इन करो और नेक्स्ट शॉट में इट्स अमीषा पटेल. बिकॉज इस सीन में पहले, इस मूवी में पहले करीना कपूर थी,
11: बट वो फिर निकल गई थी उसमें से ना.
12: निकल गई थी, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, बट एक आधा सीन रह गया करीना कपूर के साथ. तो वो मूवी जब आप देखते हो ना, तो उसमें करीना कपूर आपको दिखाई देती है.
11: वो दिखाई भी देती है उसमें.
12: दिखाई देती है, लेकिन दूर का शॉट है, तो ऐसा लगता है कि अमीषा, मतलब जिसको नहीं पता है, they will not notice it.
11: Wow, that's crazy यार. But imagine करो ना, क्या ये देखने के बाद करीना ने फिर कॉल किया और बोला, भाई मेरा पैसा दो यार, मेरे को तुमने यूज किया है.
12: Still in the movie.
11: And मेरे को क्रेडिट दो मूवी में.
12: Yeah.
11: Guest appearance करीना कपूर. बढ़िया.
12: Anyway.
11: Anyway, राकेश रोशन के बारे में बात कर रहे थे. उनको 2018 में एक्चुअली कैंसर डायग्नोस हो गया था, अर्ली स्टेज थ्रोट कैंसर. लेकिन उनके काफ़ी डिसिप्लिन नेचर के कारण और उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट फिटनेस रेजिमेंट भी फॉलो किया, तो ऑन द एक्चुअली वेरी मॉर्निंग ऑफ हिज सर्जरी ऑल्सो वो जिम गए थे वर्कआउट करने के लिए, एंड उन्होंने ओवरकम किया ये चैलेंज को. सो उनकी सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन के कारण उनको फुल रिकवरी हुई उसके बाद. सो एंड आफ्टर दैट हमने देखा भी है कि वो ऋतिक रोशन के साथ एक्चुअली में जिम में जाते हैं और काफ़ी उनके फिटनेस पे उन्होंने ध्यान दिया. उनके भी अभी एक्चुअली में एट एन एज लाइक काफ़ी एल्डरली एज पे उन्होंने मसल बिल्ड किया.
12: एंड यू नो मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अपने बेटे की इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करने की जगह उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे वे से रिप्रेजेंट किया. लाइक ऋतिक ऑलवेज हैड ही यूज्ड टू स्टैमर जब वो एज अ चाइल्ड, बट उन्होंने यू नो एक डिमांडिंग डेब्यू जब उनका मल्टीपल करेक्टर्स के साथ भी क्या कहो ना प्यार है, रोहित एंड राज दो करेक्टर्स किए, एंड बीच में बहुत सारी मूवीज़ के ज़रिए उन्होंने बताने की कोशिश भी की स्टैमरिंग इज़ ओके, उसके ऊपर काम हो सकता है, रियल लाइफ में भी उसके ऊपर काम किया. सो दैट वॉज वेरी नाइस वे कि कैसे इनसिक्योरिटीज़ को आप
11: स्ट्रेंथ
12: बना सकते हो, तो वो उन्होंने एक्चुअली में किया.
11: Well, that was all about Rakesh Roshan today और उनके सारे गाने. I hope आपने भी enjoy किए हैं. जाते जाते आपके लिए कुछ और गाने छोड़े जा रहे हैं राकेश रोशन के मूवी के. And have a wonderful rest of your evening. We'll see you soon.
12: Bye.

0: 80s के रेट्रो गाने।
1: प्यार कभी कम नहीं करेना ऐ जिंदगी।
0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल,

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
2: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
1: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
5: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
6: Yes, but I want to subdivide too.
5: Zelo? Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
6: Really?
5: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
6: Zelo. I like the sound of that.
5: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
12: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
13: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Top cop Richard Chambers has reportedly been cleared of criminal wrongdoing over complaints against him. In a statement, police confirmed their investigation has been completed. Reserve Bank Governor Dr. Anna Bremen says the election will have no bearing on its next official cash rate decision, which is due to be made just over a week before Election Day. The bank today hiked the OCR by 25 basis points to 2.75%. Queenstown Lakes District Council says the Edith Cavell Bridge will be closed overnight after a couple of earthquakes rattled the Lower South Island. An inspection is required. That will happen at first light. In sport, a thrilling and late end to the day at the US Tennis Open. Men's top seed Alexander Zverev needed 4 hours and 53 minutes to see off Italian Lorenzo Sonego in 5 sets. By the time it was all over, it was just on 2 in the morning. Although, does that count as late in the Big Apple? A rugby league with Machinery House in a league of their own. And front rower Tanner Stowers-Smith has secured his future with the Warriors until the end of the 2030 NRL season.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
16: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द शो. मैं क्रिश एक और नाइट लेकर आ गया हूँ, नाइट कैफे लेकर, और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. स्वागत है आपका. यू शो होस्ट क्रिश का साथ रहेगा टिल मिडनाइट, और एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे. जानकारी भी बहुत लेकर आए हैं, कैसे आप फ़ायदे में रह पाएंगे, इवेंट्स क्या कुछ होने को है, क्या कुछ प्रमोशन जारी है जिसके तहत आप फैबुलस इनाम जीत पाएंगे, ये सभी कुछ आज हमारे साथ है. लेकिन आज जबकि वेंसडे है तो फिर आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं वेंसडे नाइट मिडवीक मसाला.
13: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये Masala.
16: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai aaj aapka saath. मैं दूंगा मिडवीक मसाला में, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग खबरें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. हनुमान अंश बिकम्स अ सरप्राइज बॉक्स ऑफिस सक्सेस. मिर्जापुर को सीबीसी एफ की क्लियरेंस मिल चुकी है. दिल चाहता है रियूनियन 25 ईयर्स के बाद. और सलमान खान मोन्स फिल्म मेकर कुकू कोहली, साथ में अरशद वारसी ने नेपोटिज्म के बारे में बात किया है. और समय रायना फेसेस क्रिटिसिज्म ओवर अर्चना पूरन सिंह जोक्स. मालिनी शर्मा फ्रॉम राज फेम टू अ प्राइवेट लाइफ, इस पर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए है. स्वागत है आपका मिडवीक मसाला में. मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. वेलकम एवरीवन.

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके favorite songs हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अभी जारी है आपके लिए Night Cafe Midweek Masala, जिसमें Bollywood मसालेदार खबरें आप तक हम लेकर आते हैं. Mirzapur, the movie is a film spin-off of the popular Amazon Prime Video series, और इस movie को काफी clear recognition मिला है, लेकिन clearance भी मिल चुका है from India Central Board of Film Certification, और कहा गया है कि very few modifications इस film को हुए हैं. और कहा गया है कि इस फिल्म ने काफ़ी ऐसे रो और अनफिल्टर्ड स्टाइल के जो कंटेंट है इसको रिटेन किया है. September 4th यानी बहुत ही कुछ ही दिन, इनफैक्ट कुछ ही दिनों में इस फिल्म को हम थिएटर्स में देख पाएंगे. दिल चाहता है रियूनियन आफ्टर 25 इयर्स, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ 8 to 9 आपके लिए चलता रहेगा 9 to 12.

इतनी खूबसूरत शहर है सिडनी, जहाँ पर इतने सारे प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स भी है। मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम कुछ देर में अरशद वारसी टॉक्स अबाउट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड।

0: कैफे ऑन हम।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love and indelible homes.

0: फॉर subdivisions.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है. हम.
4: Wednesday का तड़का. Midweek मसाला on हम.
6: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Midweek Masala जारी है, 9 PM तक ये चलता रहेगा आपके लिए. अरशद वारसी ने फाइनली नेपोटिज्म पर बातें किया है, ये कंटिन्यूइंग डिबेट है बॉलीवुड में. इन्होंने कहा है कि स्टार किड्स कैन रिसीव एन ईजी एंट्री इनटू फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए टैलेंट और एबिलिटी डिपेंड करता है, जो कि काफ़ी एक्टर्स ने कर दिखाया है और जो टिक पाए हैं वही आगे बढ़ते हैं. इन्होंने कहा है कि प्रेशर इन बच्चों पर काफ़ी होता है क्योंकि इनका कंपैरिजन इनके पेरेंट्स से किया जाता है. और इन्होंने कंगना रनौत को क्रेडिट किया विद मेकिंग द नेपोटिज्म डिबेट स्पेशली प्रोमिनेंट इन बॉलीवुड. और आई थिंक ऐसे मुद्दों पर कंगना रनौत ने बात कर ये मुद्दों को छेड़ा है और डिस्कशन शुरू किया है, जो आई थिंक हर कोई अब साहस लेकर इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं. अभी मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.
7: This is the kind of love story. Either you stay out of it, or you go in all the way. But it can't feel. Yeah. Yeah. Yeah. All right.

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला. बस आज के लिए हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको बताऊं. कॉमेडियन समय रायना ने अपना एक और जो टेलीविजन प्रोग्राम है ये शुरू कर दिया है, और उन्होंने अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार पर एक जोक बनाया है. इनके कमेंट्स को शेयर किया गया था इन कनेक्शन विद इंडियाज गॉट लेटेंट, और काफ़ी व्यूअर्स ने कहा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल रहा है, और काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म और ऑनलाइन डिस्कशन भी शुरू हुआ इस बार इसको लेकर. और इससे काफ़ी रिन्यूड डिबेट हुआ है अबाउट द लिमिट्स ऑफ कॉमेडी और रोस्टिंग इन एंटरटेनमेंट जो हुआ है. आज के लिए नाइट कैफे में मिडवीक मसाला में बस इतना ही. सुनते रहो हम.
2: क्या कूल है हम, क्या कूल है हम.

0: cool hand. Never I had
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
6: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
5: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
6: Really?
5: Yep. And they can deliver in as little as 8 weeks.
6: Zelo. I like the sound of that.
5: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
7: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The Reserve Bank expects household spending will gradually strengthen. Today it hiked the OCR by 25 basis points to 2.75%. Westpac and ANZ have raised floating mortgage rates. ANZ has also raised the cost of some business lending. The PSA says a proposal to cut 12% of the workforce at the National Library and Archives NZ is cultural vandalism. Internal Affairs has confirmed it's consulting on a proposed organisational change. Fiordland's been rattled by two shallow earthquakes this evening. The first measured 5.5 and the second was just before 7 o'clock, a 5.6. Queenstown Lakes District Council says the Edith Cavill Bridge will be closed overnight. In sport, encouraging news from Warriors playmaker Luke Metcalf, speaking on NRL 360. He's looking at a return from that hamstring injury by the third week of the NRL finals. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And back to the future for Wallabies playmaker James O'Connor. He's back where it all started, signing a one-year deal with the Western Force.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: 9 Cafe आपके लिए जारी है. Welcome back everyone. You're listening to your number one hum playing Bollywood's biggest hits. आपके favorite songs इस घंटे पर भी हम लेकर आए हैं. आज 2 September है, आपका जन्मदिन है. Very happy birthday. Many happy returns of the day. Team हम की ओर से आपको wish करना चाहेंगे. Back to back songs के लिए क्या आप तैयार हैं? तैयार होना भी चाहिए क्योंकि प्यारे प्यारे सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. इस बार मैं आपको लिस्ट नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही सुनते जाना है एक के बाद एक फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. वेलकम बैक, क्रिश का साथ है.

0: Murphy on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Unfiltered Drive sunna na bhule with Cindy and Rusbe. 100 years of resilience, migration or identity topic par baat hogi. How did the Punjabi community help shape the fabric of modern New Zealand over the last century? Ye bahut interesting topic par baat ho rahi is episode mein. Harjot Singh presenter researcher hai aur saath mein Gagan Sandhu director hai. The creator is behind the groundbreaking documentary Punjab to Aotearoa. ये इन दोनों के साथ में बातें होगी और ये दोनों से बातें होगी अबाउट अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ करेज सेक्रीफाइस जो जनरेशंस ऑफ पंजाबीज आए हैं अपने सपनों को लेकर अक्रॉस द ओशंस टू रीबिल्ड देयर लाइव्स इन न्यूजीलैंड और एपिसोड में डिस्कस होगा 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पायनियर्स हु पेव्ड द वे Research and passion behind bringing these untold personal stories to the screen or embracing your new home's culture while honoring your roots creates a true belonging. Text kare drive 5599 per full audio ya phir search kare unfiltered with Sandy and Rusbe on Rover or Spotify aur ye jo wonderful Unfiltered Drive podcast ka jo link hai aapko mil jayega. Main Krish aapke saath de raha sunte raho hum aapke saath chalta rahega aur we will be playing Bollywood's biggest hits for you.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है. डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा. क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट. हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज किबरी, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज एन ईसिम. इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे. डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. 4 सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे. इमेजिन कीजिए, $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है. सो वी वांट टू नो, इज योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स, या फिर इज ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं. डैड को कहिए कि वो हम सुनते रहे और गेट हिम टू आंसर क्वेश्चंस और वो $500 रिचा हो सकते हैं दिस फादर्स डे. ड्रॉ 4 सितंबर को होगा. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस. अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.
7: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह. कभी धूप कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
8: टाइम चेक. Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The OCR jumped 25 basis points today to 2.75%. Finance Minister Nicola Willis saying it was widely predicted. Westpac and ANZ have raised floating mortgage rates. ANZ has also raised the cost of some business lending. Energy Minister Simeon Brown's blaming Labour's ban on oil and gas exploration for the closure of methanol supplier Methanex in Taranaki. Labour leader Chris Hipkins denies there's any link. A couple of earthquakes this evening have given the Lower South Island a bit of a shake. The first was 5.5. The second, that was just before 7 o'clock, that was a 5.6. In sport, the good news keeps coming for the Warriors. Front rower Tanner Stowers-Smith has secured his future with the Warriors until the end of the 2030 NRL season. And motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty and the Italian Formula One Grand Prix this weekend. New Zealand driver Liam Lawson should know by tomorrow whether he stays with the Red Bull senior team or goes back to the Racing Bulls team.
1: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Night Cafe.
10: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका Night Cafe में और रात 12 तक ये आपके लिए चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं हमारे पास है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 29th August टू 4th September एट द केव 5x57 Cavendish Drive मनुकाउ ऑपोजिट वेयर हाउस फ्रॉम 7:30 PM. इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue मनुकाउ सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं श्री जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो 29th August to 4th September रहेगा at Ramakrishna Mandir 25 Onslow Avenue Manukau from 7:30 PM. साथ ही में न्यूजीलैंड संगम NZ संगम इज प्लीज टू इनवाइट कृष्णा जन्माष्टमी के लिए सारी डिवोटीज को जो 28 August to 4th September रहेगा डेको ऑफ एलिगेंस में 16 लेम्बी ड्राइव मनुकाउ 7:30 PM से ये पूजा शुरू होगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. साथ ही में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन द्वारा सादर आमंत्रण है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो 29th August से शुरू होगा और ख़त्म होगा फ्राइडे 4th September. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम.
11: तुझे तक तक तक

0: कैफे ऑन हम।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा
3: Ubai poo, Fugardi poo, you like me and I like you too. Ubai poo, Fugardi poo, you like me and I like you too. Ubai poo, Fugardi poo, you like me and I like you too. Ubai poo, Fugardi poo, you like me and I like you too.

0: think, hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
1: Book your free insurance review today. Call Assure One on 0800-77-HIRA. That's H-I-R-A. Or visit assureone.co.nz. North and Bill Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
2: Suno, bills badhte ja rahe hain aur mehngai bhi.
3: Haan, mortgage banna bhi mushkil ho raha hai. Soch raha hoon ghar bech ke chhota kar le lein.
2: Ghar bechne se pehle NZPMI ki policy baat kijiye. Mere dost ne bhi ki thi. Apni zameen par naya ghar aur do aur ghar banwaye. Ab rent bhi aa raha hai.
3: Par development ke paise
2: aapko nahi lagane. NZPMI sab sambhal lega. NZPMI, your local development expert. Free site assessment ke liye visit nzpmi.co.nz ya call 0800-4-NZPMI.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Night Cafe.
6: You're humming along with Krish on your number one, humping Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas, a very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे, एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाएं और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 FM पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कॉम्पिटिशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कॉम्पिटिशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रो होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप ज़रूर बनाएं, द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन 29th अगस्त टू 4th सितंबर होगा और जन्माष्टमी महोत्सव 4th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम 12 AM टू 12:30 AM और ऐसे ही कुछ और जानकारी हमारे पास है कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे। मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ।

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. यू लिसनिंग टू नाइट कैफे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और रात 12 तक हमारे साथ रहेगा. दिस इज आवर फाइनल आवर और एक्साइटेडली मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए फाइनल 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर दिस शिफ्ट. और हीर रांझा आप सुनेंगे, एथिया, माई नी माई और माई नेम इज अली, जॉली गुड फेलो और इश्क मस्ताना प्रॉपर पटोला, ये भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 30 मिनट्स के लिए. आप एंजॉय करें इन गानों को. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरी वन.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हेड

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जन्माष्टमी का पर्व भी जारी है, भगवान कृष्ण की जय जयकार सभी जगहों पर हो रही है. तो ऐसे में जन्माष्टमी का महोत्सव माँ दुर्गा टेम्पल में भी मनाया जा रहा है पापाटोए, 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोए, 7 PM to 8:30 PM आपको जाना है. फ्राइडे 4 सितंबर को यहाँ पर होगा जन्माष्टमी का महोत्सव, 8:30 PM to 12 AM सेलिब्रेट किया जाएगा 4 सितंबर को. तो आप भी भाग ले सकते हैं. सभी धर्म प्रेमियों को सादर मंत्रण दिया जा रहा है. कृष्ण के साथ सुनते रहो हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू.

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Kuch samajik suchna hai jo aapke saath hum share karna chahenge. Aitar Rova Sanatan Sangam Sanstha, Shri Janmashtami, Krishna Janmashtami ke liye sabhi dharm premiyo ko sadar amantran de rahe hain. Khatakar hai Pandit Krishneel aur Shekhar Maharaj. Aur 29th August se lekar 4 September tak ye hoga, 7 PM to 9 PM. Aur Woman Care Trust Building aapko pahunch jana hai, 2 Sutton Crescent, Papatwe. Aur sabhi dharm premiyo ko sadar amantran yahan par diya जा रहा है. साथ में श्री हनुमान मंदिर नोट शो में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस 29th अगस्त टू 4th सितंबर होगा और जन्माष्टमी महोत्सव 4th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम 12 AM टू 12:30 AM. और ऐसे ही कुछ और जानकारी हमारे पास है, कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आज का नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल रात 8 पर. हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए. 8 to midnight हमारे साथ होगा. अपना बहुत ख्याल रखें. कल जबकि थर्सडे है तो फिर आपके लिए हम लेकर आएंगे रिदम एंड रोमांस, रोमांटिक गानों का बहुत ही प्यारा ये जो प्रोग्राम रहेगा कल आपके लिए. गुड नाइट एवरीवन.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

అంటే ఆ అంటే అమ్మ.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था.
4: फिर ये घर कैसे?
5: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है.
6: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
3: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
2: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic. Guru.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: Yeah. Hello.
7: Hi.
8: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
7: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
8: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
7: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
8: Great. Sing it to me.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
11: Hum.
13: Night flight on Hum.
14: Oh, main kya? Ki hal hai? Karan aa gaya sab danga. Ek kissa suno. Us din di baat hai. Jab yara da pe gaya panga. Sab karte hain meri tareefan. Tu hi ta jaan de ho. Main kinna shareef haan. Kinna

0: Download from upnafm.com.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines. Plus, $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने. NZPMI

0: पीएमआई सब संभाल लेगा. एनजेड पीएमआई, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZ-PMI.
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
1: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: Playing Bollywood's biggest hits.

0: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
1: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
3: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
8: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
7: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
8: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
7: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
5: अब हमारा क्या होगा
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ
2: ये गलत बोल दिया यार
1: और पहनता भी नहीं है उसको
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो
2: अभी ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उस
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: Night fly.

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, रीच इन एंड चेक हाउ यूर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
3: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
2: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर, मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
4: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है।
2: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September।
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।

अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए यीशु के नाम में।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: MediaWorks Complaints. How can I help?
3: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
2: Nice.
3: And you talked me into creating this funny character.
2: Great.
3: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
2: Are you?
3: Yes.
2: Are you Bobby the Baker?
3: Yes.
2: What's that? What's that thing you do again?
3: Stop it.
2: You bring the mouth.
3: Stop it.
2: I'll bring the pie.
3: Stop it, please.
2: Okay.
3: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
2: So what's the problem?
3: My name's Bruce.
1: Advertise with
0: MediaWorks.
2: New Zealand listens to us.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
5: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. So right now, they're celebrating with a special 75th anniversary sale. Fly to Fiji one way from $275. Samoa, Tonga and Vanuatu from $375. Honolulu from $475. And Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
1: Time check.
6: Good morning, it's Amitik Chebajri here.
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A series of quakes across the lower South Island has forced a heritage bridge to close for inspection in Queenstown. The largest tremors measured 5.6 and 5.5 last night, with dozens of aftershocks felt. Engineers will be checking the Edith Cavell Bridge at first light. A mortgage broker believes New Zealanders are a bit jaded by the official cash rate. It has been up to 2.75%. Guardian Smith CEO Mikey Smith says it's not like the heightened emotions of COVID-era announcements.
8: Everyone was watching, wondering if it was going to be 0.25 or 0.5, and these days I think it's slow moving. It's not going in the direction that people would like, but it's been expected.
7: New life jacket laws are being touted as long overdue. They will need to be worn by everyone on a recreational craft 6 metres or less. Associate Transport Minister James Meagher says preparations are underway for a peak summer rollout.
9: We've got Maritime New Zealand leading a coordinated implementation plan alongside sector partners.
7: Numerous rules are being slapped on thousands of US sailors finally docking after 250 days at sea. The USS Abraham Lincoln will dock near a Thai beach town known for sex tourism and a rowdy nightlife. The sailors have been reminded prostitution is illegal and there are strict no-go zones for personnel. To sport, Tiger Woods has been banned from driving for 5 years. The golf superstar entered a plea agreement to a reckless driving charge following a crash in March. State prosecutor Thomas Bacadale is confident with the punishment.
10: I'm always going to do what I think is the right thing. And at the end of the day, the people will decide whether that's enough for them.
7: And to motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, Liam Lawson will drive for Red Bull again at this weekend's F1 Italian Grand Prix.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
11: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सूचित किया जाता है कि कांबा वंगेले लंबासा के स्वर्गीय लल्लू महाजन की पुत्री यानी मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां मैंगरी के अमृत कुमार या अमृत कुमारी उर्फ मिक्का की मृत्यु मिडल मॉ हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम इन ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, कांबा वंगेले लंबासा के स्वर्गीय लल्लू महाजन की पुत्री यानी मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां मैंगरी के अमृत कुमारी उर्फ मिक्का की मृत्यु मिडल मॉ हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन सेट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि रविचंद के पुत्र यानी ग्लेन इरनोकलिन की भावना के पति, अर्पिता के पिता तथा ग्लेन इरनोकलिन के अनिल चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे वैकुमेति शमशान भूमि में किया जाएगा। याद रहे रवि चंद के पुत्र यानी ग्लेन इडन ऑकलैन के की भावना के पति, अर्पिता के पिता यानी ग्लेन इडन ऑकलैन के अनिल चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे वैकुमेति शमशान भूमि में किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि नीरज और ताशा की मां यानी 8 माइल्स नसीनु फीजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 7 लॉलिम प्लेस फवोना मैंगरी जा सकते हैं या ताशा को 02100738400 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे नीरज और ताशा की मां यानी 8 माइल्स नसीनु फीजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 7 लॉलिम प्लेस फवोना मैंगरी जा सकते हैं या ताशा को 02100738400 पर कॉल कर सकते हैं।
11: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: 12.5 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka hai 18 overnight, kam se kam 12 degrees rahega. Aaj badal chhaye rahenge, kuch halki barish hogi mukhyatah subah aur sham ke samay. Sunrise 6:39 AM par, sunset sham 6:03 par hoga.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast Catch-Up.
6: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 7 मिनट हो रहे से मैं हमारे स्टूडियोज में 6 बजकर और आज है थर्सडे 3rd of September। गुड मॉर्निंग आपको भी।
13: गुड मॉर्निंग, और आप जहां कहीं पर से भी हमारा साथ दे रहे हैं इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
6: आज वैसे आपके साथ जबकि हम जुड़ चुके हैं सुबह सुबह 104.2 FM पर या रोवर ऐप पर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए। इस घंटे कैचअप करेंगे आप सभी के साथ, मेनली खबरों में क्या कुछ हो रहा है ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे ब्रेकफास्ट कैचअप में। और ऑफकोर्स आज का हमारा ग्लोबल हेडलाइंस, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी चर्चा आपके साथ जरूर होगी। और उसके अलावा
13: इनाम जीतने के कई मौके और आपके मन चाहे गानों का ये बहुत ही खूबसूरत सफर जो है उसका हम अब आगाज कर रहे हैं।

0: Sunnyside Up.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Good morning.
3: आज के सनीसाइड अप स्टोरी का वक्त अब हो चुका है, जबकि 14 मिनट हो रहे हैं अब 6 बजकर। और आज की कहानी भारत की एक महिला है, रमाबाई, इनके बारे में है। और इन्होंने कुछ बहुत ही यूनिक किया है और उनकी कहानी जो है ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में। तो रमाबाई रणवीर जो है ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इन्होंने अमृत दौड़ नामक एक 3 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था खोलेश्वर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के 75th एनिवर्सरी के मौके पर। रमाबाई अन्य कॉम्पिटिटर्स की तरह पहुंच गई हिस्सा लेने के लिए, लेकिन एक सिंपल साड़ी और चप्पल जो है ये इन्होंने डाले हुए थे। लेकिन जब रेस शुरू हुआ तो बार बार इनके चप्पल जो है इनके पैर से निकल जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चप्पल को निकाला और अपने हाथों में ले लिया और नंगे पैर दौड़ती रही, क्योंकि ये रेस जो है वाज जस्ट नॉट अबाउट विनिंग। रमाबाई की जिंदगी, निजी जिंदगी अगर देखें तो वो अपनी 2 बेटियों को खुद पाल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और वो इस रेस में हिस्सा लेने इसीलिए आई थी ताकि जो 3,000 रुपीज़ का इनाम है वो जीत सके। वो ये 3,000 रुपये जीत कर अपने बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई के सामान, बुक्स वगैरह खरीदना चाहती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि शी डिड इट, उन्होंने इस रेस को जीता, पहले स्थान पर ख़त्म किया, $3,000 या 3,000 रुपीज़ जो है इनाम जीते और साथ में उनको ट्रॉफी भी मिला। लेकिन इस कहानी की एक खूबसूरत पार्ट जो है और भी है कि उनकी बेटी जो है ये दूसरे स्थान पर आई। माँ पहले स्थान पर आई, बेटी जो है वो भी इस रेस में हिस्सा ले रही थी, शी फिनिश्ड सेकंड। और यू नो, कभी कभी जब ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलता है कि द बिगेस्ट मोटिवेशन जो है ये मेडल या पैसा, वो सारी चीज़ें नहीं होती है। एक माँ के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। ये आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी।
4: Your attention please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Ma, it's
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
0: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट। नो डिपॉजिट फाइनेंस लो, अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Global headlines.
3: सुबह के मुख्य समाचारों में नेपाल के डिवेस्टेटिंग फ्लड में मरने वालों की संख्या 1,200 के पार हो गई है और 4,000 से ज्यादा लोग गायब हैं, जहां इन्फेक्शन रोकने के लिए बॉडीज को टेम्पररी मेस ग्रेव्स में दफनाया जा रहा है। तो वहीं कुछ फैमिलीज एफिजीज यानी पुतलों के जरिए अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। काठमांडू के त्रिभुवन हॉस्पिटल में 161 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज रखी हैं, जिन्हें स्कैन करना मुश्किल हो रहा है, जबकि आइडेंटिफिकेशन के लिए सभी विक्टिम्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस दौरान नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट ग्लेशियर मेल्टिंग को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हुए वेल्थी नेशन से क्लाइमेट कॉम्पेंसेशन की मांग की है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर मॉरल लाइबिलिटी का मुद्दा बनाया है। यूएसए के नए मिलिट्री स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को दरकिनार करते हुए जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है। ईरानी मीडिया के दावों में कहा गया है कि यूएस अटैक्स में एक वेडिंग पार्टी में गिराए शेपनेल समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सेंटकॉम ने सिविलियन टारगेट्स को हिट करने से साफ इनकार किया है। इस रिटेलिएटरी कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बढ़ते तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $94 पे बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। भारत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर का पहला CEO अपॉइंट किया है। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के भूतपूर्व चीफ जितेंद्र मिश्रा अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, पिलग्रिम फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, फाइनेंस और हैवी क्राउड मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सिथिवेनी रंबुका ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन रिपोर्ट को कैबिनेट मीटिंग के बाद पब्लिक किया जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी अवेलेबल रहेगा। रंबुका ने साफ किया है कि सरकार रिपोर्ट से सेलेक्टिव पार्ट्स नहीं चुनेगी, बल्कि पूरी रिपोर्ट पहले पब्लिक और कमेटी के सामने रखेगी और फिर पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगा। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया है कि कंट्री में 6 फरवरी 2027 तक इलेक्शंस होंगे और अगर तब तक नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रेडी नहीं हुआ तो चुनाव एग्जिस्टिंग लॉज के तहत कराए जाएंगे। OFC अंडर 19 सोका चैंपियनशिप के अंतर्गत फिजी ने वनुआतू के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। फिजी की जीत वनुआतू के खिलाफ 7-2 से हुई। जूनियर बुला बॉयज हेड कोच मारिका रोंदू का कहना है कि अब टीम अपने अगले मैच पर ध्यान दे रही है, जो डिफेंडिंग चैंपियंस न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। फिजी और न्यूजीलैंड का मैच शनिवार के दिन में 2 बजे सामोआ में खेला जाएगा। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 23 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में, आज 6:23 3rd of September की ये सुबह आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम लेकर आ रहे हैं। वैसे आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेकर आए हैं, वो है हमारा आज का एक not a review or a recommendation but an update about something new that has come on Prime Amazon, जहाँ पर आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी वीकेंड भी आने वाली है, वीकेंड के दौरान बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना यार कि आज मूवी नाइट रखते हैं लेकिन देखे क्या, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देखने का दिल कर रहा है लेकिन देखे क्या। तो आपके लिए एक सजेशन है एंड दिस इज अबाउट बबीता सिंह रिपोर्टिंग। ये Amazon Prime Videos पर रिलीज हुआ है जस्ट पिछले ही वीक और अभी बहुत अच्छी चल रही है इनफैक्ट ये, जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल करने की कोशिश की व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सो बबीता सिंह रिपोर्टिंग एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो इन्वेस्टिगेट करती है एक मर्डर, लेकिन व्हाइल शी इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट उनको कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स पता चलते हैं अपनी खुद की शादी के बारे में। निमिषा सजयन इनका नाम है और ये बबीता यानी बेबी सिंह का किरदार प्ले कर रही है, जो कि एक अंडर एस्टिमेटेड कॉप है जो पहली बार अपने ससुराल जाती है, बट वहां पर उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड है बंसी, इनकी मृत्यु होती है, जिसके बाद चलकर ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ कॉट बिटवीन सॉल्विंग द मर्डर एंड क्वेश्चनिंग सब कुछ जो उन्हें लगता था कि उन्हें पता है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी शादी के बारे में। नाउ व्हाट मेक्स दिस फिल्म इंटरेस्टिंग इज कि दिस इज नॉट अ टिपिकल कॉप थ्रिलर, ये एक स्लो बर्न मिस्ट्री है जहां पर मैरिज, पैट्रियार्की, सेल्फ वर्थ और एक वुमन की आइडेंटिटी जो होती है, कैसे वो डिस्कवर करती है अपनी खुद की वॉइस, ये उसके बारे में भी है। निमिषा जो कि लीड किरदार प्ले कर रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा, शी डेफिनेटली स्टैंड आउट, एवरीवन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हर कि इन्होंने बहुत बखूबी से ये किरदार जो है बबीता का ये निभाया है। बबीता इज नॉट जस्ट पावरफुल बट शी इज वनरेबल एज वेल, और रादर देन द यूजुअल सुपर कॉप एटीट्यूड जो आपको किसी एक पुलिस ऑफिसर में दिखता है, इसमें आपको उनका एक रियल फील ट्रांसफॉर्मेशन जबकि ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। द डाउन साइड बेसिकली ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी इज कि ये थोड़ा स्लो है, अगर आपको स्लो चीज़ें देखनी पसंद नहीं है तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा खुद को कन्विंस करने के लिए कि कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वॉचिंग, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बिग ट्विस्ट्स एंड बहुत सारा ग्रिपिंग मर्डर मिस्ट्री तो आपको थोड़ा कम ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इसमें। इसमें कहानी ज़्यादातर है, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट एंड ट्विस्ट्स वगैरह नहीं है, बट ओवरऑल बबीता सिंह रिपोर्टिंग इज़ अ थॉटफुल वॉच, स्पेशली इट्स फॉर द वुमेन आउट देयर, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज इट्स अबाउट अ वुमेन हु डिस्कवर्स हरसेल्फ, सिंपली डिस्कवरिंग कि ये मर्डर किसने किया है, लेकिन इन द जर्नी वो खुद को भी कहीं ना कहीं डिस्कवर करती है।
1: दैट्स एन अमेजिंग, मैंने देखी नहीं है अभी तक कि क्या है ये, बट साउंड्स लाइक अ गुड वर्ड जैसे आपने कहा है। दूसरी तरफ वेटरन एक्टर है सुधीर दलवी, इनका नाम आपने सुना है,
0: मुझे लगता है मैंने सुना हुआ है।
1: इन्होंने शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार निभाया था।
0: ओके।
1: और अभी रिसेंटली वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये हॉस्पिटलाइज हुए थे अक्टूबर 2025 में आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय सेप्सिस। तो उनका मेडिकल एक्सपेंस जो है लगातार बढ़ता गया 15 लाख तक पहुंच गया और तब जाकर उनकी फैमिली ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की मांग की है। और उनकी पत्नी जो है सुहास दलवी, उन्होंने ये बात आम की है कि कई सेलिब्रिटीज जो है इन्होंने सामने आकर उनकी सहायता की, जिनमें शामिल हैं अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन, जिन्होंने शुरू में ही दे वे द फर्स्ट पीपल टू हेल्प, दे वे सो मेनी अदर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड आउटसाइड जिन्होंने जाकर उनको सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि माय हस्बैंड, उनके पति जो हैं सबसे अच्छे जाने जाते हैं साईं बाबा का किरदार निभाने के लिए, और इसी वजह से बहुत सारे जो साईं भक्त हैं उन्होंने भी आकर उनकी सहायता जो है ये की है। और उनका जो इन्फेक्शन है ने काफ़ी सीवियरली अफेक्ट किया उनके जॉइंट्स को, उनकी मोबिलिटी को, जिसकी वजह से काफ़ी समय तक वो ICU में रहे हैं। और 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया था श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को टू डोनेट 11 लाख रुपीस टुवर्ड्स हिज ट्रीटमेंट।
0: ओके, सो फाइनली वी कैन से कि द हेल्प ही नीडेड इनको मिल चुकी है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज सर्टेन सेलिब्रिटीज जो होते हैं दे गिव सो मच टू द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट टू द इंडस्ट्री बट टू द पीपल एज वेल, ऑडियंस को भी वो कितना कुछ देते हैं, बट वेन इट कम्स टू अ टाइम जहाँ पर उनको हेल्प की जरूरत होती है दे आर नॉट गिवन दैट हेल्प, बट इन दिस केस चलो इनको एटलीस्ट वो हेल्प मिली.
1: इन्होंने ओवर 30 ईयर्स जो है इंडस्ट्री में यू नो स्पेंड किए हैं, और रामानंद की जो रामायण सीरियल थी उसमें गुरु वशिष्ठ का रोल जो है ये इन्होंने प्ले किया था, और उसके बाद चाणक्य में भी इन्होंने काम किया, जय हनुमान, विष्णु पुराण, बुनियाद, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: फॉरगेट पैकिंग योर बैग्स फॉर नाउ, जस्ट कीप योर इयर्स ओपन फॉर द नेक्स्ट हम बोर्डिंग कॉल. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with two return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
5: Looking for your next Toyota?
6: Some fine spells on another mostly cloudy day, a high of 18 degrees. Coming into the city, Northern Motorway starting to slow down at Silverdale and a slow patch Constellation to Sunnynook. 18 minutes in from Constellation Drive to the city, 32 from Silverdale. Northwestern, 20 minutes in from Massey, slowing out to Aratu and slow Greyland to the city. Southern 24, Manukau to town, slow Papakura to Manurewa and at Papatoetoe.
5: Top prices paid for quality Toyotas. Get a free appraisal at Manukau Toyota today.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।

0: container clear out. Today only. Stores open late. See online for TCs and store hours.
1: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
2: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tum
3: aza. Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: 20 minute baki hai samay 7 bajne mein. Good morning and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. This is The Breakfast Show with Weejay and Pooja. Aapki good morning ke messages hamare paas kahi aaye hain. So, sabse pehle to chaliye wahi dekh lete hain. Before we move on, आज सबसे पहले अगर देखा जाए तो किन का मैसेज जो है ये हमारे पास आया है.
6: वेरी गुड मॉर्निंग, आपको हम कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच मिस्टर मटर मटर. चार बजे से पहले ही इनका मैसेज आया. जय साई राम एवरी वन, हैप्पी थर्सडे, हैव अ ग्रेट डे, आपको भी ये सुबह मुबारक हो. उसके बाद गुड मॉर्निंग भाई विजय और पूजा, सलू गल्फ हार्बर फंग परुओ से, हैव अ ब्लेस्ड डे, आपको भी ये सुबह मुबारक हो. राज आर वी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से, आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं. विनीता जी आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी थर्सडे. और प्रिया हैं, गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू बोथ एंड हम एफएम टीम अ वंडरफुल डे. आपको भी प्रिया ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
5: गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैप्पी थर्सडे, साईज ब्लेसिंग्स. जय साई राम आपने कहा, थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके मैसेज के लिए. और आपको भी आज के इस दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से. चलिए प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हुए आज बातें कर लेते हैं 3rd of September के बारे में.
6: आज 3rd of September देखे तो कई लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनमें शामिल हैं गोविंद नामदेव, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था. और उनके साथ विवेक ओबेरॉय आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और शक्ति कपूर ये भी आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आज के दिन को देखें तो बल्गेरिया में 5th से 3rd September के बीच योगर्ट डे जो है ये मार्क किया जाता है. साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स में ये पूरा वीक जो है चाइल्ड इंजरी प्रिवेंशन वीक के तौर पर मनाया जाता है. हमारे पड़ोस में लेगेसी वीक है 5th of September तक ऑस्ट्रेलिया में.
5: लेगेसी वीक मतलब
6: इट्स अ वीक डेडिकेटेड एंड सेलिब्रेटिंग ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो यू नो एक

0: Yeah. I think I've seen a movie, but I'm not sure.
1: अरे जो भी जवाब आता है कम से कम बोलो तो सही. अरे
0: फिल्म की फिल्म का नाम ही नहीं याद आ रहा.
1: अरे कोई एक फिल्म आता होगा आपके ज़हन में ना. Doesn't matter सही या गलत. Just give me an answer. अगर मैं बोलूँ करीना कपूर खान is a doctor, कौन सी फिल्म आपके ज़हन में आती है सबसे पहले?
0: कोई फिल्म नहीं आती मेरे ज़हन में.
1: That means you're very bad at it. चलो यही कर लेते हैं आज का हमारा सवाल. करीना कपूर खान as a doctor, if I say this, what do you think, which movie am I talking about? Interestingly, इस सवाल का एक से ज्यादा जवाब है. तो अगर आपके पास आंसर्स है जल्दी से हमारे पास सेंड करें. बी एफ स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है.
2: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हमने पूछा और इसके लिए अभी तक अगर देखा जाए सिर्फ एक ही शख्स ने कोशिश की है. सही या गलत थोड़ी देर बाद जरूर देखेंगे. बट इफ आई से करीना कपूर खान एज अ डॉक्टर तो कौन सी फिल्म आपके जहन में सबसे पहले आती है? बी एफ स्पेस यान से ये नेम लिखकर आपको 5599% करना है. हमने ये भी कहा कि एक से ज्यादा जवाब है इस सवाल के.

0: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: तो आज का थ्रोबैक आपके नाम करने से पहले लेट्स हैव अ लुक. हमने जो सवाल पूछा था उसके आंसर्स हमारे पास आए हैं. कई लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे. आज सबसे पहले तन्हा ने हमारे पास अपना मैसेज सेंड किया. उसके बाद रोनल्ड का आंसर आया, साथ में शाइना है. फिजा ने अपना जवाब दिया है. भजन आपका भी मैसेज मिल चुका है. अश्विता कुमार है, राम है, शिवा है, गल्फ हाबस है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सनी है, सईद है और एक और एक मैसेज आया है सनी की ओर से. प्लस शंकर है, कृष्णा है, नितिका ने भी अपना आंसर भेजा है. फिर नितिका ने तो काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट जो है भेजी है अलग अलग आंसर्स की. और सलू गल्फ ऑफ अंगपुरो से इनका मैसेज आया है. साथ में बॉबी मान जी ने भी अपना मैसेज भेजा है. अब आपको लगता है देखकर कि कुछ तो आपको याद आया हो.
4: द इंटरेस्टिंग थिंग इज अभी तक मुझे मौका ही नहीं लगा देखने का. अच्छा. तो देख लेता हूँ जल्दी से ना. हाँ, इनमें से एक फिल्म जो है वो मेरे जहन में आ रही, वही फिल्म मैं सोच रहा था.
3: ओके, कौन सी फिल्म?
4: मैं अभी नाम बोल दूंगा अगर सही हो गया.
3: इट्स ओके.
4: थ्री इडियट्स.
3: हाँ वही था.
4: हाँ,
3: क्योंकि हम जवाब बताने ही जा रहे हैं अब.
4: अच्छा,
3: तो इतनी सारी फिल्मों में इन्होंने डॉक्टर का रोल किया है. जैसे कि अगर मैं नितिका ने जो मैसेज भेजा है वो देखो, क्योंकि इसमें इन्होंने डॉक्टर का किरदार प्ले किया था. थ्री इडियट्स में ये थी एज अ डॉक्टर. कमबख्त इश्क, इसमें शी वॉज अ रेसिडेंट डॉक्टर बेसिकली. और उसके अलावा उड़ता पंजाब में शी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ डॉक्टर. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंसर्स जो है ये हमारे पास आए हैं और कई लोगों ने अपने अपने आंसर्स जो ये भेजे हैं. एंड देर वर सो मेनी मूवीज, जैसे कि हमने कहा. अनफॉर्चुनेटली शिवा का जवाब गलत हो गया, क्योंकि तेरे नाम जो फिल्म है उसमें करीना नहीं थी. क्योंकि में थी वो, लेकिन तेरे नाम में नहीं थी. और क्योंकि में ही उन्होंने एक डॉक्टर का किरदार जो है ये निभाया था, साइकेट्रिस्ट आई थिंक. बट नेवर्थलेस एक सवाल के इतने सारे जवाब, और यही तो करना था. हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप सबने अपने आंसर्स भेजे, उसके लिए थैंक यू. सुमित, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू.
4: एंड अगले घंटे आज आपके दिन कैसा, आज का आपका दिन कैसा गुजरेगा ये बताएंगे. आपको याद होगा अ फ्यू डेज बैक एक्ट पार्टी ने अनाउंस किया पर्मानेंट रेसिडेंस पॉलिसी.
3: हाँ जी, कि वो रेसिडेंसी स्क्रैप करना चाहते ना.
4: इस काफी चीजें जो है इसमें उन्होंने कही थी. तो आज जो एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन स्पोक्सपर्सन है डॉक्टर परमजीत परमार, उनसे हम बातें करेंगे एट क्वार्टर पास्ट नाइन.
3: तो तैयार रहेगा इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए और जानने के लिए व्हाट इज द प्रपोजल दैट द एक्ट पार्टी इज पुटिंग अप.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में 11.7 डिग्रीज टेम्परेचर फिलहाल हम फील कर रहे हैं। हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है। आज बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 12 डिग्रीज तक। मौसम के लिए बताया जा रहा है कि आज क्लाउडी पीरियड्स विद लिटिल बिट ऑफ शावर्स मेनली इन द मॉर्निंग, और फिर इवनिंग के लिए भी शावर्स प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। सनसेट 6:03 PM पर होगा।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.

0: 1034.
1: 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। अगर कुछ देर से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में और इस घंटे भी आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं ये हम लेकर आने वाले हैं। बट किकिंग ऑफ थिंग्स दिस आवर, क्राइस्टचर्च का एक कैफे है, इट इज अबाउट टू पुट वन वेरी एक्सपेंसिव कॉफी ऑन द मेन्यू।
2: कितना एक्सपेंसिव? व्हेन यू से वेरी एक्सपेंसिव,
1: वो सेट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट $100 फॉर वन कप।
2: $100 फॉर अ कप ऑफ कॉफी?
1: हाँ, ये मैं सही पढ़ रहा हूँ ना?
2: अरे मुझे क्या पता आप क्या पढ़ रहे हैं।
1: RNZ की एक रिपोर्ट जो है ये आई है, जिसमें कहा गया है कि रूक कैफे है सेंट्रल क्राइस्टचर्च में, उनके हाथ लगा है सम ऑफ द इनक्रेडिबली रेयर गेशा कॉफी बीन्स। ये पैनामा से आता है, आई डोंट नो ये क्या ऐसा क्या स्पेशल है। ये बीन्स बहुत डिमांड में रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको उगाना और बहुत कम क्वांटिटीज में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इस कॉफी के बारे में कहते हैं कि इट हैज अ फ्लेवर प्रोफाइल दैट्स मोर लाइक टी देन योर यूजुअल कॉफी, फ्रूटी, फ्लोरल एंड डेलिकेट। और इसे सेव किया जाएगा एज अ ब्लैक फिल्टर कॉफी। और कैफे के पास 200 ग्राम्स ऑफ बीन्स है, जिससे 14-15 कप्स ही बनाए जा सकते हैं।
2: ओह,
1: और एंड दे हैव ऑलरेडी हैड अ फ्यू पीपल प्री परचेस इट। हो रही है दादा,
2: मतलब अभी कॉफी बनने की शुरुआत भी नहीं हुई और ऑलरेडी लोगों ने उसे
1: एडवांस में खरीद दिया है। एडवांस में खरीद लिया भाई।
2: सी द कॉफी लवर्स विल डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट्स अ स्पेशल रेयर कॉफी बीन्स जो ऐसे मिलते नहीं है हर जगह पर, और पैनामा से आते हैं ना, तो इसको जबकि उगाने में भी प्रॉब्लम होती है तो कम मात्रा में उगती है ये। अब इस कॉफी को टेस्ट करने के लिए लोग एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, पर $100 फॉर अ कप ऑफ कॉफी इस something too much, I would say. But apparently, according to this report, बताया गया है कि 21st of September से available रहेगा। अभी तो 3rd of September है, अभी coffee है भी नहीं, available नहीं है, मतलब अभी cafe ये बेच नहीं रहा है और लोग अभी से इसको खरीदने के लिए list में लग चुके, line में लग चुके
1: हैं। सिर्फ 14-15 कप ही बनेंगे, $100 a cup of coffee। भाई मैं तो नहीं पीऊं।
2: अगर आपसे हम पूछे कि वुड यू स्पेंड $100 ऑन वन कप ऑफ कॉफी जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग सो रेयर, जो भी हमने आपको बताया इस कॉफी के बारे में, वुड यू गो फॉर इट?
1: आई विल गो फॉर इट इफ समवन एल्स इज पेइंग,
2: बट नॉट योर ओन मनी।
1: ना, कभी नहीं भाई।
2: ठीक है, तो अगर जो लोग अभी फिलहाल आप हमें सुन रहे हैं, जैसे कि इफ यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, आपको अगर मौका मिला इस कप ऑफ कॉफी को ट्राई करने का, विच कॉस्ट $100, which will cost $100. अभी ये सिर्फ एक ही जगह पर रूक कैफे में, सेंट्रल क्राइस्टचर्च में ये रहेगा, 21st ऑफ सितंबर से अवेलेबल। और जो कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल होंगे इस कॉफ़ी को तैयार करने के लिए, वो पैनामा से आते हैं और इसे गीशा कॉफ़ी बीन्स कहा जाता है, जिसके बारे में कहा गया कि बहुत यू नो डिफ़िकल्ट होता है इस बीन्स को ग्रो करना एंड प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। ये जो कैफ़े हैं रूक कैफ़े, इनके पास अभी जितने कॉफ़ी बीन्स हैं उनमें सिर्फ 14-15 कप्स ऑफ कॉफीज ही बनेंगे। और अगर आपको मौका दिया जाए टू ट्राई दिस आउट, लाइक इफ यू हैव टू पे $100 टू ट्राई दिस कप ऑफ कॉफी, वुड यू स्पेंड दैट $100? वुड यू ट्राई दिस कॉफी? वुड यू हैव दिस वेरी रे एक्सपीरियंस? यस या नो लिखकर
1: अपने रीजंस के साथ। ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता उसके बारे में।
2: तो यस या नो लिखकर आप अपने रीजंस के साथ हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर, और अगर कॉल करना चाहे तो भी आप हमें बता सकते हैं। पाल का मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है पाल ने लिखा है, नो वे, आई एम गोइंग टू ड्रिंक इररिस्पेक्टिव अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द कैफे कॉफी, सॉरी नॉट कैफे, इररिस्पेक्टिव अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द कॉफी, ये फिर भी नहीं पियेंगे और ये रे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट अबाउट यू? डू लेट अस नो, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे, इफ यू लाइक टू टेक्स्ट नहीं कर पा रहे, इफ यू लाइक टू गिव अस अ कॉल, तो 0800-004-866 पर आप हमारे पास कॉल करते हुए भी हमें बता सकते हैं। बाय द वे, स्टेट्स न्यूजीलैंड ने कहा है कि एवरेज टेकअवे कॉफी प्राइस जो न्यूजीलैंड में होता है इट्स अबाउट $5.20। कहाँ $5.20 और कहाँ $100 अ कप?
1: ना भाई।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 11 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर और हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम लेकर आ रहे हैं. मॉर्निंग मैडनेस मेगा फाइनेंस की ओर से जारी है. बाय द वे थोड़ी देर बाद आज का आपका हॉरोस्कोप जो है ये भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले कुछ और मैसेजेस आए हैं आज के हमारे $100 अ कप ऑफ कॉफी के स्टोरी के बारे में.
3: इसके अलावा नॉट एट ऑल आई वुडंट हैव स्पेंट $100 जस्ट इन वन कॉफी. I rather take my wife and kids for a good dinner.
2: ये किसी ने मैसेज किया है. परम महाराज जी का कहना है कि नो नेवर बिग थैंक्स ओनली फ्री थैंक्स. और जैसी आराम पूजा और विजय जी ये मैसेज इनकी ओर से आया है. सो अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इफ यू मिस्ड आउट ऑन द स्टोरी दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट अ कैफे इन क्राइस्ट चर्च जो एक कप ऑफ कॉफी इंट्रोड्यूस करने वाले विच विल कॉस्ट अराउंड $100 अ कप. क्यों कैसे क्या रीजन है ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं जस्ट विजिट आवर फेसबुक पेज. वहां पर हमने स्टोरी आपके लिए पोस्ट की है. और तैयार रहेगा इस गाने के बाद आज के आपके राशि वाइब्स.
4: She likes to drop it low, man.

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज काम का थोड़ा प्रेशर आप पर बढ़ सकता है और फोकस करके ही आप सक्सेस हासिल करेंगे। बिजनेस में हैं तो नए डील्स के लिए बातचीत आप शुरू कर सकते हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक ही रहेगा। अननेसेसरी शॉपिंग पर ना ही जाए तो बढ़िया होगा।
3: ऋषि ने टोरस, आज आपके लिए बताया गया है कि अपना जो अटेंशन है इसे आप शिफ्ट करें टुवर्ड्स योर पर्सनल प्रायोरिटीज और प्रैक्टिकल डायरेक्शन पर ज्यादा काम आपको करना चाहिए। आज आपके लिए कहा गया है कि बिफोर आप कोई भी नए कमिटमेंट्स लें, इस बात को ध्यान में रखें कि जो आपने पहले कमिट किया है क्या आपने उन चीज़ों को पूरा किया है या नहीं।
2: मिथुन यानी जेमिनी, ऑफिस में आज कुछ नए प्लान्स पर काम करने का मौका आपको मिलेगा जिससे आपका टैलेंट जो है ये खुलकर लोगों के सामने आएगा। आज अपनी निजी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट, नया एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस आप फील करेंगे। मेंटली यू विल बी एट पीस एंड काफी एनर्जेटिक भी आज दिन भर आप रहेंगे।
3: कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया है कि आज आपके लिए बहुत जरूरी कि आप जाने कब आपको मूव ऑन करना है, कब आपको चीजों को लेट गो करनी है ताकि आप नो लॉन्गर उस पर्टिकुलर इमोशनल टर्मोइल से गुजरे जिसकी वजह से आपको इमोशनली चीजों को मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। एक इमोशनल रीसेट की जरूरत है आपको एंड टुडे इज अ वेरी गुड डे टू गेट दैट डन।
2: सिंह यानी लियो, आज ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को प्रेज किया जाएगा जिसकी वजह से कोई प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, अचानक ही कोई फायदा हो सकता है। यू विल बी वेरी वेरी टायर्ड टुडे, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इनफ रेस्ट लें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल डिस्कशंस के थ्रू आप समझें और उन्हें करें। एक स्टडी बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही है जो आपके लिए एक मच नीडेड क्लैरिटी लेकर आएगा। अजम्पशंस के बेसिस पर अगर आप काम करोगे तो इससे ना केवल आप खुद का लेकिन दूसरों का भी नुकसान कराने वाले हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, अच्छा टाइम आज बीतेगा। फाइनेंशियली दिन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा। ट्राई एंड डू सम वॉकिंग टुडे और ऑफिस में भी दिन बढ़िया ही रहेगा, आज टीम के साथ काम में सक्सेस हासिल करेंगे।
3: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग अबंडेंस जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। थॉटफुल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें ताकि आप आपके नौकरी जहां पर आप करते हैं ना, वर्क प्लेस चैलेंजेस जो है इन्हें अच्छी तरह से आप हैंडल कर सके।
2: धनिया सेजिटेरियस, कहीं घूमने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, एनर्जेटिक आप भी फील करेंगे। कुछ अटके प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें कुछ तेजी आज आप नोटिस करेंगे।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि कुछ चीजें जिस किसी भी तरह से खत्म होती हैं वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता और खुद को ये समझाने की, इसे एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके लिए, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। प्रैक्टिकल जजमेंट जो है ये आप जरूर कर सकते हैं ताकि अपने रूटीन को और भी बेहतर आप बना सके rather than getting stuck at places जिसकी वजह से आपके समय की बर्बादी हो रही है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज सपोर्ट से कोई भी काम मुश्किल भी हो तो आसानी से आप निपटा देंगे और आज आपके लिए कहा गया इन्वेस्टमेंट की कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहेगा।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आपको ध्यान देना है, कुछ जरूरी अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते आ रही है, बस आपको उनको पहचानना है, उस पर काम करना है ताकि इससे फायदा आपको हो। बहुत प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए ये अपॉर्चुनिटीज काम में आ सकती है। सो ये थे आज के आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ इट्स 19 मिनट्स आफ्टर 7 फॉर नाउ। कमिंग अप नेक्स्ट, योर सेलिब्रिटी अलार्म,
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
5: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
5: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
5: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
6: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly bogan will offer advice. Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix. Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
0: True Midas.
7: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
8: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favourite Mazda. Mazda.
9: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Celebrity Alarm. Hit it.
2: आज के सेलिब्रिटी अलार्म का टाइम अब हो चुका है. एक और आवाज़ और उसे पहचानने की आपको कोशिश करनी होगी. अभी तक इन द पास्ट वन वीक और टू वीक्स जितनी भी आवाज़ें रही हैं सभी आइडेंटिफाई हुए हैं.
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ पहचानने में लोगों को दिक्कत हो सकती है.
2: आज वाला
3: या आई थिंक ऐसा हो सकता है कि लोगों को डिफिकल्टी हो इन आइडेंटिफाइंग दिस वॉइस.
12: Last 20 months, I've taken a sabbatical. I've been away from social media.
13: Kyun liya tha break? If you can share, if you're comfortable sharing. If not, then we can skip.
12: I'd like to speak.
13: Go for it. Let's go.
12: Therapy, bahut, sab log bahut taboo dekhte. I used to think it was taboo because I thought I'm fine. I don't need it. But saalon saal aap kaam karte aa rahe ho. Aapka behavior change ho jata. Then you realize that you're losing your sanity. And I was a scroller all the time.
3: तो ये जो शख्स जवाब दे रहे हैं वो कौन है आपको बताना है. बिकॉज इसमें दो ऑडियोज आपको सुनाई देंगे. ज्यादा किसने बात की है उस आवाज को आपको पहचाननी है जो जवाब दे रहे हैं.
2: ओके, तो जो इंटरव्यूई हैं उनकी आवाज आप पहचाने कि कौन है. और 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करें BC, उसके बाद अपना जवाब और अपना नाम ये लिख कर भेजे. मुझे तो पता नहीं कि ये कौन है.
3: मुझे लगा था आपको नहीं पता होगा. That's why I even moved the computer screen ताकि आप देख भी ना सको. वैसे देख के भी आप शायद नहीं पहचान पाते unless and until आप इनका नाम कहीं पर पढ़ते.
2: अच्छा.
3: हाँ, क्योंकि आपको इनका चेहरा भी नहीं पता. I'm guaranteed about that. But let's
2: अगर चेहरा नहीं पता तो इतना मैं कह सकता हूँ कि ये एक्टर नहीं है.
3: अच्छा, चलो. बट
2: जो एक्टर होगा वो तो मुझे पता होगा ना.
3: नहीं, आप सभी एक्टर्स को वैसे भी नहीं जानते. लेट्स सी, आप क्या इनकी आवाज पहचान पाते हैं या नहीं. BC स्पेस आंसर या नहीं. अभी तक तो एक भी आंसर नहीं आया. एंड एज आई हैड प्रेडिक्टेड कि ये डिफिकल्ट होगा. बिकॉज नॉर्मली जब हम कोई आवाज सुनाते हैं इट्स सो इजी कि सेकंड टाइम प्ले करने से पहले किसी न किसी का मैसेज कम से कम आ जाता है. एटलीस्ट कोशिश लोग करते हैं. आज कोशिश भी नहीं की गई, मतलब डिफिकल्ट है. एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. क्या ये आवाज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अंटिल समवन फाइंड्स इट और गेसेस इट करेक्ट, या फिर कल हमें वापस एक नई आवाज लानी पड़ेगी. बिकॉज समवन विल गेट दिस वॉइस. कौन है ये?
12: Last 20 months I've taken a sabbatical. I've been away from social media.
13: क्यों लिया था ब्रेक? If you can share, if you're comfortable sharing. If not, then we can skip.
12: I'd like to speak.
13: Go for it. Let's go.
12: Therapy बहुत सब लोग बहुत taboo देखते. I used to think it was taboo because I thought I'm fine. I don't need it. But सालों साल आप काम करते आ रहे हो. आपका behavior change हो जाता. Then you realize that you're losing your sanity. And I was a scroller all the time. just scroll up.
3: तो क्या आपने इनकी आवाज पहचानी? अगर हाँ तो जल्दी से हमारे पास अपना आंसर जो है ये आप मैसेज कीजिएगा बीसी स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर. एक मैसेज अभी तक आया हमारे पास. जो सबसे पहला किसने मैसेज किया है, नाम नहीं लिखा इन्होंने पर कोशिश की है, जवाब इन्होंने दिया है बाबिल खान 8809. नहीं, बाबिल नहीं है ये.
2: ओके, तो लेट्स सी आप में से और कौन है जो कोशिश कर सकता है, या फिर मेरी तरह है आप भी हैव नो आइडिया कि ये आवाज किसकी है.
14: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
16: मैं लाऊं अपना ए गेम.
14: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off. On now.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में पुलिस कमिश्नर रिचर्ड चैम्बर्स को महिलाओं के साथ अलेज्ड कॉन्डक्ट की कंप्लेंट्स पर चली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग से क्लियर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर माइक पेनेट ने बताया कि न्यूजीलैंड पुलिस ने अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और अब इंडिपेंडेंट पुलिस कॉन्डक्ट अथॉरिटी जल्द ही अपनी फाइंडिंग्स पब्लिकली रिलीज करेगा। इस मामले पर चैम्बर्स ने पहले ही सभी आरोपों से साफ इनकार किया था। नेशनल लाइब्रेरी और आर्काइव्स न्यूजीलैंड में 47 फुल टाइम रोल्स को कट करने के प्रपोजल पर पब्लिक सर्विस एसोसिएशन ने कड़ी चिंता जताई है। पीएसआई ने चेतावनी दी है कि इस डिसीजन से सर्विस लेवल्स पर बुरा असर पड़ेगा। रिकॉर्ड कीपिंग की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करना मुश्किल होगा और बैकलॉग बढ़ने से रिसर्चर्स और फैमिलीज को परेशानी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने माना है कि इससे सर्विस लेवल्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, जबकि ऑफिशियल्स का कहना है कि ये फिलहाल एक इंटरनल प्रपोजल है और फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। स्प्रिंगबॉक्स के खिलाफ तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच के लिए ऑल ब्लैक्स टीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जो फोर मैच सीरीज है ये अभी एक एक से बराबर है, लेकिन इस वीकेंड का टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में होने को है और ये सीरीज डिसाइडर हो सकता है, जबकि आखिरी गेम यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाना है। दोनों टीमें जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और डेव रेनी जो कि ऑल ब्लैक्स कोच हैं का कहना है कि वो अपनी ताकतवर टीम को फील्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो प्रॉप एथन डी ग्रूट है, इनको जो चोट लगी थी उससे वो ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे और वो शायद तीसरे टेस्ट मैच में नजर आए। टीम की घोषणा बाद में की जाएगी, जिस पर अपडेट्स हम पर आपको हम देंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: Final call for hump passengers. Your chance to escape to paradise is coming soon. Listen for the next boarding call and you could win two return air tickets to beautiful Vanuatu with Solomon Airlines and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
6: Need a mortgage? Get Buddy.
7: A high of 18, lots of cloud, a little sun today as well. Into the city, Northern Motorway, 23 minutes to the city from Constellation Drive, 46 from Silverdale. Heavy at Silverdale and slow most of the way from Constellation. Northwestern, half an hour Massey to town, heavy at Te Aratu, then slow from Pātiki, heavy point chief to Western Springs. Southern 38 in from Manukau, slow on and off all the way from Papakura. Southwestern, slow northbound through Whitty.
6: For expert mortgage advice without the stress, start with buddymortgages.co.nz.
4: No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate of Henderson आपके लिए सब कुछ आसान बनाता है। जबरदस्त रेंज, एक्सपर्ट एडवाइस, एवरीथिंग यू नीड अंडर वन रूफ, प्लस अर्न एयर पॉइंट्स एवरी टाइम यू शॉप। टीज एंड सीज अप्लाई। Mitre 10 Mega Westgate in Henderson, हेल्पिंग यू गेट इट डन राइट।
8: It's dream season at Bedzaras. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Bedzaras Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: Moisture और ventilation का problem लगता है।
11: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
12: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years. years.
0: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan, plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
13: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
3: The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good brands me.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
2: Many many happy returns of the day. Aaj 3rd of September aur aaj sabse pehle message aaya hai, happy birthday to my son Ayan Shah. Aaj 14 saal ke ho rahe hain aap Ayan. Ye din aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. Bahut sara pyar mila hai. Behan Anaya hai, maa hai aapki Karishma, nana hai, saath mein dadi aur dada aur tamam parivar walon ki or se, aapke sabhi friends ki or se bhi ye special day anikobar aapko mubarak ho. Hum sabhi ki or se bhi is din ki dheron sari shubhkamnaen.

0: फैंस एक्सपीरियंस कॉल 0800-634-234।
1: तो आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही रिजल्ट सामने आया। मतलब इतना डिफिकल्ट है लोगों के लिए गेस करना कि आज कोशिशें भी बहुत कम की गई हैं, और जो दो कोशिश की गई, इनफैक्ट सिर्फ दो, इन दोनों कोशिश के बारे में आपको बता सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर्स गलत है। एक तो 8809 ने कहा था बाबिल खान, दूसरा सुनीता जी का मैसेज है, उन्होंने कहा जय शेट्टी। तो ये दोनों आंसर्स रॉन्ग हैं। एक चीज मैं कर सकती हूँ, एक आखिरी बार आपको आवाज जो ये सुना सकती हूँ, एंड देखते हैं कि क्या ये आखिरी बार आवाज सुनाने के बाद कोई अनुमान लगा पाता है या नहीं। अगर आज कोई नहीं पहचान पाया, आई बी वेरी हैप्पी, क्योंकि कल यही आवाज आपके लिए लेकर आएंगे ना, तो एटलीस्ट फॉर वंस ऐसा होगा कि कुछ तो डिफिकल्टी हुई लोगों को आवाज पहचानने में।
2: लेट्स सी।
3: 20 months I've taken a sabbatical. I've been away from social media.
4: क्यों लिया था ब्रेक? If you can share, if you're comfortable sharing. If not, then we can skip.
3: I'd like to speak.
4: Go for it. Let's go.
3: Therapy बहुत सब लोग बहुत taboo देखते हैं. I used to think it was taboo because I thought I'm fine. I don't need it. But like सालों साल आप काम करते आ रहे हो. आपका behavior change हो जाता है. When you realize कि you're losing your sanity. And I was a scroller all the time.
1: तो हम बातें कर रहे हैं उस आवाज की जो जवाब दे रहे हैं सवाल का, ना कि जो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जो बातें कर रहे थे अबाउट लूजिंग हिज सैनिटी, इतने दिन उसे काम करते करते एंड ऑल, फिर ही हैड टेकन अ सैबेटिकल, इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें की। वी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वॉइस। किसी ने मैसेज किया ही इज अ यूट्यूबर। नहीं, ये यूट्यूबर नहीं है बाय प्रोफेशन। नो, नॉट अ यूट्यूबर। और दूसरी ओर अगर आप बता भी रहे तो प्रोफेशन नहीं, हमने नाम पूछा है।
2: Wow. So, BC, अपना आंसर और अपना नाम। जब तक आप अगला गाना सुनेंगे तब तक का टाइम होगा, बिफोर थ्रोबैक वी विल रैप अप द कंपटीशन।
1: यस, अभी दो और मैसेजेस आए हैं। डेंसी ने कहा है करण जौहर, और गुंजन ने कहा है शर्मन जोशी। ये दोनों आंसर्स भी absolutely wrong. तो आज तो मजा आ रहा है भाई, आज बहुत मजा आ रहा है कि ये गैस नहीं कर पा रहे लोग। बट थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि कैसे हमारे डैड्स या अपग्रेड फादर्स डे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं $300 कैश। इसके लिए तैयार रहिएगा।
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Soulja.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया आप
3: लोग. अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
5: Sit back and save lives.
6: Fine spells on a mostly cloudy day, high of 18. Coming in on the Southern Motorway, 40 minutes Monaco to the city, almost an hour Drury to town. We're slow basically all the way on and off from Papakura. Southwestern, not too bad, slow northbound through up to Puanui. Northwestern, half an hour in from Massey, slow from Te Aratu, heavy there, and point chief to Western Springs. Northern 25 from Constellation, slow from there to the bridge.
5: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
8: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
9: We're fully stocked with incredible 60% off containers.

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: So we are finally wrapping up the competition. Aaj ka hamara celebrity alarm competition, and as I had expected, I was correct ki aaj bahut difficulty hogi logo ko guess karne mein hamari celebrity ki awaaz, and that is what has happened. Kyunki ab jab hum competition wrap up kar rahe hain, abhi tak bhi kisi ka sahi answer nahi aaya hai. Shekhar ne kaha Abhay Deol aur Anshu ne kaha hai Ranbir Alabadia, yani Bia Biceps jo YouTuber hai, aur Vikrant Masi ye 6337 ne hamare paas likhkar bheja. To ye sare के सारे आंसर्स हो गए गलत. इसका मतलब ये है कि किसी ने भी आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म सही गेस नहीं किया. अब यही आवाज कल एक बार फिर और तब तक लेकर आएंगे जब तक कि कोई इसे सही पहचान न ले. मजा आएगा. फिलहाल चलिए, हमने कहा था कि कैसे आप जीत सकते हैं कैश इनाम फादर्स डे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर, और अब बारी है डेड्स आई रिवर्स ग्रिल की. 0800-00-4866 पर आपको कॉल करना है अभी. हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है. विद इन 2 मिनट्स किसी फादर का किसी डैड का कॉल अगर आता है तो इनके साथ ही हम गेम खेलेंगे.
3: आज फाइनल डे है ना?
2: आज फाइनल डे, क्योंकि कल हम नहीं करने वाले हैं कोई भी फादर्स डे कॉम्पिटिशन. कल सिर्फ विनर अनाउंसमेंट होंगे. दैट्स इट.
3: ओके, सो लेट्स सी आज कौन होता है
2: जो हमारे पास कॉल करता है ना. राइट, तो 1 मिनट का टाइम है. अगर आप हमें सुन रहे हैं राइट नाउ एंड यू आर अ डैड एंड यू हैव नॉट टेकन पार्ट इन आवर फादर्स डे कॉम्पिटिशन, तो 0800-00-4866 पर आप राइट नाउ कॉल करें. आपसे हम पूछेंगे कुछ बहुत सिंपल से सवाल. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, मॉडर्न डे स्लैंग से रिलेटेड हो सकता है, पॉप कल्चर से रिलेटेड हो सकता है. जैसे कि अगर मतलब आपसे हम पूछ ले कि डिलुलू का क्या मतलब होता है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ डिलुलू, ये एक मॉडर्न डे स्लैंग है. राइट,
3: पता नहीं
2: आपको? नहीं पता? डिलुलू मतलब डिल्यूजनल, किसी का डिल्यूजनल होना. हाँ, तो वो बोलते हैं डिलुलू को. तो ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे. गुड मॉर्निंग, कैसे आप?
4: गुड मॉर्निंग.
2: आप तो सुनने में फादर नहीं लग रहे.
4: हाँ, मैं तो डेट नहीं हूँ, पर क्या करूँ, डेट के पास टाइम ही नहीं है ना स्कोर करने का.
3: हाँ, अच्छा, डेट को ही टाइम निकालना पड़ेगा,
2: कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली
4: डेट का तो पता ही नहीं है कि मैं कॉल लगा रही हूँ, उनको तो पता नहीं है ना.
2: आप
4: नाइट शिफ्ट करके आया, सो रहा है. ऑन बिहाफ ऑफ माय डॉटर मैं कॉल कर रही हूँ.
2: अब क्या कर रहे सिचुएशन में यार?
4: नहीं, अभी, अभी, लेना पड़ेगा ना, क्या करे. Sometimes we are doing,
2: ये क्या बात हुई?
4: Sometimes we doing a dad and mom's role too, right, together.
3: Yeah, eh? क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम विनीता है. पूजा एंड विजय है, कैसे हो?
2: बढ़िया जी. तो चेंज हो गया इनका. चलो जल्दी
4: और क्या करे. हम पूजा, हम एक्स भवानियंस है. अच्छा,
2: ओके,
4: वी हैव मेट एनीवे, वी हैव मेट सो मेनी टाइम्स हियर.
3: ओह ओके, तो कितने बच्चे हैं आपके? सॉरी विनीता, आपने नाम बताया ना.
4: हाँ जी, हाँ विनीता कुमार. हाँ, दो है.
3: दो है, किस उम्र के हैं?
4: यार बड़े हैं वो तो.
2: चलो अच्छा, आप इनसे सवाल पूछ लो जल्दी से.
3: अरे आपसे आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जो है ये मैं पूछता हूँ. आपको हमें ये बताना है कि अगर घर में वोटर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, यू नो, आपका क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, आपके टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर
2: लीकेज वगैरह, समझ गए. हाँ,
3: समझ गए, समझ गए. तो आप किसको बुलाएंगी?
4: ऑब्वियसली हस्बैंड को कॉल करूंगी.
2: अरे यार, ओह माय गॉड, अफसोस, गलत जवाब.
4: सुनो मेरी बात सुनो. मेरा सिनारियो में लाइक ही इज डेफिनेटली अ प्लम्बर एनीवे.
3: ओके,
4: तो सीधा सीधा उसको बुलाऊंगी ना.
2: तो सीधा सीधा यही बोलो ना, प्लम्बर को, और मेरा हस्बैंड है वही प्रोफेशन का. चलो थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए विनीता. हम नाम आपका ड्रॉ में जरूर शामिल कर रहे हैं.
3: हस्बैंड का नाम क्या है?
4: आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया है आज का. आई जस्ट रीच टू वर्क, यू नो, मैं भी स्टार्ट ही नहीं किया, कार में बैठी हूँ.
2: अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है?
4: महेंद्र कुमार.
2: क्या महेन कुमार
3: ओके
2: तो उनका नाम हम डाल रहे रो में ठीक है उनको जाकर आप थैंक यू मेक श्योर ही सेज थैंक यू टू यू फॉर टेकिंग पार्ट
4: डेफिनेटली ही विल योर अप्रिशिएशन का तो हद बनता है ना
2: चलो थैंक यू अभी थ्रोबैक बज रहा है हमारा
4: ऑलराइट यू गाइस हैव अ गुड डे
2: यू टू बाय

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City Auckland mein aaj ka weather cloudy rahega with little bit of showers in the morning, mainly in the morning and then in the evening as well. Sunset 6:03 PM par hoga. Temperature right now 12.4 degrees hai, high of 18 expected hai aaj. Baad mein chalkar overnight temperature 12 degrees rahega.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज सबसे पहले देखें न्यूजीलैंड में क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है. रॉकेट लैब ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना 94th इलेक्ट्रॉन रॉकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिशन. और ये माहिया पेनिनसुला से लॉन्च हुआ है, डिप्लॉइंग अ रेडर सैटेलाइट. और साथ में और जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं या कर रही थी विद इन द लास्ट 24 आवर्स, पुलिस कमिश्नर रिचर्ड चैम्बर्स वॉज क्लियर्ड ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग्स. और साथ में इंडस्ट्रियल मेथेनॉल मैन्युफैक्चरर मेथेनेक्स ने अनाउंस किया है द इनडेफिनेट क्लोजर ऑफ इट्स तारानाकी प्लांट. मिल्फर्ड साउंड्स में एथक्वेक जो है ये आया है मैग्नीट्यूड 5.5 और 5.6. और रिजर्व बैंक OCR हाइक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी. इंडिया में पर्सनल फाइनेंस एंड वेल्थ डिस्कशन इन द लास्ट 24 आवर्स काफ़ी पॉपुलर रहे हैं. वीमेंस एशिया कप क्रिकेट, इसके अलावा ICFCI लिमिटेड और इनके जो स्टॉक एक्टिविटी है, इन पर बातें हो रही हैं. और फाइनेंशियल सेच वॉल्यूम्स, पोटेंशियल मेटल इंपोर्ट्स ड्यूटी कट, इस पर भी काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया. और नेपाल में आई बाढ़ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने इंडिया में पिछले 24 घंटों में रिसर्च किया. फिजी में बैटल ऑफ द जाइंट सॉकर टूर्नामेंट जो कल से शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भूतपूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिमान प्रसाद की जो अदालती कार्रवाई चल रही है. और $1.5 बिलियन फिजी ऑस्ट्रेलिया यूनियन रिव्यू, न्यूज टूरिज्म सर्विस टैक्स जो असर में आया है, और फिजी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू रिपोर्ट और उससे संबंधित डिमांड्स जो है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया है इन द लास्ट 24 आवर्स.
1: तो ट्रेंड पेट्रोल में ये डिटेल्स आज आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे थे अबाउट व्हाट हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन फॉर सर्टेन कंट्रीज, न्यूजीलैंड इंडिया एंड फिजी के बारे में आज मेनली हमने बातें की. बट फिलहाल के लिए रश आवर, इसकी शुरुआत आप सभी के साथ हम करने जा रहे हैं. आपको याद दिला दें एक बहुत ज़रूरी बात, इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल. Support is available by Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342 par for free and confidential mental health. Yaad rahe, 0800-862-342 par. Aur free and confidential mental health support ke liye aap Asian Family Services se baatein kar sakte hain. Filhal 6 minute ho rahe hain, 8 bajkar Rush Hour aapke liye hum lekar aa rahe hain. To yaad rahe hamara hum boarding call ye bhi abhi tak play nahi hua hai, aur jaise hi ye play ho aapko bas visit karna hai hamara competition page aur wahan par jaakar aapko enter karna hai code which is board now. Jahan par likha hoga enter code now, wahan par aapko jaakar bas board now type karna hai aur submit par click karte hue apna code submit kar dena hai. That's it. To sunte rahiyega kab play hoga aaj ka hamara hum boarding call, aur agar koi bhi details aapko chahiye about the promotion, let us know, we'll help you out.

0: तो आपके लिए लेकर आ रहे थे ये गाना सोनी सोनी, दिस ट्रैक फ्रॉम इश्क विश्क प्यार व्यार. उम्मीद है यू एंजॉयड द सॉन्ग. फिलहाल 13 मिनट हो रहे हैं हमारे स्टूडियोज में, वैसे 8 बजकर रश आवर जारी है आपके लिए. और इधर आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक बस थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे. इनफैक्ट अराउंड 2 मिनट्स एंड देन विल टेल यू द टॉपिक. बट तैयार रहिएगा, टॉपिक जो है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको हमारे पास कॉल करना होगा 0800 004 866 पर अपनी व्यूज जो है आज के टॉपिक के बारे में शेयर करने के लिए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड होप कि आप इसमें जरूर अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है ये देंगे. बट बिफोर यू मूव ऑन, याद रहे डैड्स AI अपग्रेड, हमारा जो फेसबुक पेज कंपटीशन है फादर्स डे के खास मौके पर आपके लिए जारी. इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो अराउंड 22 एंट्रीज जो है ये आई हैं. और दीज 22 एंट्रीज जो है ये अगर कल तक बरकरार रही तो पता चलेगा कि इसमें से कौन है वो जिन्होंने $300 कैश जो है ये जीता है फादर्स डे के मौके पर. पर अगर आप भी एक अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं टू विन अपने डैड का नाम जो में शामिल कराने के लिए, तो एक छोटी सी चीज आपको करनी है.
1: आपको क्या करना है कि आप अपने डैड का एक फोटो जो है उनकी एक फोटो ले और किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर डालें और प्रॉम्प्ट दें कि आप उसे किस तरह का सुपर हीरो बनाना चाहते हैं. वो फोटो आपको बनाकर दे देगा. उस फोटो को आप हमारे फेसबुक पेज पर डाल दें कॉम्पिटिशन पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में और अपने डैड को टैग कर दें. दैट्स इट.
0: और वंस यू डू दैट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रो. पर कीप इन माइंड कि आपका हमारा फेसबुक पेज लाइक करना और कंपटीशन पोस्ट लाइक करना बहुत ज़रूरी है टू बी वैलिड एंट्री जो है अपनी पाने के लिए. तो याद रहे अपने अपने एंट्रीज हमारे साथ रजिस्टर करा ले. टुडे इज़ द फाइनल डे, क्योंकि कल तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स होंगे कि हमारा डैड्स AI अपग्रेड कॉम्पिटिशन इसके तहत किसने जीता है $300 कैश. और साथ में दूसरी ओर हमारा डैड्स रिवर्स ग्रिल ऑन एयर कॉम्पिटिशन, इसमें पार्ट लेकर किसने जीता है $500 कैश.

0: Container clear out. Today only. Stores open late. See online for TCs and store hours.
1: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
3: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
4: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
5: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया बनाना है
4: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th सितंबर
6: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: चलिए बारी है कि आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक ये आपके लिए हमने लिखा है अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ व्हाट्स योर टेक में होता है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा एवरी मॉर्निंग और आज का ये जो टॉपिक है दिस इज समथिंग विच विल बी वेरी रिलेटेबल टू ऑल द इमिग्रेंट्स
12: ओके
11: जो इमिग्रेंट हैं वो इससे काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और इसका अच्छा अच्छा जवाब दे सकते हैं डिपेंड्स आपकी क्रिएटिविटी जो है या फिर आपकी ऑनेस्टी किस हद तक की है इस मामले में तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर कनुप्रिया महेंद्रिता इनका नाम है इन्होंने ये वीडियो बनाया ये है तो इंडियन पर रहती है दुबई में
12: अच्छा
11: और इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग अ वीक लॉन्ग ट्रिप टू इंडिया इन्होंने डिलिब्रेटली कुछ चीज़ें स्टॉकअप की जो इनके हिसाब से इनको इंडिया में सस्ते में मिलती है इन कंपैरिजन टू द प्राइसेस शी गेट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट्स इन दुबई यस तो हर लिस्ट इंक्लूडेड H&M के कपड़े जिनके बारे में इनका कहना है कि कुछ इनको मिले हैं इन इंडिया हाफ द दुबई प्राइस जो इनको मिलता है देसी घी दुबई में जो ऑप्शंस इनको मिलते हैं वो ब्रांड इनको ज़्यादा पसंद नहीं तो इसीलिए ये इंडिया से इन्होंने ये लिया इनफैक्ट वाटर फिल्टर्स के बारे में भी इन्होंने कहा कि शी पेड अराउंड 1/4 ऑफ द दुबई प्राइस थ्रू अमेजोन इंडिया जहाँ से इन्होंने ये मंगाया था और स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स इंडियन स्पाइसेस एंड प्रोटीन पाउडर ये कुछ चीज़ें हैं जो जब ये इंडिया गई थी घूमने के लिए तो ये अपने साथ दुबई वापस लेकर गई
12: okay.
11: जब ये वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर डाला तो ऑफ कोर्स एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की जहाँ पर कुछ लोग इनसे अग्री करते हैं रिलेट करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कुछ दुबई रेसिडेंट्स का कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्किन केयर स्पाइसेस ये सारी कॉम्पिटिटिव प्राइस में दुबई में भी मिल जाती है तो अब जब मैंने इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में सुना तो अपनी सिचुएशन याद आ गई कि जब हम वापस जाते हैं उस देश जहाँ के हम हैं घूमने के लिए या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो वहाँ से क्या क्या भर कर लेकर आते हैं बिकॉज वी फाइंड इट चीपर ओ वी फील कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ही अच्छी मिलती हैं
12: आई गेट वेजिटेबल्स
11: Okay.
12: Lots and lots of vegetables.
11: You get vegetables.
12: Chilies particularly. Mirchi.
11: Mirchi.
12: Jo mirchi mujhe pasand hai, wo yahan regularly milti nahi na. Toh I try and get that.
11: Right.
12: As much as possible. Aur sabzi. Yeah.
11: Right. So what's your take? Let us know. Jab aap us desh wapas jate hain, jis desh ke aap vasi reh chuke hain, jis desh mein aapki paidaish hui hai. Now you're staying in some other country. You've migrated to some other country. When you go back home, तो अपने साथ आप क्या कुछ लेकर आते हैं दैट यू फील इज समथिंग जो आपको वहाँ पर ज़्यादा सस्ते में मिलता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू ब्रिंग इट तो ये आज आपको हमें बताना है और अपने अपने जो टेक्स हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले 0800-004-866 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड इफ़ यू कांट गिव अस अ कॉल तो आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं ऑन 5599 गुड मॉर्निंग परविंदर
13: गुड मॉर्निंग
12: कैसी हैं आप
13: मैं अच्छी हूँ आप लोग कैसे हो
11: एकदम बढ़िया जी सुनाइए क्या क्या लेकर आती हैं आप अपने साथ
13: मैं ज्यादातर तो इंडियन सूट लेकर आती हूँ
11: कपड़े
13: सूट स्पेसिफिकली नॉट एग्जैक्टली कपड़े
11: ओके अरे सूट भी कपड़े ही होते ना
13: जी कपड़े में तो फिर जीन्स पैंट भी आता है ना, पर वो नहीं मैं लेकर आती।
11: हाँ सूट्स लेकर आती आप, ठीक है।
13: सूट क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, मेरी मदर इन लॉ भी जैसे आई है ना, हाँ। इतनी बारी वो जब सीखते हैं वो कहते हैं, जैसे वो पंजाबी हैं तो उनको कपड़ों की बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, तो जब मैं उनको लेके जाती हूँ मार्केट में, इंडियन कपड़ों की मार्केट में, मैं बोलती हूँ जैसे ये अच्छा है, मम्मी कहते हैं रद्दी, वहाँ इंडिया में रद्दी में पड़ा होता है, कोई नहीं लेता। अकॉर्डिंग टू प्राइस वो कहते हैं, जैसे वो कन्वर्ट करते हैं ना इंडियन मनी में, तो वो कहते हैं इतने का, इंडिया में कोई नहीं पूछेगा इतने का, कोई फ्री में भी नहीं लेगा इसको।
11: True.
13: जब मैं जाती हूँ वो मुझे इतनी शॉपिंग कराते हैं सूटों की,
12: तो
13: मैं सूट जरूर लेकर आती हूँ।
12: ओके थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए। 0800 हम 0800 004866 हमारा नंबर है। आप जब अपने घर वापस जाते हैं न्यूजीलैंड से, अपने कंट्री वापस जाते हैं जहां से आप आए थे, कौन कौन सी चीज़ें हैं यू पैक यू बाय एंड ब्रिंग टू न्यूजीलैंड?
11: शनील ने कहा है विक्स और बुड्ढा बाम।
12: हाँ इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को पड़ती
11: यार, विक्स
12: है
11: सच में यहाँ पर महंगा है काफ़ी, और I don't know about any other country, but Fiji when we go back we do grab some, क्योंकि वहाँ पे सस्ती मिलती थी पहले, अभी तो वहाँ पे भी normally थोड़ा ज़्यादा हो गया उसका प्राइस। नोट शो से बरखा ने मैसेज किया है टेमरिन, दरुका, नकाई एंड फिश। नकाई को क्या बोलते हैं? क्लैम्स,
12: क्लैम्स
11: हाँ। राइट, तो ये लेकर आती
12: ये चार या तीन चार चीजें हैं जो है। दुरुका सीजनल है, अब तो ऑफ सीजन भी कहीं ना कहीं आपको
11: मिल जाता है,
12: फ्रोजन भी मिल जाता है। गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, आई ब्रिंग दुरुका एंड नकाई।
11: अच्छा।
12: ये किसी ने कहा है 9267, तो ये चीजें जो है ये लेकर आते हैं। आप कौन सी चीजें लेकर आते हैं? कुछ कॉन्वर्सेशन अगर आप कूल करें तो बातें होंगी तो
11: हाँ,
12: और मजा आएगा ना।
11: और फिर ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ नहीं लेके आता, आई मीन ऑफ कोर्स जब हम जाते हैं
12: आप एयरपोर्ट पर देखो किस तरह से बैग्स,
11: अभी बॉर्डर सिक्योरिटी की जो क्या क्या बोलते हैं वहां पे जब होता है, कितनी लंबी लाइन होती है समथिंग टू डिक्लेयर वाली में, लोग खड़े रहते हैं लंबी लाइन में ना जस्ट टू डिक्लेयर कि वो क्या लेकर आए अपने साथ। गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब?
11: नमस्ते जी, नमस्ते, हम तो बढ़िया हैं, आप कैसी हो?
10: बस ठीक हूँ।
11: आप क्या लेकर आती है अपने साथ?
10: ओ, मुझे तो सी फूड।
11: सी फूड
10: जी, सी फूड, यहाँ पे जो फिश है मुझे तो पसंद है पर फैमिली को ना, तो उनके लिए वो अभी तो जो फिश वो लाते थे वो बैन हो गया अभी, तो अब तो नहीं मिलेगा तो कोई चांस है ही नहीं।
12: हाँ अक्टूबर के बाद
10: मैं सैजन भाजी,
12: सैजन
11: भाजी मोरिंगा लीव्स
10: जी, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है फ्रोजन होता फिर कितना समय के, और उसके साथ में उसका डंडा भी रहता ना।
11: हाँ, तो वो जैसे साफ नहीं रहता है वो, या ट्रू
10: ना ना साफ नहीं रहता, तो घर पे जब मैं जाती हूँ माँ पिता तो नहीं है पर भाई लोग है उसका रेस्टोरेंट है, तो वो अपने स्टाफ को बता देते तो वो क्या करेंगे, एक एक पत्ती उसको छोड़ेंगे लाला कर मुझे देंगे, मैं उसे ब्लांच करके फिर रखती हूँ, रखते जाऊंगी फिर लेकर आती हूँ, और वहाँ का जो मिर्च होता है बहुत तीखा होता है ना,
11: राइट,
10: वो छोटा छोटा मिर्च होता है वो तीखा है
12: जंगली।
11: चलो जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है मैम?
10: जी मेरा नाम रीटा है।
11: रीटा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, हैव अ वंडरफुल डे।
10: या यू टू,
11: बाय। जी सपना, आप क्या लेकर आती है?
14: मैं बोलो, एक्चुअली मेरा कॉल लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था।
11: अच्छा, बोरोलिन
14: और बर्तन, बर्तन
11: बोरोलिन और बर्तन,
12: ये बोरोलिन क्या होता है?
11: क्रीम है,
14: वो क्रीम होता है, एंटीसेप्टिक भी है और ड्राइनेस मॉइस्चराइजर जैसा भी है, तो
11: यहाँ नहीं मिलता, न्यूजीलैंड में नहीं मिलता?
14: नहीं नहीं नहीं मिलता, मैंने अभी तक तो नहीं देखा।
11: अच्छा ओके,
14: तो डेढ़ साल में, और दुबई में थे तो हम सब्जियाँ लेके आते थे बहुत सारी इंडिया से,
11: क्योंकि 3 घंटे का रास्ता था ना,
14: और वो वहाँ बायो सिक्योरिटी वगैरह का दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कितने
11: रूल्स है। ट्रू, थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। बाय। तो आप भी हमारे पास मैसेज अपने सेंड कर सकते हैं 5599 पर। आज का वन सिट एक टॉपिक बहुत सिंपल है। हमने आपको बताया कि एक लड़की है जिन्होंने वीडियो शेयर किया कि वो जब दुबई में रहती है, इंडिया जाती है, तो वो क्या कुछ अपने साथ लेकर जाती, बिकॉज शी थिंक्स कि ये सारी चीज़ें उनको सस्ती पड़ती हैं। तो उसी तरह से हमने आपसे पूछा कि अपने साथ जब आप जाते हैं अपने यू नो होम कंट्री घूमने फिरने के लिए, तो क्या कुछ लेकर आते हैं, व्हाट ऑल डू यू गेट ओवर जो आपको वहाँ पर सस्ती मिलती है या अच्छी मिलती है। एक चीज़ है जिसके बारे में बड़ा कॉन्वर्सेशन चलता था, पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये ला सकते हैं या नहीं, बट आई हैड द करेज टू आस्क वन ऑफ द बायो सिक्योरिटी ऑफिसर्स जिनके साथ बात हुई, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला आप ला सकते हो, किसी भी क्वान्टिटी में ला सकते हो। फिर उस साल से हम काफ़ी ज़्यादा वो लेकर आना शुरू हो गए, इट वॉज बटा जो फिजी में मिलता है, विच इज़ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बटा विच इज़ कॉल्ड रेवा बटा, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर वहाँ से हम लेकर आना शुरू हो गया, लेकिन अब लाने की भी दिक्कत नहीं क्योंकि अब यहाँ पे मिलना शुरू हो गया वो। सो इट्स अ थिंग जो मैंने ओवर द वीकेंड ना काफ़ी फिजी इंडियंस को देखा सेलिब्रेट करते हुए ऑन सोशल मीडिया, हर किसी को भेज रहे हैं कि यार यहाँ पे बटा मिल रहा है, यहाँ पे रेवा बटा मिल रहा है, तो और कितने लोग गए भी खरीदने के लिए। तो आई सॉ दिस क्रेज ऑन सोशल मीडिया लास्ट वीकेंड एज वेल, बिकॉज यहाँ न्यूजीलैंड में अब मिल रहा है ना।
12: ओके, किसी ने मैसेज किया है बैंडेज जो काफ़ी किसी होल के साथ आता है, आई डोंट नो उसका मतलब क्या है,
11: पता नहीं मुझे,
12: किसी तरह का बैंडेज लेकर आते हैं।
11: ओके,
12: और 90985 इन्होंने लिखा है लोज, फिर इन्होंने मैसेज किया कावा,
11: शायद कावा लिखना चाहते थे, गलती से लिख गया हो ना।
12: ओके, हो सकता है,
11: राइट।
12: और क्रीम बंस फ्रॉम हॉट ब्रेड, आप क्रीम बंस
11: लाते हैं? मैं नहीं लेके आई कभी, मुझे नहीं पता अगर अलाउड है या नहीं, आई हैव नेवर गॉट इट।
12: और उसके बाद नीलेश का मैसेज आया है बाउंटी
11: बाउंटी राम,
12: जो लोग फिजी से आते हैं,
11: राइट। और
12: बाल सिंह का मैसेज आया है नंगोना आए जाए बस भाई
11: चलो कई मैसेजेस आपने सेंड किए, आप भी मैं बता सकते हैं। यार मैं सोच रही हूँ इंडिया वाले क्या कुछ नहीं लेके आते इंडिया से, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, अभी तक सिर्फ सपना ने बताया, परविंदर ने बताया,
12: इवन लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं यहाँ से वहाँ से भी चीजें लेकर आते हैं।
11: ये इंडिया वालों को क्या हो गया, और पाकिस्तान के जो लोग है आपने लाते क्या, श्रीलंका से जो लोग है, नेपाल से जो लोग है, आप कुछ नहीं लाते क्या? आई हर्ड समवन फ्रॉम नेपाल जो वहाँ के नूडल्स लेकर आता है क्योंकि उनको वहाँ के नूडल्स बहुत पसंद है, इट्स वेरी पॉपुलर।
12: अच्छा,
11: बट व्हाट अबाउट यू ऑल, क्या आप नहीं कुछ लाते, सिर्फ फिजी वाले ही लेके आते क्या? इस मामले में लगता है फिजी वाले काफी आगे। लेट अस नो 5599 पर हमें बताइए अपने नाम के साथ मैसेज कर।
15: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
17: मैं लाऊं अपना A game.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: तो इंतजार कर रहे थे हम आज गुरु खंडोला जी का जो हमारे साथ एवरी थर्सडे को जुड़ जाते हैं लॉजिक फाइनेंस से एंड फाइनली ही इज ऑन द लाइन विद अस. गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हैं आप?
3: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं?
2: एकदम बढ़िया. तो आज फाइनली आपसे बात हो रही है एंड वी'd लाइक टू आस्क यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट होम बायर्स एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. चलिए आज आपसे हम जानना चाहते हैं अबाउट अगर कोई फर्स्ट होम बायर जिनके पास सिर्फ 5% डिपॉजिट हो, उनके लिए अपना पहला घर लेना क्या अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जो नए अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं इनके हिसाब से, इज इट स्टिल पॉसिबल और नॉट सो पॉसिबल?
3: पूजा जी देखो, जो 5% जो डिपॉजिट है वो बेसिकली गवर्नमेंट वेरी सपोर्टिव है कि बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर जो है उनको अपना घर में जाने का मौका मिले, अपना घर लेने का, घर को अपना बोलने का मौका मिले. तो देयर इज स्टिल वेरी एक्टिव. और आज की अगर आप लास्ट वन ईयर में देखोगे तो फर्स्ट होम बायर मार्केट ही सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें जो घर ये जो है जो परचेज हो रहे हैं, और इनमें जो डिपॉजिट्स 5% एंड 10% एज अ मैक्सिमम डिपॉजिट जो जो अपने हमारे परचेज यूज कर रहे हैं, बायर्स यूज कर रहे हैं,
2: मोस्ट ऑफ
3: द फर्स्ट होम बायर्स.
2: ओके.
3: और वो 5% बेसिकली इट इज स्टिल ऑन आपकी इनकम अगर 150 है से नीचे है या 150 से ऊपर है, डजंट मैटर. लाइक इन स्टिल एवरीथिंग इज डूएबल विद 5% डिपॉजिट. और रेट्स भी प्रीटी कॉम्पिटेटिव रेट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द कैशबैक एज वेल. तो मार्केट में देश काफी रूमर्स हैं कि नहीं होता या टाइम लगेगा या यू नो डिफरेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आपका अपना जेन्युइन सेविंग्स होनी चाहिए कि आपका अपना खुद का पैसा होना चाहिए. सो दिस lot of different information which has been floating around, but lekin I think as a purchaser of the house, agar apna motivation dekh rahe hain ki mereko ghar lena hai, so I think 5% deposit is one of the genuine initiative which has been taken by the banks and by the government to get into the property ladder, and I think we should definitely take full advantage of it and get into the property jisme aap bol sako ki ye mera apna ghar hai. You know, that is very important.
2: And what about you? Like, क्या आप उन लोगों की help कर सकते हैं? Suppose someone is there, जिनका particular case ऐसा ही हो, जिनके पास 5% ही deposit हो, और वो first home buyer लेने के, first home buyers हो, पहला घर लेने के बारे में सोच रहे हैं. Are you in a position to help them out with that?
3: 100% पूजा जी, हमारा तो काम ही यही है कि basically उन customers को help करना, क्योंकि basically इतनी information outdated होती है उनके पास कि basically कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन जब हम उनका हाथ पकड़ते हैं, जब मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, तो basically we'll just get them through. जब तक वो अपने घर में नहीं बैठते हैं तब तक ये ना I'm gonna be along with them in that journey. तो उनको basically they have to just take a back seat and then that's it. Let me drive.

0: सकते हैं आपका पहला घर लेने के लिए, और अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन की 5% ही डिपॉजिट है, देन एटलीस्ट टॉक टू हिम वंस. गुरु, नेक्स्ट वीक थर्सडे आपसे और बातें हम जरूर करेंगे और जानकारी जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे. बट टिल देन हैव अ वंडरफुल डे.
1: थैंक यू पूजा जी, चीज़, बाय बाय.
0: बाय.
2: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
0: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा।

0: सेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
2: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
3: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Need a mortgage? Get Buddy.
7: Mostly cloudy, a bit of sun today, 18 hour high. Coming into the city, starting to ease. Southern, still 40 minutes. Manukau to town, 50 from Drury. We're fine to Otahu, but quite heavy on and off from there. Southwestern, slow northbound up to Puanui Road. Northwestern, 25 minutes in from Massey, not bad. Slow from the causeway, little heavy on and off to Grey Lynn. Northern, 28 in from Constellation, heavy there and slow to the bridge.
6: For expert mortgage advice without the stress, start with buddymortgages.co.nz.
8: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
10: Bunnings has great value to help make spring cleaning easy with all set 20-pack of microfiber cleaning cloths, only $10.98, and the Pink Stuff 850-gram Miracle Cleaning Paste, just $9.49. Head in store or online for even more great value this spring. Bunnings
11: Warehouse. It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: तो आज का व्हाट्स इट टेक टॉपिक जो हमने आपके साथ शेयर किया, जिसके बाद में चलकर कुछ लोगों ने मैसेजेस अपने सेंड किए। गौरव ने कहा कि जब भी वो आते हैं इंडिया जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने साथ लेकर आते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग एनीवन कैन गेट ना।
15: या
14: तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इन्होंने लिखा है। एक कॉल भी हमारे पास आया था, इन्होंने कहा कि वो घर के बनाए हुए मसाले और कपड़े वगैरह जो है ये लेकर आते हैं, अपने स्नैक्स, जैसे जो स्नैक्स वो खाना पसंद करते हैं, चिप्स वगैरह हो गए जो पर्टिकुलर ब्रांड के, वो लेकर आते हैं। फिर किसी और का भी मैसेज आया है, इन्होंने कहा यस यू कैन डेफिनेटली, ओ क्रीम बंस के बारे में, यस यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग क्रीम बंस। आई ऑलवेज ब्रिंग इट। यू कैन आस्क द स्टाफ एट हॉट ब्रेड टू रैप इट अप इन ग्लेड रैप सिंस यू विल बी ट्रेवलिंग विद इट। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि आज तक हम नहीं लेके आए, बट अच्छा लगा जान के कि आप ये भी लेकर आ सकते ना।
15: और किसी ने बोर्ड नाउ टेक्स्ट किया है 5599 पर।
14: नहीं, हमने कल भी आपको समझाया था, आपको बोर्ड नाउ 5599 पर टेक्स नहीं करना है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको हमारे हम बोर्डिंग कॉल में पार्टिसिपेट करना है, लिसन टू दिस इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी केयरफुली। एक क्यू टू बोर्ड, एक साउंड, एक ऑडियो बचता है जिसमें क्यू टू बोर्ड जो है ये आपके लिए प्ले होता है कि अच्छा ठीक है, अब आप बोर्ड कर सकते हैं हमारा हम बोर्डिंग कॉल। और जैसे ही ये क्यू टू बोर्ड आप सुने, वैसे ही आपको विजिट करना होता है रोवा ऐप। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, इट्स इजी। कॉम्पिटिशन पेज वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ। व्हेन यू सी दैट प्लेस जहाँ पर एंटर कोड नाउ लिखा है, वहाँ पर आपको टाइप करना होता है बोर्ड नाउ, बी ओ ई आर डी स्पेस एन ओ डब्ल्यू, और ये टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होता है। वंस यू डू दिस, You will be part of a draw जहाँ पर आप जीत सकते हैं 2 return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. आप Solomon.com भी विजिट flysolomon.com भी विजिट करते हैं डिटेल्स के लिए या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.over.nz आप विजिट कर सकते हैं.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton.
1: Hum, accurate traffic.
2: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
3: Mostly cloudy, just a bit of sun today, 18 hour high. Easing on motorways, southern 35 minutes, Manukau to town. Fine toward Tahuhu, but heavy on and off from there. A breakdown at Takanini cleared quite quickly. Slow on the southwestern northbound through Whitty. Northwestern, 21 minutes in from Massey, pretty good. Slow from Point Chev. Northern 25 from Constellation, heavy there, and slow patches to the bridge. Not too bad at Silverdale.
2: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
5: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
6: Shower dome.
7: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
8: When India comes to town, आओ दियारोवा का फील ही कुछ अलग हो जाता है. Cricket Nation के pre-sale में शामिल हो. nzc.nz पे और अपने टिकट सबसे पहले बुक करो क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है Black Caps vs India.
9: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
10: Sorry about that.
9: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
10: Kogan Mobile, true Aussie value.
9: Terms and conditions apply.
0: Hum, time check.
11: Good morning, it's Simitik Nobatri here.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. An education union is calling for more support for high-needs students. It claims some schools are having to use money set aside for supplies and maintenance. Upper Noi School Principal Marama Stewart says it's dire.
13: We are penny-pinching and I'm unable to purchase the nice-to-haves that I would like to have for my learners. And we are a large school. Smaller schools just don't have the resources.
12: The township of Seddon and Marlborough can breathe a sigh of relief with a water main repair complete. Things are back to normal on the network, but those on the rural Awatere supply should still continue to follow the boil water notice. There are calls for a greater focus on dementia prevention. Researchers at Auckland Uni say it could lead to significantly fewer people needing a residential aged care bed over time. President Trump has weighed in on the Tiger Woods driving ban after his reckless driving plea deal. The pair are close, with the golfer even dating his son's ex-wife Vanessa. Trump says Woods has had a tough time lately, especially with painkillers.
14: He didn't test positive at all for alcohol, but because of his horrible back, my opinion, a bad doctor, but he had a back operation that did not work out well, and he is under pain.
12: In sport, there's expected to be changes to the forward pack when the All Blacks reveal their team late tonight for Sunday's third test against the Springboks in Johannesburg. Cody Taylor's under pressure to retain his spot at hooker, while prop Ethan de Groot and lock Josh Lord are available, having recovered from a concussion. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the NBA has stripped the Los Angeles Clippers of 5 first-round picks and issued a $51 million fine to owner Steve Ballmer for circumventing the salary cap.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: तो याद रहे आज का वेदर बताया जा रहा है कि रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है. पार्टली क्लाउडी दिन आज हम एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट 6:03 PM पर होगा. टेम्परेचर राइट नाउ 14.8 डिग्रीज पहुंच चुका है. हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरी luxury living. What's going on? क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: आज का क्या बकते हो स्टोरी. आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू पिछले घंटे की इसके बारे में हम कुछ बातें जो है ये करेंगे. सो मोस्ट लग्जूरियस पिज्जा इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. ये जो लग्जूरियस पिज्जा है इट इज मेड विद अ डो जिसे 72 आवर्स तक फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है. रेयर कैवियर और स्पेशल टॉपिंग्स के साथ जिसमें ऑस्ट्रेलियन पिंक सॉल्ट जो है ये भी शामिल है. और ये जो लग्जूरियस लुइस आई डोंट नो ये रोमन नंबर्स में एक्स ट्रिपल आई क्या होता है.
17: 13
11: होता है. मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसलिए मैं पूछ रही
17: हूँ.
11: ओके तो या इट्स लाइक इट्स राइट इट्स नंबर्ड लाइक दैट कि ये पिज्जा जो है इसे ये नाम जो ये दिया गया है. एंड इसका प्राइस आई डोंट नो ये कितना होगा न्यूजीलैंड डॉलर्स में आप अगर इसे इवेलुएट करो. लेकिन इसका प्राइस बताया जा रहा है 10 लाख इंडियन रुपीज.
17: 10 लाख इंडियन रुपीज. Okay.
11: It's like New Zealand roughly कितना होगा. I'm just trying to figure out the amount कि ये कितना हो सकता है New Zealand roughly. But इतना expensive ये है कि
17: $18,094.
11: अच्छा.
17: $18,000.
11: Oh okay. $18,000 रख लो ना. तो $18,000 का pizza.
17: बो
11: या
17: क्या है आज $100 की कॉफी $18,000 का पिज्जा.
11: या सो दिस इज क्रिएटेड बाय द इटालियन मास्टर पिज़ालियो रेनाटो वियोला. द लुइस 13 जैसे कि आपने बोला अगर इसे बोला जाता है इज वाइडली रिपोर्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जास. प्राइस इसका जैसे कि न्यूजीलैंड $18,000 आपने बताया विच इज अराउंड इटली में अगर देख लिया जाए पाउंड होते हैं ना तो अराउंड 8,300 पाउंड का एक पिज्जा है ये. दो लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं. इट्स 20 सेंटीमीटर्स अबाउट 8 inches. और जैसे कि हमने कहा द डो इज प्रिपेयर्ड एंड लेफ्ट फॉर फर्मेंटेशन फॉर अराउंड 72 आवर्स. 72 आवर्स विड बी
17: 72 घंटे.
11: अरे घंटे पता है दिन कितने होते हैं. चार
17: नहीं
11: तीन.
17: 48.
11: हाँ तीन दिन ना. तो 3 दिन के लिए इसे रखा जाता है फर्मेंट होने के लिए. और इसमें टॉपिंग्स जैसे लॉबस्टर प्रॉन्स श्रिम्प्स मेंटिस श्रिम्प बफलो मोजरेला साथ में 3 वेराइटी ऑफ प्रीमियम कैवियर जो ये यूज होता है. और इसमें जो बहुत ही यू नो रेयर पिंक सॉल्ट ऑस्ट्रेलियन पिंक सॉल्ट ये यूज होता है. और इसमें आपको एक इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में आपको प्रीमियम शैम्पेन ये भी दिया जाता है. बट द क्रेजीएस्ट पार्ट क्यों ये इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पिज्जा जो पिज्जा शेफ होते हैं ये आपके घर पर आकर प्रिपेयर करते हैं. द शेफ एंड हिज टीम विल कम टू यू एंड ये फिनिश्ड पिज्जा जो है आपको सर्व करेंगे एज अ लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस. दैट इज व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव.
17: माय गॉड आपके घर पर आपकी चीजों का इस्तेमाल करके.
11: नहीं वो लेके आएंगे सामान आपकी चीजों का इस्तेमाल
17: या जो कुछ जहाँ कहीं भी बनाएंगे.
11: हे प्रभु वो लेकर आएंगे सब कुछ.
17: चूल्हा भी लेकर आएंगे अपना.
11: नहीं वो 3 दिन पुराना आटा लेकर आएंगे उसको प्रिपेयर कर लेकर आएंगे फिर वो आपको वो बनाकर सर्व करेंगे. तो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ आपके घर पर आकर इस्तेमाल कर बनाएंगे. जस्ट प्रोबेबली बेक करने के लिए अवन का इस्तेमाल होगा या फिर हो ना उसकी वो बनाकर लेकर आएंगे गर्मा गर्म और सर्व करेंगे. क्योंकि वो डिटेल मेरे पास नहीं है. व्हाट इफ आई फाउंड आउट एज ऑफ नाउ. बट वो सारी चीजें छोड़ो ये सोचो ना दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा.
17: नहीं खाना नहीं खाना. आई कांट अफोर्ड इट.
11: न्यूजीलैंड में अराउंड $18,000 का एक जो 8 इंच का होता है जो दो लोग ही खा सकते हैं. इमेजिन ये है ना क्या बकते हो. फोकस इस पर डालो आप बाकी चीजों पे नहीं. बट एनीवेज तो आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए. 7 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. थोड़ी देर बाद बातें होंगी एक्ट पार्टी के
17: इमिग्रेशन प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर परमजीत परमार से.

0: तो बहुत ही खूबसूरत ये गाना फादर्स डे के खास मौके पर आप सबके नाम हम कर रहे थे। आई नो टुडे इज 3rd ऑफ सितंबर और फादर्स डे जो है ये हम 6th ऑफ सितंबर को यानी इसी संडे को सेलिब्रेट करेंगे। सो रिमाइंडिंग यू ऑल कि फादर्स डे जो है अब बस कुछ ही दिनों बाद है। होपफुली आपने प्लान कर लिया है कि आपको अपना फादर्स डे अपने फादर के साथ कैसे स्पेंड करना है। यू हैव सॉर्टेड द गिफ्ट्स फॉर देम, यू हैव सॉर्टेड द सरप्राइजेस जो आपको उनके लिए करना था, प्लान पूरा तैयार है। बट सबसे ज़रूरी चीज़, आपने हमारा जो डैड्स रिवर्स ग्रिल फेसबुक ऑन एयर कॉम्पिटिशन, जितने भी डैड्स हैं आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है तो याद रखिए आज लास्ट डे है आपके पास इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, विच मीन्स आज अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया यू विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। सो जैसे जैसे ये मौका जिस किसी के भी प्रोग्राम में मिले, डू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कॉल करते हुए पार्ट लीजिए। $500 कैश आप जीत सकते हैं। और दूसरी ओर डेड्स AI अपग्रेड, अगर इसमें पार्ट नहीं लिया है फेसबुक पेज हमारा विजिट करें, हम 104.2 FM, दैट्स द ब्लू टिक के साथ जो पेज है हमारा वेरीफाइड पेज है ये, और इसके फीचर्ड फोल्डर में आपको डेड्स AI अपग्रेड ये कंपटीशन दिख पोस्ट जो है ये दिख जाएगा। बस उसी के कमेंट सेक्शन में आपको एंट्री लेनी है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है कैसे करना है। ये एक दिन है जिसको फुली इस्तेमाल करें आप टू टेक पार्ट, बिकॉज कल सिर्फ ड्रॉज होंगे। कल हम आपको कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका नहीं देंगे, सीधे सीधे विनर्स का नाम जो है ये हम अनाउंस करेंगे। सो मेक श्योर टेक पार्ट इन आवर फादर्स डे कंपटीशन।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: हे देखो हम आ गए।
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
4: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: डिब्बा खुल गया।
6: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
7: संजना का डिब्बा खुल गया।
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
7: डिब्बा खुल गया।
8: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
10: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
11: Freedom's flash sale is on now. Save at least 30% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get at least 30% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
12: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
13: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
14: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
16: तो क्या करें?
17: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. हम पर 19 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. हमने कहा था कि आज हमारी बातें जो है ये होंगी एक्ट पार्टी की जो इमिग्रेशन प्रवक्ता हैं डॉक्टर परमजीत परमार से. तो लाइंस पर हमारे साथ डॉक्टर साहिबा आ गई हैं. सबसे पहले आपका स्वागत है. नमस्कार.
3: नमस्कार आपको भी और आपके लिसनर्स को भी.
2: तो डॉक्टर साहिबा, अभी बीते कुछ दिनों से काफ़ी बातें चल रही हैं जब से आप लोगों ने ये पॉलिसी जो है ये अनाउंस किया है. तो इन नटशेल ब्रीफली आप लोगों को समझा सकेंगे कि क्या आप लोग चाहते हैं या क्या अनाउंस किया गया है?
3: जी ज़रूर. तो अभी हमारी जो परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी जो है उसमें क्या होता है कि जब किसी को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो उनको यहाँ पर बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है. तो यानी कि अनकंडीशनल राइट्स हैं उनके पास में री एंटर होने की कंट्री में, और वो कितने भी समय तक बाहर रह सकते हैं. तो परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब होना चाहिए कि लोग न्यूजीलैंड में रहें, ना कि रेजिडेंसी ऑब्टेन करके अपनी जो लाइफ है कहीं और एस्टेब्लिश कर ले और जब ज़रूरत हो तो हमारे जो जनरस पब्लिक सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आ जाएं. तो मैंने ये काफ़ी कंसर्न्स काफ़ी लोगों से सुने कि कुछ परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने देखा है वो मूव आउट हो जाते हैं दूसरे कंट्री में जहाँ पर उनके काम है, यहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है उसका लाभ लेने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कभी हेल्थ में कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं. तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो गवर्नमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पब्लिक रिसोर्सेज हैं, वो उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए जो लोग यहाँ पर जेन्युइनली रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसमें हमने क्या किया है, एक फिजिकल प्रेजेंस का टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है. हर 2 साल जो है विद इन रोलिंग 5 ईयर पीरियड में लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वो न्यूजीलैंड में फिजिकली प्रेजेंट रहे हैं. ये 2 साल लगातार नहीं रहना है, लेकिन इससे हम एक तरह से ये एक टेस्ट है जिससे कि हम कह सकते हैं कि उन लोगों का कमिटमेंट न्यूजीलैंड में है.
2: ओके. अभी कुछ सवाल हैं डॉक्टर साहिबा. सबसे पहले जो लोग अब मान लिया जाए कि इसे असर में आना हुआ, जो लोग पहले से करंट रूल्स के तहत परमानेंट रेसिडेंस वीज़ा होल्ड कर रहे होंगे उनका क्या होगा?
3: तो ये पॉलिसी जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन के मामलों में मेरा ये मानना है कि जो एक्सपेक्टेशन वो पहले से ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसा देश हैं जहाँ पर कि हम माइग्रेंट्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग है, लेकिन वेलकमिंग के साथ साथ हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जो राइट्स हैं उनके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. तो हम जैसे ऑस्ट्रेलिया में है इस समय, कनाडा में है इस समय, ये एग्जैक्टली वही सिस्टम है जो कि मैंने यहाँ के लिए अनाउंस किया है.
2: ओके. जो अभी रेसिडेंस वीज़ा है जो सबसे पहले आपको मिलता है अगर आप एक टेम्प्रेरी वीज़ा पर हो, उसके बाद वो जो परमानेंट रेसिडेंस से पहले रेसिडेंस वीज़ा आता है उसका आप लोग क्या करेंगे?
3: तो हमारा ये कहना है कि क्योंकि रेजिडेंट वीज़ा में भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है और हमारा जो नई पॉलिसी है उसमें भी हम ये जो ऑनगोइंग कमिटमेंट की जो शर्त है ये रख रही हैं. तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में सिस्टम जो एक टीयर है, आगे चल के हम चाहेंगे कि इसको एक टीयर करें ताकि कि सिस्टम जो है सिंप्लीफाइड हो और लोगों को पूरी तरह से पता हो कि क्या एक्सपेक्टेड है. तो रेजिडेंट वीज़ा में अगर हम ये कंडीशन लेकर के आते हैं जैसे 2 ईयर्स का जो है विद इन एवरी रोलिंग 5 ईयर पीरियड, तो ये अब की जो कंडीशन है उससे कहीं बेहतर है. तो लोग जो है ज़्यादा समय ओवरसीज अगर जाना चाहे बिता सकते हैं, लेकिन इनफ टाइम यहाँ पर भी.
2: अगर कोई रेजिडेंट एक रोलिंग 5 ईयर विंडो में 730 डेज का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर पाता तो क्या उनका जो ट्रैवल फैसिलिटी इंस्टेंटली कैंसिल हो जाता है या फिर न्यूजीलैंड के अंदर एंटर करके डेज एक्युमुलेट करने पर ये रिन्यू हो सकेगा?
3: तो इसमें क्या है कि हमने कुछ एग्जम्पशंस रखी हुई हैं, जैसे कि जो लोग ओवरसीज किसी न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं, या फिर जो इन्वेस्टर कैटेगरीज हैं उनके लिए हमने एग्जम्पशंस रखी हुई हैं. लेकिन अगर कि कोई अपनी ये शर्तें नहीं पूरी कर सकता है तो उनको फिर से प्रोसेस शुरू करके अपना कनेक्शन जो है दिखाना पड़ेगा ताकि कि वो यहाँ पर आकर के वापस अपनी जो रेजिडेंसी है वो क्लेम कर सकें.
2: डॉक्टर साहब, अगर एक माइग्रेंट जो है न्यूजीलैंड में फुल इनकम टैक्स पे कर रहा है, प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, उसके बिजनेसेस यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, तो उनका जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट इस देश के प्रति काफ़ी है, ये फिजिकल प्रेजेंस क्यों आपको लगता है इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फाइनेंशियल कमिटमेंट?
3: तो अगर किसी का यहाँ पर बिजनेस है और वो यहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो उनके लिए 5 साल में 2 साल यहाँ पर रहना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो हैं कंट्रीज, वो भी यही मांग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई एक एक्टिव इन्वेस्टर प्लस जो कैटेगरी है उसके अंदर आया है यहाँ पर, जैसे कि फाइनेंशियल जो है फाइनेंसेस लेकर के कंट्री में आया है, तो उनकी कंडीशंस ऑलरेडी अलग हैं, तो वो इसमें एग्जम्प्ट रहेगा।
2: अभी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लिए ब्रॉड पाथवेज और फास्टर प्रोसेसिंग जो है मेरे ख्याल से देते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर इफ ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से शायद 4 साल में सिटीजनशिप मिलती है, न्यूजीलैंड में 5 साल लगते हैं, और इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज़ में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते, दूसरे देशों के पीआर रिस्ट्रिक्शंस यू नो कॉपी करना बिना उसके क्लियर पाथवेज मैच किए, ये सारी चीज़ें अभी हम जिस तरह की पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा, वो क्लियर पाथवेज इसमें नहीं मैच हो रहे हैं जो वहां पर
3: लोग। मैं ये कहूंगी कि अगर जी, मैं ये कहूंगी कि जो लोग यहाँ पर जेन्युइनली न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, घर है उनका यहाँ पर, अपनी फैमिली रेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि ताकि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो फेयर हो और कोई भी इसको एक्सप्लॉयट ना कर सके। तो जहां तक सिटीजनशिप की बात है, वो पर्सनल चॉइस है, कोई सिटीजनशिप लेना चाहेगा और कोई सिटीजनशिप नहीं लेना चाहेगा, तो वो मैं लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, वो उनका पूरी तरह से निर्णय है।
2: अभी क्या है डॉक्टर साहिबा, वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, बट जाने से पहले क्या आप कहना चाहेंगी लोगों से अपनी इस नई पॉलिसी के बारे में?
3: मैं ये कहूंगी सबसे पहले कि इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ और इस देश के लिए जो हमारे लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए अच्छा है वही मैं करना चाहती हूँ। आप अगर हमारी पूरी इमिग्रेशन पॉलिसीज देखें, पूरा पैकेज जो देखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मकसद है यही है कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम एक बैलेंस सिस्टम हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी कैंपेन किया था जो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजिटर्स वीज़ा लेकर आने के लिए, और फिर जो पेरेंट्स की रेजिडेंट कैटेगरी के लिए मैंने कैंपेन किया था कि क्यू सिस्टम होना चाहिए, बैलेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेट सिस्टम में बहुत अनसर्टेंटी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो ओपन वर्क राइट्स किए हैं पार्टनर्स जो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, तो काफ़ी सारे ऐसे हमने काम किए हैं जहाँ पर हम एक तरह से बैलेंस लेकर के आ रहे हैं, जो कि माइग्रेंट फैमिलीज के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये पॉलिसी जो है मेनली उन लोगों के लिए है जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉयट करते हैं, जो कि यहाँ पर रह रहे हैं परमानेंटली, वो कितने भी समय तक इंडेफिनिट पीरियड तक वो रह सकते हैं, उनको अफेक्ट ये नहीं करेगी पॉलिसी।
2: डॉक्टर साहिबा, आपके समय के लिए और इतनी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में जरूर हम आपको तकलीफ देंगे।
3: जरूर जरूर,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर परमजीत परमार एक्ट पार्टी से, जिनसे हम बातें कर रहे थे अबाउट जो पेमिनेंट रेजिडेंस पॉलिसी एक्ट पार्टी ने अनाउंस किया है उसके बारे में। सवाल तो और भी हैं, लेकिन वक्त रहा तो किसी और दिन इस पर और बातें करेंगे।
4: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 25 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 10 बजने में, ठीक 10 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, इधर हम आपके लिए कुछ और भी जानकारियां लेकर आ रहे हैं। स्प्रिंग इज फाइनली हियर, स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी है एंड बहुत से लोग अपने गार्डन्स पर अब काम कर चुके हैं, क्या करने वाले, शुरू करने वाले। इफ यू थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग योर ओन वेजीज दिस स्प्रिंग, तो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट ये है। गार्डनिंग एक्सपर्ट है इज़रा अलेक्जेंड्रा, इनका नाम है, और इन्होंने कहा है डोंट रश टू प्लांट आउटसाइड जस्ट येट, इंस्टेड आप ये जो कुछ वीक्स है, प्रोबली दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, अपने गार्डन को तैयार करने में लगा सकते हैं। स्टार्ट अ न्यू वेजी पैच, लुक फॉर अ नॉर्थ फेसिंग स्पॉट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनशाइन हो, प्रिफरेबली क्लोज टू अ होस ताकि आपको पानी डालने में आसानी हो, इन समय ताकि अपने किचन से भी इसको यू नो मॉनिटर कर सके, देख सके, क्योंकि अपेरेंटली जब आप अपने वेजिस को देख सकते हैं इट इज़ मोर लाइकली कि आप एक्चुअली में उनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट कर छोड़ दिया और फिर यू नो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फोटोज ले रहे, बस you actually using them because if you're looking at them from your kitchen,
1: gobi bechara udaas aapko garden se dekh raha hai,
0: main to abhi har roz apne padosi ke andar le chalo, main har roz apne padosi ke gobi jo ye dekh rahi hoti hu, bhi unke garden mein teen teen gobiyan lagi hai aur rubab bhi inhone dale hai, ek pot mein inhone chilies jo ye plant kiya hua hai, I feel like going and asking him, mujhe gobi nahi pasand hai par itne khoobsurat lag rahe hai yaar wo teen gobi jo main apne kitchen se dekh sakti hu har roz। So, you know, if you see it from your kitchen also, you'd feel like ki, chalo iska istemal karte hain.
1: Achha.
0: So that also matters.
1: Teen gobi hai wahan.
0: Teen gobi hai. Teen hi hai. So apparently, ye ek time hai jise aap achhi tarah se use kar sakte hain. Common beginner mistakes hote hain ki aap bahut sare jo plants hai, in ek chote se space mein squeeze karne ki koshish karte hain. Lekin Isra jo expert hai, inka kehna hai ki dividing your garden into smaller sections could be a better way of planting them. And don't forget the soil, क्योंकि आप अगर roughly 50-50 of mixed topsoil and compost के साथ शुरू करते हैं, then आप उसमें organic matters like compost and sheep pellets वगैरह जो है ये या worm compost जो है ये डालते हैं तो आपके plant के लिए अच्छा होता है। And don't plant outside too early, अभी भी काफ़ी ठंड है, keep that in mind. Sudden frost जो है कभी कभी आपकी जो seedlings है उन्हें बर्बाद कर सकता है। And most of New Zealand के लिए अगर देखा जाए तो the safer time to plant, इन्होंने कहा है कि outside अगर आप plant करना चाहते हैं the safer time would be somewhat around after Labor Day, जब colder weather जो है ये कम हो जाए, especially South Island के लिए ऐसा बताया गया है। North Island के लिए probably आप a little before that कर सकते हैं, but जब colder weather ख़त्म हो जाए तो आप अपने plants जो है ये बाहर लगा सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं कि सितंबर आया, स्प्रिंग आया तो चलो गार्डनिंग करते हैं या प्लांटिंग शुरू कर देते हैं। प्रिपेयर योर गार्डन, गिव इट सम टाइम एंड देन गेट द थिंग डन।
1: गार्डन को भी लगना चाहिए कि आई बिलोंग हियर ना।
0: या एग्जैक्टली, आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर द सोशल मीडिया अपडेट्स, यू नो। 22 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे हमारा डेली राउंड अप। बट हैव यू गाइज प्रिपेयर्ड योर गार्डन ऑलरेडी, येस या नो? क्या आपके गार्डन में वेजीज हैं, येस या नो? क्या आप इस साल गार्डनिंग करने वाले हैं, येस या नो? लेट अस नो 5599 पर।
2: Mornings made better.
3: Two fryanda, 4 toast, butter, jam, and a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Poo.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: No matter what you're working on, Mighty 10 Mega Westgate of Henderson aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mighty 10 Mega Westgate in Henderson, helping you get it done right.
4: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
5: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
4: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
5: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
4: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
6: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: What's going on?
10: खबरों में सबसे पहले ऑकलैंड के एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर आरोप है कि उसने फेसबुक मार्केटप्लेस स्कैम्स के जरिए $13,000 से ज़्यादा पैसे हासिल किए थे एंड दीज स्कैम्स वे कैरिड आउट ऑन अ डेली बेसिस। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति जो है इसने पैसे लिए थे फॉर आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशिंग रील्स, स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज, म्यूजिक इक्विपमेंट, लेगो और पोकेमॉन कार्ड्स के लिए। पुलिस को कई शिकायतें मिली एक यूज़र के बारे में जो पैसे लेने के बाद सामान नहीं भेजता था और इस व्यक्ति को डिस्क्राइब किया गया है एज अ सीरियल स्कैमर। पुलिस ने कहा कि इस व्यक्ति ने $13,700 से ज़्यादा पैसे स्कैम के जरिए हासिल किए। इंक्वायरी की गई कि और पाया गया कि फरवरी और अगस्त के बीच इस साल इस व्यक्ति ने फेसबुक मार्केट प्लेस पर हर दिन लोगों के साथ जालसाजी की है। ये जानकारी एक्टिव डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट जेम्स किम ने दिया। वो कई आइडेंटिटीज के तहत काम कर रहा था एंड इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज स्पेंड इन द नॉर्थ आइलैंड। और कल 42 वर्षीय इस व्यक्ति को एक रेड के बाद आकल्स बे में गिरफ्तार किया गया। उन पर 22 काउंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग बाय डिसेप्शन, फेलिंग टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू अ कंप्यूटर सर्च, पोजेशन ऑफ कैनबिस यूटेंसिल, पोजेशन ऑफ मेथमफेटमिन यूटेंसिल, इंजरिंग विद इंटेंट टू इंजर और दो काउंट्स ऑफ कॉन्ट्रीवीनिंग ए प्रोटेक्शन ऑर्डर लगाए गए हैं। उन्हें हिरासत में रखा गया है और अगले साल जनवरी में अब नोचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से मांग की है कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर डील करते समय या बाय एंड सेल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से इंटरेक्ट करते समय उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा उधर दो और लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये भी बीच हेवन में हुआ है जब एक घर में एक फेक वॉल मिला और उस फेक वॉल के

एम्फेटामिन के प्रोडक्शन में किया जाता है, ये सब कुछ पाए गए। एक ऑटोमोबाइल भी घर के अंदर पाया गया जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कैश जो है ये छिपाए गए थे। वहां पर से दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मामले की छानबीन फिलहाल की जा रही है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: दो बातों का वक्त अब हो चुका है आज की खातिर. सबसे पहली बात जो है, कहते हैं किसी ने कहा है कि मैं वो समझदार हूं जिसे पता है.
3: क्या पता है?
2: कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है.
3: ये तो समझदारी सब में होती है यार. एंड आई थिंक पीपल हैव बीन दिस काइंड ऑफ समझदार सम टाइम्स इन देयर लाइफ.
2: तो ये आज की पहली बात है. और दूसरी बात, सोच समझकर अपना दर्द बांटना. सोच समझकर अपना दर्द बांटना, ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है.
3: वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलिए आज आपके लिए दो बातें जो हम लेकर आए हैं. इट विल मेक यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट विल मेक यू इवैल्यूएट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स गुड. कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड आप एज अ ह्यूमन बींग अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए कितना कर रहे हैं ना. तो चलिए अब आपसे चाहेंगे इजाजत. जाने की जाने का समय हो रहा है. थैंक यू सो मच आपके साथ और समय के लिए. कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर. हम आपके साथ जुड़ जाएंगे.

0: Container clear out. Today only. Stores open late. See online for TCs and store hours.
1: Bunnings has great value to help make spring cleaning easy with all set 20-pack of microfiber cleaning cloths, only $10.98, and the Pink Stuff 850-gram Miracle Cleaning Paste, just $9.49. Head in store or online for even more great value this spring. Bunnings
2: Warehouse. Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
2: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ. अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: हम टाइम चेक. हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
10: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. People across the lower South Island have been warned there could be tremors for some time. Two back-to-back earthquakes hit near Milford Sound last night, followed by dozens of aftershocks. Sam Taylor from Earth Sciences says it was quite unusual too.
11: So they're really close in time, about 30 minutes apart. They show almost exactly the same motion, and they're basically the same magnitude, the same fault moving twice, about the same amount.
10: Some concern has been raised about a lack of funding for high-need students. Schools are having to dip into budgets set aside for property maintenance and basic supplies. NZDI member and principal Marama Stewart says the minister needs to open her eyes.
12: It would be lovely if the minister made decisions that were guided by the experts she has, but that's not currently happening.
10: And there are calls for a greater focus on dementia prevention here. Researchers say it could lead to significantly fewer people needing a residential aged care bed over time. Auckland University's Etuini Mau says the risk factors need addressing.
13: Things that affect the heart, things that improve our cognitive reserve, which is our brain's ability to cope and to compensate for any changes that do occur.
10: In sport, the American men's tennis number one is through to the third round at the US Open. Ben Shelton securing a four-set victory over Hubert Hurkacz under the roof at Arthur Ashe Stadium.
14: Super happy with the way the match went. I thought that it was a battle to the end. I thought Hubie played outstanding today.
10: And in basketball, a massive punishment for the Los Angeles Clippers. The NBA has stripped them of five first-round draft picks and fined owner Steve Ballmer $51 million for circumventing the salary cap.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: The high of 15, overnight temperature of 12. Aaj ka forecast bataya ja raha. It feels like 15 degrees right now. And 6:01 par sunset bhi bataya ja raha hai.
9: Non-stop Bollywood.
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
9: हम playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
17: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रही है
9: My Time with Kashika.
15: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय 10:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका स्टूडियोज में आ गई हूं और 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. ये सिलसिला कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है. और ऐसे में आज एक महीने के लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट जो हैं कुछ आ रहे हैं और कुछ बातें करने वाले हैं. एंड दिस इज़ रिगार्डिंग यू. आप अपने लिए कितना महत्व रखते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें जो होती हैं जो यू नो इग्नोर कर देते हैं. सो हमें वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान देना है. और आपके आसपास के जो लोग हैं शायद उन पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा हो जाता है। और ऐसे में आपके लिए एशियन फैमिली सर्विसेज से हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो अब थोड़ी देर में स्टूडियो लाइन पर हमारे साथ आने वाले हैं। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग अभी भी ट्यून इन कर रहे हैं। आज आपका सातम है, आई थिंक बहुत से लोग सातम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में आपकी फास्टिंग भी होती है।
9: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: पिछले कई दिनों से हम आपसे बात करते चले जा रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ और उसकी इम्पोर्टेंस, किस तरह हम उसे नोटिस करते हैं, खास तौर पे जो हमारे कोई बहुत नज़दीक होता है और उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में बात करने के लिए एशियन फैमिली सर्विसेज से आज मेरा साथ स्टूडियो लाइन पर दे रही हैं मिथिला गडकरी। मिथिला नमस्कार एंड वेलकम ऑन हम, कैसी हो?
2: नमस्कार कशिका जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने सोचा आज आपके साथ बातचीत कर लेती हूँ।
2: थैंक यू सो मच कशिका जी, ये मौका मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माय प्लेजर। अच्छा मिथिला, आप बताइए ये जो रीच इन रीच आउट का मतलब क्या है? दरअसल
2: रीच इन मींस पॉजिंग टू नोटिस हाउ यू आर फीलिंग।
1: ओके,
2: खुद से पूछिए मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या मेरी नींद, मेरा रूटीन या मेरा लोगों से मिलना जुलना बदल गया है। ये सब चीजें नोटिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। रीच आउट का मतलब है स्टार्टिंग अ सिंपल केयरिंग कॉन्वर्सेशन। सो यू कैन से यू डू नॉट सीम लाइक योरसेल्फ लेटली, वुड यू लाइक टू टॉक। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अपनी परेशानी शेयर करे तो उनकी भावनाओं को समझें, उनके लिए मौजूद रहे और बिना कोई राय बनाए उनकी बात सुने।
1: ओके, तो यू बेसिकली आर ट्राइंग टू से दैट हम जब बात करते हैं, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई परेशान है, यू नो, किसी को कोई परेशानी उसको परेशान कर रही है, तो उनकी उनकी जो फीलिंग्स हैं जो हमें वो समझना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनके लिए मौजूद रहें, कोई बिना हमें, मतलब वी शुड नॉट टेक एन मेक एन ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन, बट उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। इफ वी शुड गिव अ लिसनिंग ईयर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग?
2: यस एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं है या हमें हम बात कर खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें यू नो जानना चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली। तो ये एशियन फैमिली सर्विसेज किस तरह का सपोर्ट देती है?
2: तो एशियन फैमिली सर्विसेज में ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं जो फ्री और कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास फ्री हेल्पलाइन है, अगर आप 0800-862-342 पर कॉल करें तो फ्री हेल्प मिल सकती है, क्योंकि रीचिंग आउट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है।
1: सही बात है, आई थिंक दिस इज सो राइट। तो जितने लोग मुझे समय सुन रहे हैं, आपको पता है कि एशियन फैमिली सर्विसेज जो है, आप वहाँ पर किसी के साथ अपना ट्रस्ट बना के, एक ट्रेन प्रोफेशनल हैं आपके लिए दूसरी ओर होंगे, कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ का सपोर्ट आपके आपको हेल्पलाइन के थ्रू भी दे सकते हैं एशियन फैमिली सर्विसेज। इनका नंबर आप नोट करें 0800-862-342। कोई वेबसाइट भी है आपकी मिथिला?
2: हाँ, www.asianfamilieservices.nz।
1: ओके, थैंक यू सो मच मिथिला आज इस बारे में बातचीत करने के लिए, आपसे आगे चलकर और भी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सो मच कशिका जी, थैंक यू,
1: बाय बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं?
4: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money. Vacation.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
7: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: Award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
14: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
15: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
16: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. Northendale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
17: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
18: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. T's and exclusions apply.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Office Shoutout.
1: देखिए, ऑफिस आउटआउट में मेरे पुराने दोस्त कहाँ गायब हो गए थे आप। और एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे वेलिंगटन, पूरी टीम से की ओर से वेरी गुड मॉर्निंग एंड एंजॉयिंग योर माय टाइम, योर टाइम विद काशिका जी। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड टू नो अबाउट योर सेल्फ। डोंट इग्नोर ना करने वाली, वेरी हैप्पी एंड ब्यूटिफुल सनी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेलिंगटन एंड थैंक यू सो मच। आप कहाँ चले गए थे ऐश? देखिए, हमने आप सबको, हमारे पास किसी और का भी टेक्स्ट आया था, उन्होंने कहा था ये आपको आजकल वो टेक्स्ट क्यों नहीं करते। मैं कहा शायद नाराज़ हो गए होंगे, बट ये नाराज़गी दूर हो गई आपकी। एक बात तो है कि एक जो ग्लिच है, जो ASB कीवी सेवर और ASB इन्वेस्टमेंट फंड बैलेंस ने इनकरेक्टली शो किया था ऑनलाइन बैंकिंग में और मोबाइल ऐप पे, वो था $0। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगा दे हैव लॉस्ट देयर लॉन्ग टर्म सेविंग्स एक्सेट्रा, लेकिन बैंक ने बताया कि एक टेक्निकल फॉल्टी जिसकी वजह से ये हुआ, सो दे हैव अपोलोजाइज्ड फॉर द सेम।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हमारी कम्युनिटी जो है रघुपति राघव राजा राम करती है, और ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में अगर आप भी इंक्लूड अपने आप को करना चाहते हैं तो द केव कैवेंडिश ड्राइव मैनेकाओ में आप पहुंच सकते हैं 7:30 बजे से. और आज ही के दिन आप रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मैनेकाओ में भी 7:30 बजे से पहुंच सकते हैं. न्यूजीलैंड संगम में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लैम्बी ड्राइव मैनेकाओ में भी आप जा सकते हैं. और साथ साथ श्री राम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में भी बहुत कुछ चल रहा है और कृष्ण जन्म के लिए भी बहुत तैयारियां हो रही हैं. और टिरुआ सनातन संगम संस्था जो है जो सटन क्रेसेंट में है लोकेटेड, वहां पर भी जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है अलोंग विद हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर, और साथ में माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोई ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोई में आप पहुंच सकते हैं. तो भाई आपके लिए ये सब चीज़ें हमने आयोजन किया. वैसे आपकी भी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है तो हमें बिल्कुल आप buzz@hamfm.com पे ईमेल कर सकते हैं.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: वैसे हमारी कम्युनिटी में जो भी कुछ हो रहा होता है और अगर फ्री में है तो बिल्कुल आपका वो इवेंट, तो आप हमें buzz@hamfm.com पे आप ईमेल कर सकते हैं. बाय द वे, आपके साथ भी क्या हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? आपने सुबह उठ के देखा कि ASB बैंक में जब आप आपने लॉग इन किया तो वहाँ पे आपका जीरो दिख रहा था बैलेंस. क्या आपके साथ ऐसा हुआ? प्लीज़ कम टू आर फेसबुक पेज एंड गिव योर बिट ऑफ गाथा. आपके साथ कुछ हुआ ऐसा कुछ? अच्छा लगता है जानने के लिए, क्योंकि कभी कभी बैंक ने अपोलोजाइज तो ज़रूर किया है कि शायद एक टेक्निकल ग्लिच था उनके साथ. लेकिन ऐसा कोई ग्लिच नहीं होता जहां पर हम अपोलोजाइज नहीं करते. हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते हैं और उसके बाद हम उसके लिए अपोलोजाइज करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या आपके फादर को आपने अपने रंगों में ढाने की कोशिश की और वो नहीं माने? कुछ ऐसा हुआ होगा. अगले घंटे पर इसके बारे में बातचीत करेंगे. ये लास्ट चांस होगा जहाँ पे फादर्स डे के मौके पर मैं आपकी एंट्री लूँगी, क्योंकि कल ड्रॉ होने वाला है और अब बारी आ रही है आपके ड्रीम के इंटरप्रिटेशन की. कोई बात, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई सपना तो मुझे बताइए.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
11: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
2: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
13: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
14: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
13: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
14: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
13: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hump boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
0: Dream Diary. Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: All right, अब ड्रीम डायरी में सॉरी आई वॉज टॉकिंग टू यू एंड मेरा दिल से दिल तक का स्वीपर बज गया, लेकिन येस आई नो वॉट यू फील लाइक, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी ड्रीम करने लग जाते हैं. ऑफकोर्स ये आपका ब्रेन जो है आपके इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है, शायद कोई सिक्योरिटी आपको चाहिए या मेजर लाइफ में आपके कोई एक ट्रांजैक्शन आ जाता है. अब देखिए फादर्स डे इसी संडे के दिन है, हम इसके बारे में बातें करते चले जाते हैं. यूजुअली क्या होता है कि फादर जो है वो सिंबलाइज करते हैं कंट्रोल, डिसिप्लिन, एक्सपेक्टेशन. माँ जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कंफर्ट, सपोर्ट, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल बॉन्ड्स. और ऐसे में अगर आपने अपने पेरेंट्स को यू नो सपने में देखा है तो एक हो सकता है दिस कुड बी योर प्रोसेस ऑफ सम काइंड ऑफ एन इमोशन. मोस्टली आपका माइंड जो है एक यू नो या तो गाइडेंस चाहता है या एक सेफ्टी चाहता है, कि आपको लगता है आपको एक किसी चीज़ पे आप एक निर्णय लेने वाले हैं, कुछ एक आप कुछ फाइनल करने वाले हैं, लेकिन एक वहाँ पर एक चीज़ एक कमी है, एक यू नो वैक्यूम है. और वो क्या है कि शायद आपको पता नहीं कि वो आपके शायद वो पेरेंट्स ही हो सकते हैं. तो ये मोस्टली इस तरह की चीज़ें जब सपने में पेरेंट्स आते हैं एक रीअश्योरेंस है, भी देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये आपको एक कंफर्ट जोन में वो ले आते हैं. अगर पेरेंट्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो शायद वो आपके इनर स्ट्रेस बता रहे हैं, या फिर आप उस एक्सपेक्टेशंस पे जिसमें आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप जिए वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही. बहुत कुछ हो सकता है ऐसे में. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको जब सपने में आए और अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, I could not complete the sentence because I had to come on air. So it's basically if they are not there with you anymore, this is often a sense of कह सकते हैं पीस, या आपके एक अंदर का जो दुख है उसको एक ग्रीफ जो आपके अंदर है वो हील कर रहा होता है ना, ऐसा हो जाता है. चलिए स्माइल एंड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. मैं एक गाना बजा रही हूँ, आज है बर्थडे बॉय, और वो ये पर्टिकुलर सॉन्ग उन पे फिल्माया गया था. कैन यू आइडेंटिफाई कि आज किसका बर्थडे होगा?

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: बिल्कुल अतुल जोशी, आपसे बहुत दिनों बाद बातचीत हुई है, बहुत अच्छा लगा। आपकी बॉलीवुड की नॉलेज तो वाह वाह क्या बात है, एंड एब्सोल्युटली बिंगो। और आज विवेक ओबरॉय का बर्थडे और फिल्म थी क्यों हो गया ना, तो उसमें ऐश्वर्या राय थी, जिस समय उनके इश्क शायद उस समय परवान चढ़ा हुआ था, राइट। ये उसी दौरान की एक पर्टिकुलर फिल्म थी और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन था इस फिल्म में, जो भी ऐश्वर्या राय कभी कुछ उन्होंने ऐसा सीन किया नहीं किसी मूवी में। तो थैंक यू सो मच, और इसके साथ साथ थैंक यू टू 2170 एंड आई हैव ऑल्सो गॉट 0202, आई हैव गॉट 9231 एंड आई हैव गॉट 3298। थैंक यू सो मच, एंड यस द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, विवेक ओबरॉय बिल्कुल इनका सही नाम, बर्थडे है आज इनका। और काफ़ी अच्छा काम, और ये दरअसल काफ़ी अच्छा काम फॉर इवन कम्युनिटी भी बहुत कुछ करते हैं, जहाँ कुछ होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम ये करते चले जाते हैं। चलो आपको चलते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ लेके, आज क्योंकि थर्सडे का दिन है, थ्रोबैक का दिन है, नॉस्टैल्जिक होने का दिन है, तो क्यों नहीं

हमारे साथ साथ आदि हैं जो थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ निभा रहे थे. बस इतना अच्छा लगता है कि हम जब बात करते हैं और बोलते हैं आपका प्रोग्राम जब हम सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है. और कैनेडा से भी आप संजय आप भी मुझे सुन रहे हैं. अब इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं एकदम आई एम फीलिंग वेरी वेरी आई कैन से इमोशनल कि आप जब प्यार बरसाते हैं तो वाकई ही बहुत प्यार बरसाते हैं. सो थैंक यू सो मच. Playing Bollywood's biggest hit.

0: container clear out. Today only. Stores open late. See online for TCs and store hours.
1: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
2: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
3: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. So right now, they're celebrating with a special 75th anniversary sale. Fly to Fiji one way from $275. Samoa, Tonga and Vanuatu from $375. Honolulu from $475 and Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
7: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Researchers here believe paying more attention to dementia risk factors would help lower the number of people needing residential care later. Auckland University's Dr. Itawini Mo says heart health is particularly important.
9: Things like hypertension, diabetes, smoking, alcohol, anything that directly affects your heart is going to affect your brain.
8: A fake wall has failed to conceal a cache of illegal items in Auckland. Police executing a search warrant in Beachhaven discovered a magnetic wall in a wardrobe with a loaded firearm and chemicals allegedly used to produce meth behind it. Two men were taken into custody without incident. Staff at Wellington Zoo are giving a royal farewell to a beloved giraffe. Zahara, affectionately known as Queen Z, was put to sleep after showing increasing signs of being in pain. Staff say she was the matriarch of the herd and will be terribly missed. And overseas, US President Donald Trump claims Tiger Woods has had a tough time with painkillers due to a lingering back injury. The golfer has been banned from driving for 5 years after taking a reckless driving plea deal following a crash. Trump says he's glad that the case is resolved.
10: So he's going to have somebody drive him from now on, and you know, he's just a very special guy.
8: In sports, staying in the US, and the American men's tennis number one that reckons he's just getting started at the US Open in New York, Ben Shelton advancing through to the third round with a four sets victory over Hubert Hurkacz.
11: We're riding the wave. I do have a lot of confidence right now. It's been an up and down year, but I'm really ready to hit my stride.
8: In the women's draw, wins for Jess Pegula and Karolina Mukova. And in basketball, a hefty punishment for the LA Clippers, the NBA stripping them of 5 first round draft picks and fining over Steve Ballmer $51 million for salary cap violations.
7: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
13: सूचित किया जाता है कि कांबा वाई के लिए लंबासा के स्वर्गीय लालू महाजन की पुत्री मांगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी ऑकलैंड के अतीश रोहित स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां मांगरे के अमित कुमार मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आज अभी बस थोड़ी देर में किया जाने वाला है. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-911-128 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड की भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे वायकुमेटे शमशान भूमि में किया जाएगा. सूचना दोबारा सुने. रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड की भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे वायकुमेटे शमशान भूमि में किया जाएगा. नीरज और ताशा की मां 8 माइल नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मांगरे की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-0073-8400 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, नीरज और ताशा की मां 8 माइल नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मांगरे की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-0073-8400 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
7: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: मौसम की तरफ अगर हम देखें, the highs of 15 over at temperature of 12, आज का forecast बताया जा रहा है, it feels like 15 degrees right now. Cloudy day रहेगा, ये दोपहर के समय बादल बढ़ते चले जाएंगे। 6:01 पर sunset बताया गया है।

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. जितने लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे अभी अभी आपने एक संकेत सुन लिया है और ये संकेत सूचक है आपको बोलने के लिए कि बोर्डिंग गेट की तरफ जल्दी चले जाइए. अरे बोर्डिंग गेट यानी कि रोवा ऐप पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पर बोर्ड नाउ करने के लिए आपके लिए मौका आने वाला है. कहाँ जा रहे हैं आप? अरे छुट्टी पे जा रहे हैं बोलिए, क्योंकि आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी. और दो ये रिटर्न टिकट जो है आपके लिए वनुआटू के लिए है. विद सॉलोमन एयरलाइन से आप फ्लाई करेंगे. अलोंग विद दैट $1,000 इज द स्पेंडिंग मनी. चलो तो ये आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है. आपको बोर्डिंग करने के लिए फ्लाइट पे जाना है. फ्लाइट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. और ये 30 मिनट्स का आपके रूम है जहां पर आपको बोर्ड करना है इस फ्लाइट को. इस पैराडाइज में पहुंचने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. वैसे अगर आपको लगता है कि आपको ये लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझे 5599 पे BC यानी कि बोर्डिंग कॉल लिखकर भेजिए और फिर आपको वो उस लिंक तक ले जाएगा और अपनी एंट्री आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए. वैसे बिग थैंक यू कहना चाहते हैं कि जिनके सौजन्य से आपके लिए ये मुमकिन हो रहा है. एंड दैट्स नन अदर देन सॉलोमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में चार बार आपके लिए नॉन स्टॉप ऑकलैंड से वनुआटू फ्लाई करते हैं. और इनकी आपको ज़्यादा जानकारी और फ्लाइट्स की डिटेल्स चाहिए तो फ्लाई कीजिए solomons.com के ज़रिए. हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्टेस्ट के रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं. बस थोड़ी देर में मैं लाइंस खोलने वाली हूँ फॉर फादर्स डे, क्योंकि ये एक आखिरी मौका है. मैं नहीं चाहती कि इस मौके पे आप अपना चौका ना मारें. बिल्कुल मारिए चौका, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस आपके लिए अवेलेबल हैं. तो बस थोड़ी देर में 0800 00 हम पर मैं आपकी कॉल लूंगी. चाहती हूं ये बताने के लिए, पूछने के लिए कि आपके फादर या आप वो फादर हैं जिन्होंने अभी तक रिजिस्ट किया है अपने बच्चों की जेंजी बातों में ना आना. क्या आपके साथ ऐसा हुआ? चलो बताओ.
4: बचाओ क्या

0: सबसे पहले एक करेक्शन, आपने मुझे टेक्स्ट किया 2653, तो बोर्ड नाउ नहीं लिखना है आपको, आपको BC शॉर्ट फॉर्म BC लिखना है। अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं आपका नाम भी अनाउंस कर दूंगी और फिर आपको वो लिंक पे ले जाएगा, ऑटो रिप्लाई में वो लिंक आएगा। ओके, नाउ अभी आपके लिए लिंक दरवाजे खुल चुके हैं यहाँ के स्टूडियो की टेलीफोन लाइंस के, जहाँ आपको मुझे कॉल करना है एंड वी विल वेट एंड वॉच के कौन हमें अभी कॉल करता है। एंड गुड मॉर्निंग, हम
1: गुड मॉर्निंग काशिका जी।
0: गुड मॉर्निंग सर, किन से बात कर रही हूँ?
1: आकाश
0: जी बताइए। आकाश जी
1: जी
0: बताइए बताइए, क्या आप फादर, आप यूर अ फादर?
1: हाँ जी।
0: एंड व्हाट इज द चैलेंज यू फेस जनरली विद योर चिल्ड्रन?
1: हाँ, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं अभी तक। फिलहाल माय किड्स आर ओनली अबाउट 7 7 1/2 इयर्स, तो अभी तक वो जेन जी स्लैंग वाला फेज आई हैव नॉट रीच्ड।
0: बट किंडी और स्कूल में होता है ना?
1: स्कूल हाँ करेक्ट। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम द चैलेंजेस इज लाइक यू नो कि ये लोग जितना तेजी से ये लोग जो यू नो टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीजों को कैच अप कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक यू नो कभी कभी सोचते कि इसको हम कैसे थोड़ा स्लो डाउन करें, या यू नो इवेंचुअली लेटर ऑन इन द लाइफ दे विल कैच अप एनीवे, थोड़ा आउटडोर भी कैसे यू नो फ्रेंड्स के साथ खेलना जो हम करते थे छोटे थे तभी, फिजिकली खेलना वेलना उसमें ज्यादा कैसे उनको किया जाए।
0: ओके,
1: रादर देन यू नो जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी स्क्रीन टाइम और सारा कुछ।
0: हाँ वो तो खैर चैलेंज है ही है, डेफिनेटली वो तो चैलेंज है, लेकिन क्या कुछ आप अडेप्ट कर पाए अपने उनकी किसी बात को किसी चीज को?
1: आई थिंक अडेप्टेशन एज इन वही है कि नाउ वी आर मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स कि लाइक यू नो दे वांट टू गो आउट और उनको थोड़ा आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करना है या ऐसा कुछ, so we're trying to make sure कि like you know उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे पाए और खेले करें उनके साथ।
0: ओह चलिए, दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल आई एंड मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है। आपको पता है वैसे क्या जीतने वाले हैं आप अगर आप जीते तो?
1: जी नहीं, आई जस्ट हर्ड अ लिटिल बिट अबाउट इट एंड मैंने कहा चलो ठीक है मेक अ फोन कॉल।
0: तो इट्स $500 कैश, हो सकता है कल विनर आप अनाउंस हो जाएं एज वन ऑफ द लकी विनर्स टू गेट $500 कैश। एंड इमेजिन आपका फादर्स डे, क्या रिच फादर्स डे बनने वाला है,
1: ग्रैंड होगा। सही बात,
0: ग्रैंड होगा है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
1: थैंक यू काशिका,
0: बाय
1: बाय।
0: That was very nice of Akash ji to accommodate बच्चों को, और बच्चों के लिए चिंता है उन्हें कि किस तरह से वो आगे कैसे सब सीख जाते हैं। वैसे तो बात मुझे कन्फर्म्ड ही है, लेकिन सिक्स वर्ड स्टोरी की बात आ रही है और आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप सिक्स वर्ड स्टोरी में देना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, 5599 पे मुझे टेक्स्ट कीजिए।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, एन NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800-4-NZPMI.
9: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.

0: Container clear out. Today only. Stores open late. See online for TCs and store hours.
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply. Get the Skinny!
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
4: Big thank you to you. आपका टेक्स्ट आ गया और आपने कहा कि यू आर इमोशनल एंड ऐसा हो जाता है आकाश जी आपकी बातों से भी शायद कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स इमोशनल भी हो जाते हैं हो गए होंगे शायद तो उन्होंने बताया कि उनको उनके फादर की याद आ गई कि किस तरह से उनके फादर उनको उनके पीछे पड़े रहते थे और किस तरह से वो उन्हें मोटिवेट किया करते थे तो उन्होंने कहा हिज क्वाइट सैक्रिफाइसेस बिल्ट माय फ्यूचर His quiet sacrifices built my future. This is so beautifully done. ये बात तो सही है क्योंकि fathers जो है काफ़ी you know sacrifices करते हैं अच्छा एक बात है क्योंकि वो हमारे लिए इतने sacrifices करते हैं इतने पापड़ बेलते हैं हमारे लिए वो हमारे सुपर हीरो बन जाते हैं और आप इन सुपर हीरो को आप कन्वर्ट कीजिए उनकी फ़ोटो को इंटू अ सुपर हीरो AI जनरेटेड फ़ोटो तो बस सिंपली आप एक फ़ोटो को AI जनरेट कराएं अपने बच्चों के साथ मिलके भी करवा सकते हैं और ये आप जो हमारी पोस्ट जो है फेसबुक के पेज पर उसमें आप ऐड कर दीजिए इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपने डैड को टैग कीजिए और ये हमारे कंपटीशन पेज पर हम के पेज पर जाइए जहाँ पे ये पोस्ट है अपने फ्रेंड्स फैमिली को कहिए कि आपके डैड की फ़ोटो को लाइक करें पोस्ट को कॉम्पिटिशन पेज पोस्ट को भी लाइक करें एंड एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो भी लाइक करता है उन्हें हम के पेज को भी लाइक करना पड़ेगा कंपटीशन को भी लाइक करना पड़ेगा कंपटीशन की पोस्ट और आपकी पोस्ट दोनों लाइक करनी पड़ेंगे एंड गेस व्हाट $300 कैश ये जीतने का सुनहरा मौका है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप समझ सकते हैं ईजी है नॉट सो डिफ़िकल्ट एंड ये AI से जनरेटेड ऐसी चीज़ें आजकल निकली हैं ना वाकई ये लगता है कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट एंड आई थिंक सो आर वी
3: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे एनसीटीए ने डिफेंड किया है अपना डिसीजन, जहां पे वो चार्ज कर रहे हैं मोटरिस्ट को, जहां पे एक स्लिप जो थी ये बंद हो गई थी, रास्ता बंद हो गया था टू अ फ्री अल्टरनेटिव रूट इन नॉर्थ ऑकलैंड. अब ये लास्ट वीक की बात है और जो ड्राइवर्स अफेक्ट हुए थे उन्होंने उनके लिए टोल वेव कर दी जाएगी, बट दे हैव टू गेट इन टच. ये जो था रूट, टोल फ्री रूट जो था, हाइबिस्कस कोस्ट हाईवे पर था, जो क्लोज हुआ था ऑन 29th ऑफ अगस्त आफ्टर द स्लिप. सो टोलिंग के लिए जो नॉर्दर्न गेटवे टोल रोड है, इट रिमेन्ड स्विच ऑन. तो उससे क्या हुआ, जो ड्राइवर्स रीडायरेक्ट हुए ऑन टू द स्टेट हाईवे 1 पेड द यूजुअल चार्जेस, जबकि वो एक फ्री एरिया था. तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लगता है कि 29th की स्लिप के दौरान ये आपने डिविएट किया था उस रास्ते से, तो एक डेटा के अनुसार पता चलता है कि देवर 15,427 ट्रिप्स एंड वो क्लोज टाइम के आसपास लगभग उतना ही था. तो अगर आप ने पे किया है तो ये रूट फ्री था. मेक श्योर दैट आप एनसीटीए को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लें.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: इस समय हनुमान अंश जो है बॉक्स ऑफिस पर रॉक कर रही है और एक मिराकुलस सुपरहिट बन चुकी है। इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर एक और डिवोशनल फिल्म थी लालो कृष्ण सदा साहित्य, और ये इसी तरह से पहले तो हफ्तों में उसका कोई ऑडियंस नहीं बना, लेकिन उसके बाद इट वेंट ऑन टू बिकम द बिगेस्ट गुजराती हिट ऑफ ऑल टाइम्स। 100 करोड़ उसने इस फिल्म के जरिए कमा लिया था। लेकिन रिसेंटली एक तेलुगु रीमेक जो है ऑफ लालो कृष्ण सदा साहित्य जो है इट इज़ बींग प्लान्ड, और कहा जाता था कि इस फिल्म के लिए रामचरण जी को कांटेक्ट किया जा रहा था। हाउएवर बॉलीवुड की जो खबर आ रही है उससे यही पता चलता है कि इस फिल्म के रीमेक में श्री कृष्ण का जो रोल अदा करने वाले हैं ये करने वाले हैं विजय देवराकोंडा। अब क्या बात है, मतलब उनको देख के भी एकदम नटखट कृष्ण जी की वाकई ही याद आ जाती है, होता है ना ऐसा कुछ जब ये कहानी किस तरह से है। बट बेसिकली दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो एक ट्रैप हो जाते हैं एक मैंशन में। जब वो एंटर करते हैं कि वहाँ पे उस मैंशन में घुसकर वो चोरी कुछ कर लेंगे, तो एक मिस्टीरियस आदमी उनके पास आता है और वो और कोई नहीं लॉर्ड कृष्ण होते हैं। और इससे फिल्म के बारे में ये पूरी डिटेलिंग जो है ये कहानी उसी पर बेस की गई है। ओके, सो अब विल वेट एंड वॉच के विजय देवराकोंडा के स्पेशल बॉन्डिंग जो है जो उनके डायरेक्टर जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ है इज बियॉन्ड फ्रेंडशिप। तो अब लगता है ये मूवी भी अच्छी ही जाएगी, अभी इस पे काम शुरू हो रहा है।
4: Drive show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ।
6: ये गलत बोल दिया यार।
5: और पहनता भी नहीं है उसको।
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया अभी वो।
6: अभी ब्रांड हो गया ना।
5: रुस्बे के बाल लगे उस।
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
8: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
9: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
10: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
11: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
12: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
11: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
13: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
14: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो, बोली बस मेरा फोकस है।
15: हाँ। अच्छा
14: बताओ तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं।
15: मिसेस सिंह
16: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
17: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz।

0: कल मैं बात कर रही थी अबाउट के दूध की बॉटल जो होती हैं, हम किस तरह से उन्हें रिसाइकिल करते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं यू नो दे नीड टू गो सेपरेटली बिफोर यू डिस्पोज देम ऑफ. कभी आप वो लेबल पैकेज का देखते हैं और कभी आप उसकी स्लीव पर देख लेते हैं. उसके ऊपर एक फिल्म होती है, एक लाइनर होती है जो ईजिली निकल जाता है फ्रॉम द मेन पैकेजिंग आइटम. इन केस आपको लगता है कि जो स्लीव आप रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द बॉटल और उसको आप पुल आउट कर रहे हैं, तो एक तो वो स्लीव जो है आपने उसको तो आपने रिसाइकल कर ही दिया. रिसाइकल क्या, उसको तो आपको डिस्पोज करना ही पड़ेगा. लेकिन वो बॉटल जो है वो रिसाइकल आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन द स्लीव हैज़ टू गो इन जनरल वेस्ट, नॉट इन द रिसाइकलिंग बिन. मेक श्योर दैट यू डू दैट. कभी कभी प्लास्टिक की रैपिंग होती है, जैसे कि ब्रेड बैग्स, फ्रूट्स, वेजी बैग्स वगैरह, क्रिस्पी बैग्स होते हैं, चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, इनको भी अगर हम चाहें तो डेफिनेटली कुछ लोग इन्हें रिसाइकिल कर देते हैं एट सम पॉइंट इन सेलेक्टेड सुपर मार्केट्स. सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स.
1: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Coincidentally, आज रचना 0800 रचना वाली रचना का आज बर्थडे भी है. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू रचना एज वेल. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैं अब आपके लिए डेडिकेट भी करना चाहती हूँ. बट बिफोर आई गो लेट मी रिमाइंड यू कि सैंडी और रुजबे जो है अनफिल्टर्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप इंजॉय करते हैं. अब एक चीज़ जो खास तौर पर इन्होंने की है वो है अनफिल्टर्ड में कम्युनिटी किस तरह से साउथ एशियन कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करते हैं एंड द लव फॉर फिजी इंडियन कम्युनिटी. क्रिएटर अभी ने बातचीत करी इनके साथ. और अगर आप चाहते हैं 5599 पे आप ड्राइव लिखकर भेज सकते हैं. और अगर आप कुछ ट्रेंड मेकर्स में कुछ गाने सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ आइकॉनिक सिंगर्स जो हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, अनफॉरगेटेबल एक्टर्स, उनकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं 5599 पे आप TM लिखकर भेजें और फिर आपको वो लिंक मिल जाएगा, वो म्यूज़िक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा. तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार. आपका दिन और भी मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं नान आदर दन केतन. इनका साथ जरूर दीजिएगा. तो मैं अभी के लिए चलती हूँ. कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ. कल का दिन तूफानी दिन होगा क्योंकि वो दिन होगा TJIF यानी कि शुक्रवार का बुखार लेकर उसका एक I can say that excitement later. I will be back at 10 o'clock. So this is Kashika signing off from the Hum Studios. Look after yourself, stay safe and keep smiling, keep humming.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: With